FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की

0: उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आपने सुने। एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब प्रस्तुत है। हर सुबह की तरह पहले वंदना देश की, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, पत्थर नहीं है पत्थर है वो दिल नहीं है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारा देश भारत हमारी आन बान शान है। आइए करते हैं माँ भारती को नमन। समूह स्वर में गाई इस देश वंदना के संग।

देशवंदना समूह स्वर में अभी आपने सुनी। और आइए आरंभ करते हैं अब आज की ईश वंदना। सबसे पहले लेते हैं कैलाशपति शिव का नाम इस भजन की साथ।

मनीष कुल्लर और साथियों के स्वर में ये रचना भक्ति आप सुन रहे थे। वैसे ईश्वर तो अनंत है, निराकार है, जो घट घट में व्याप्त हैं।

बालक है, किंतु अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए वे अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं। कभी छोटे से मदन गोपाल बन जाते हैं, तो कभी गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण बन जाते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन। स्वर है तुलसी कुमार और साथियों के।

अभी आप सुन रहे थे ये कृष्ण भजन तुलसी कुमार और साथियों के स्वर में। और आइए अब ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप तो कण कण में समाते हैं, आपकी प्रार्थना से मन को शांति मिलती है, संतोष मिलता है,

किंतु जग के पालनकर्ता आप हैं और जग के नाथ भी आप हैं। जगन्नाथ को समर्पित ये भक्ति रचना आइए सुनते हैं। स्वर है अनिल पावरा विश्वजीता मोहपात्रा के।

0: जग के पालनकर्ता जगन्नाथ को समर्पित ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज की आराधना हम यहीं संपन्न करते हैं। देशवंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अभी आप सुन रहे थे। FM 103.2 MHz पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। समय हो चला है खेती की बात सुनने का। खेत की तैयारी रोपा पद्धति से कैसे करें, इस विषय पर सामयिक सुझाव आज आप सुनेंगे। जानकारी का वाचन किया है रूपेश कंवर ने।
1: खेती की बात में आज अपन कर गोड़ बात करबो खरीफ फसल के खेती के तैयारी के। कतो किसान भाई मन 15 दिन पहली महीना दिन पहली खेत के तैयारी में लग चुके हवाए, और जौन किसान भाई मन के सिंचाई के साधन हवाए, पल्लो के साधन हवाए, वो मान के रोपा लगाई के बूता काम चलत हवाए। संगवारी हो, रोपा पद्धति में सबले जरूरी हवाए खेत नरम और समतल हमला करना चाहिए। एक संगे संग समय के आधार में हमला जौन नर्सरी हवाए धान के ओला हमला तैयारी करना बहुत आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी के बात करी संगवारी, जोताई के पहली बेरा हमला अच्छे से अवार दून करके देसी नांगर ले 2-3 बार जोताई करना चाहिए। कल्टीवेटर के माध्यम से, रोटोवेटर के माध्यम से हमला माटी ला भुरभुरा कर देना चाहिए। एकर से फायदा ये होते कि माटी की नमी अवस्था बने रहते और संगे संग पौधा के उत्पादन भी ज़्यादा होते। कई बार ऐसे होते कि हमारे खेत में अवार ज़्यादा पानी रहते और हमल जब आवश्यकता होती वो बेरा पानी हाँ नहीं रहे। कारण यही होते संगवारी हो कि हमन खेत के चारों कती जो मेड़ हवा है ओकर देख रेख करन नहीं। कहूँ मेर मुही फूटे रहते या नाली निकले रहते ओकर से पानी हाँ धीरे धीरे 25 के नीचे गिर जाते। यानी कहीं तक केकरा है ओकर माध्यम से भी कभू कभू मेड़ में नाली बन जाते, जेकर से हमारे खेत के जो पानी है बहा जाते। एकर बार हमला खेत के एकर ले पहली हमला रोपाई के पहली खेत के चारों कती अच्छे से देख रेख करना चाहिए, ताकि कोनो मेर मुही थोड़े फूटे हवाए पानी थोड़े जाते और ओकर माध्यम से हम अच्छे से एकला व्यवस्थित कर सकतन, ताकि बरसात के जो पानी हवाए वाला हमार खेत में मार सके। जोताई की पहली संगवारी हो हमला अगर रोपाई पद्धति करत हन तो अच्छे से पानी भर के हमला खेत ला मताना चाहिए रोटोवेटर के माध्यम से या देसी कोपर के माध्यम से, और बराबर वाला समतल करके हमला 2-3 दिन बाद वाला रखना चाहिए।

0: समतल करना एक खातिर आवश्यकता होती संगवारी हो, ताकि पानी के ठहराव ह बरोबर रहे और आसानी से पानी की निकासी ह खलो हो सके। नर्सरी की तैयारी के बात करी संगवारी हो, बीज शोधन, बीज ला एक रात हमल पानी में भिगा देना चाहिए। यदि झुलसा रोग हवाए तो ओला हमला उपचारित करके हमला भिगा देना चाहिए। नर्सरी की जगह में एक हेक्टेयर खेत में 30 से 35 किलो और 800 से 1000 वर्ग किलोमीटर नर्सरी बेड हमारे पास काफ़ी रहते। बुआई के बात करी संगवारी हो, अंकुर निकला थे तो बीज ला कुआरी में छिड़क देवा। 10 दिन बाद टाइकोडर्मा और 15 दिन बाद जिंक सल्फेट बुझा चूना छिड़क देवा। एकर से जो उमा रोग बिया दे रहते ओकर से हमन निदान घलो पा सकत हन। पानी नर्सरी में जब पानी के कमी होते संगवारी हो तो पौधा 1 से 1.5 महीना में हमारा रोपाई लायक हो जाते हैं। तो ये बेरा हमारा विशेष करके चेत करना चाहिए ताकि नर्सरी में कोनो प्रकार के पानी के कमी झन रहे। रोपाई के सही तरीका और सही बेरा संगवारी हो बात करी तो जौन किसान भाई मन करा पल्लो के साधन हवा है, सिंचाई के साधन हवा है, उमन 15 महीना दिन पहली अपन रोपाई के खेती सनी के बूता कामला शुरुआत कर चुके हवे। अभी भी हमार कते किसान भाई मन अब पानी है गिरत हवे तो अभी के बेरा में हमार किसान भाई मन के जो रोपाई के बूता काम है भदरा गए हवे। सही तरीका की बात करी संगवारी हो, साधारण तरीका में हमला पौधा ले पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर, एक जगह 2 से 3 पौधा हमन लगा सकतन। श्री मेगा गास्टर विधि ले सबले ज़्यादा उपज होते। एकर लाइन से लाइन की दूरी बात करी संगवारी हो 15 सेंटीमीटर, पौधा की दूरी बात करी संगवारी हो तो 15 सेंटीमीटर, एक जगह में हमला 2 से 3 पौधा हमन लगा सकत हन। एकर उपज हमला कहीं न कहीं अन्य जो विधि के माध्यम से अगर हमन फसल लेवत हन ओकर से हमला ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो के संभावना घलो रहते। रोपाई के बात करी संगवारी, पौधा निकल पहली हमला नर्सरी में पानी भर देना चाहिए ताकि जोन हमन पौधा ला उखाना थावन दूसर खेत में लगे बर ओकर जड़ी है टूटे झन। पौधा ला नीचे ले पकड़ के हमला हल्का हिलाना चाहिए ताकि कोनो प्रकार से वो नुकसान झन हो सके। लाइन में लगात हमला 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर हमला लगाना चाहिए। खात माटू के बात करी संगवारी, खातू माटी के बात करी संगवारी, रोपाई के बेरा हमला 20 से 30 दिन बाद कल्ला फूटत समय हमला 20 किलो नाइट्रोजन 10 किलो जिंक प्रति एकड़ हमला छिड़काव करना चाहिए। धान में 3 तरह के खाद लगते, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इला हमला विशेष करके चेत करके आवश्यकता होती संगवारी हो। ये माध्यम से अगर हमन रोपाई के बूता काम करत हन, खेत की तैयारी करत हन तो कहीं न कहीं हमन अवैया बेरा में धान के फसल में ज़्यादा से ज़्यादा हमन पैदावार पा सकत हन।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात, खेत की तैयारी रोपा पद्धति से कैसे करें विषय पर वाचन स्वर रुपेश कंवर का था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:36 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के हैं। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन है।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धुरी धारण करने

वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं। मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिये, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

0: श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के मुख्य गायन स्वरों में आज का अंक अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। अब प्रस्तुत है चिंतन। विषय है कर्तव्य पालन। आलेख और वाचन स्वामी आत्मानंद का है।
1: मनुष्य और पशु में एक मौलिक अंतर यह है कि मनुष्य में बोध होता है जबकि पशु में नहीं। वैसे तो ज्ञान पशु को भी होता है, पर ज्ञान और बोध में अंतर है। एक पश्चिमी विद्वान ने पशु और मनुष्य का अंतर बताते हुए कहा है, एन एनिमल नोज एंड ए मैन नोज, बट एन एनिमल डज नॉट नो दैट ही नोज, व्हाइल ए मैन नोज दैट ही नोज।

अर्थात पशु भी जानता है और मनुष्य भी, पर पशु यह नहीं जानता कि वह जानता है, जबकि मनुष्य यह जानता है कि वह जानता है। अर्थात मनुष्य को अपने ज्ञान का बोध होता है, जबकि पशु को ऐसा नहीं होता। मनुष्य की यही क्षमता उसे पशु से भिन्न करती है। एक संस्कृत सुभाषित में मनुष्य और पशु के इस अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर् नराणाम् धर्मैव तेषाम् अधिको विशेषः तेनैव हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थात भोजन, नींद, भय, प्रजनन की प्रवृत्ति ये पशुओं और मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। एक धर्म का तत्व मनुष्यों में अधिक होता है, वह यदि मनुष्य में न हो तो वह पशु के ही समान है। इस सुभाषित में धर्म को मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला तत्व बतलाया। इसी धर्म को

0: एक धर्म का तत्व मनुष्यों में अधिक होता है, वह यदि मनुष्य में न हो तो वह पशु के ही समान है। इस सुभाषित में धर्म को मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला तत्व बतलाया। इसी धर्म को हमने पूर्व में बोध कहा है, इसको कर्तव्य बोध भी कहते हैं। अर्थात धर्म वह है जो मनुष्य में कर्तव्य बोध भरता है। पशु में कोई कर्तव्य बोध नहीं होता, वह तो अपनी सहज प्रेरणा से परिचालित होता है। एक स्वामी भक्त कुत्ता जब अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए चोर पर झपट पड़ता है तो वह कर्तव्य बोध से प्रेरित हो ऐसा नहीं करता, अपितु अपनी सहज प्रेरणा से परिचालित हो ऐसा करता है, जिसे हम अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट कहते हैं। कर्तव्य बोध की क्षमता मनुष्य में ही होती है, इसीलिए वह पुरस्कार पाने का भी अधिकारी होता है और दंड पाने का भी। पर कभी किसी ने अपने मालिक के बचाने वाले कुत्ते को पुरस्कार देकर सम्मानित नहीं किया। इस विवेचन से स्पष्ट है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि यही मनुष्य की मनुष्यता को उजागर करता है। वैसे तो पशु भाव केवल पशु का गुण नहीं, वह मनुष्य में भी भरा होता है। पर मानव जीवन की सार्थकता इसमें है कि अपने भीतर का पशु भाव दूर कर मानवता को जगाया जाए। इस प्रक्रिया में एक सक्षम साधन के रूप में कर्तव्य बोध ही सामने आता है, जिसे पूर्व में कहे गए सुभाषित में धर्म कहकर पुकारा गया है। अपने स्वार्थ के लिए जीना पशुता है और दूसरों के लिए जीने की चेष्टा करना मनुष्यता की अभिव्यक्ति है। यदि मनुष्य भी केवल अपने लिए जिए तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। कर्तव्य बोध हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। अधिकार बोध यदि स्वार्थ का द्योतक है तो कर्तव्य बोध निस्वार्थता का। स्वामी विवेकानंद स्वार्थ को अनैतिक और स्वार्थहीनता को नैतिक बताते हैं। वे कहते हैं, निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निस्वार्थी है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। और वह यदि स्वार्थी है तो उसने चाहे सभी मंदिरों में दर्शन किए हों, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, चाहे उसने अपने शरीर को चंदन से चीते के समान रंग लिया हो, फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। यह कर्तव्य पालन का तात्विक आधार है। फिर हमें इसलिए भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि उससे परिवार, समाज और देश टूटकर बिखरने से बचता है। कल्पना कीजिए कि पिता, माता, संतान, शिक्षक, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी, किसान, मजदूर सब अपने अपने कर्तव्यों से कतराने लगे, तब कैसी विश्रृंखलता की सृष्टि होगी, इसकी कल्पना करना सहज है। मैं यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो मुझे किसी से यह कहने का अधिकार नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हो। यदि मैं अपनी पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य का पालन नहीं करता तो मैं यह कहने का अधिकारी नहीं कि पत्नी अपना कर्तव्य निभाए। सारांश यह कि कर्तव्य बोध ही जीवन की धुरी है। वह हमारी मनुष्यता को प्रकट कर हमें सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। जिस परिवार, जिस समाज और जिस देश में जितनी संख्या में ऐसे कर्तव्य बोध से भरे हुए मनुष्य होते हैं, वह परिवार, वह समाज और वह देश उतनी ही मात्रा में बलवान, संपन्न और सुदृढ़ होता है।
1: कर्तव्य पालन, इस विषय पर आज का चिंतन अभी आपने सुना। आलेख एवं वाचन स्वामी आत्मानंद का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। समय हो चला है आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का। इसी सभा में 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सुबह। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 7:30 सुनिएगा सदाबहार नगमे और नए तराने हम लेकर आएंगे सुबह 10:30 से। फरमाइशी कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे सुबह 8:30 कार्यक्रम माटी के स्वर और हिंदी फिल्मी तरानों का गीत कार्यक्रम सुनिएगा आपकी पसंद सुबह 10:00 से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाता है दिन में 11:00 से 11:30 तक। 11:30 से 11:55 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम रिले करते हैं और प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह

9:55 और 11:55 से। आज शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: संध्या 5 बजे हम प्रसारित करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:35 पर आज बहनों के कार्यक्रम महिला सभा में सामूहिक चर्चा होगी मेहमान नवाजी और अतिथि धर्म के बारे में। क्रम होगा कौशल विकास का। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। ईमेल करें, गीत सुने, ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 और शेष भाग 7 बजे से। 7:20 पर हमारे साथ चलिएगा ग्राम सभा में, जिसमें गोट बात होगी छत्तीसगढ़ के 26 भाजी हमर पहचान हावे। 7:30 बजे से फोन इन कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें मशरूम उत्पादन रोजगार का साधन विषय पर बातचीत होगी। साथ ही डॉक्टर राजेश कुमार साहू श्रोताओं से फोन पर बातचीत करेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। विषय होगा रसायन मुक्त खेती आज की आवश्यकता। इसके साथ साथ मौसम मंडी का हाल, सामयिक सुझाव भी शामिल होंगे आज की किसान वाणी में। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन भारतस्य सेमीकंडक्टर इति परिकल्पना निर्माण परिवेशस्य सुदृढ़ी करणाय 5,27,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, अनुमोदिता। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतान् मन्त्रिमण्डल निर्णयान् उद्घोषितवान्। असौ अवदत् यत् सेमिकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकंडक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ प्रतिबद्धतां द्योतयति। मन्त्रिमण्डलेन 565,000 करोड़ रूप्यकाणां विनियोगेन चलदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता। एवमेव उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य सुदृढीकरणाय यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय यात्रा समयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नत मार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः विश्वासम् व्यक्तवान् यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन द्वयोः पक्षयोः सहकार्यम् अधिकं सुदृढं भविष्यति। ब्रुसेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः सुरक्षा रक्षा सहकारः अथ गमनागमन रूपरेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते।
2: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
1: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त व्यापार सन्धिं निष्पक्षं न्यायसंगतं संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभय देशयोः सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति। भारतीय निर्वाचनायोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति।

0: कर्णाटक मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारी प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य 29 दिनांक पर्यन्तं निर्धारितम् आसीत् अधुना आगामी मासस्य 8 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामी मासस्य 3 दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनम् दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम् अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर

0: रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से कर रहे थे। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, जिसे आपने ट्यून किया है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोताओं का, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

लेकर अपनी बातों का पिटारा, गीतों का सहारा, कुछ संदेश और सूचनाओं के साथ हम हाजिर हैं आज सुबह कार्यक्रम का ये अंक लेकर। और शुरुआत इस बात से कि समय मिला देता धूल में, समय दिलाए ताज, समय के संग जो चला हुआ उसी का राज। जी हाँ श्रोताओं, समय बड़ा बलवान होता है ये हम सब जानते हैं, और यही वक्त होता है सुबह सुबह का जब हर दिन आपके लिए मनोरंजन के साथ साथ भूत भविष्य वर्तमान की बातें हम आप करते हैं, थोड़ी सूचनाओं के साथ साथ सतर्कता और जागरूकता की बातें भी आपको याद दिला देते हैं। देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी बातें बताते हैं, क्योंकि हमारा देश है ही इतना विशाल, इतना भौगोलिक रूप से और परंपरा संस्कृति समृद्धि सब कुछ हमारे देश में अधिक से अधिक है। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो सागर पठार बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तान हमारे यहाँ हैं। वहीं भाषा बोली रहन सहन खान पान परंपराएं भी अलग अलग हैं, और पर्व उत्सव त्योहार तो इतने कि हर दिन हम उत्सव मना सकते हैं। ठीक उसी तरह भिन्न भिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे सब्जियां फल फूल भी तो हैं। और ये भी सच है श्रोताओं कि हमारी धरती हो या मानव का इतिहास पल पल बदलते रहे हैं, तो क्यों ना आज के कार्यक्रम में थोड़े अतीत के पन्नों से इतिहास को देखें, थोड़ी सुधी वर्तमान के लिए और भविष्य के उजालों की कामना करते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो मानव सभ्यता में स्वभाव मानसिकता और परंपराएं बदलती रही हैं, बनती रही हैं, बिगड़ती भी रही हैं। और आज नारी न केवल आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा दीक्षा से आगे बढ़ी है, वहीं अपने निर्णय लेने को स्वतंत्र भी हुई है।

सफल भी हो रही है। परंतु श्रोताओं, एक समय ऐसा भी था जब पुरुष को ही घर का पालनकर्ता माना जाता था, और यदि दुर्भाग्य से पति मर जाए तो विधवा स्त्री की स्थिति दयनीय हो जाती थी। जीवन के साथ साथ कपड़े और भोजन भी सादे हो जाते थे। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा भी प्रचलन में थी, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता समाज को महसूस हुई थी, जिसके लिए ईश्वर चंद विद्यासागर जी के अथक प्रयासों से आज के दिन 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता मिली थी, जिसे हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने की राह में बड़ा कदम माना गया। फिर समय के साथ हमें आजादी मिली, शिक्षा, समानता, नौकरी, वोट देने के अधिकार मिले, और दिल्ली नगर निगम की पहली मेयर भी महिला ही बनी थी, जिनका नाम था अरुणा आसफ अली। आज उनकी जन्म जयंती है। 16 जुलाई 1909 को अरुणा जी का जन्म हुआ था, जिन्हें आज भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में मुंबई के ग्वालिया मैदान पर झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। और श्रोताओं, अपनी कर्मठता, लगन, ईमानदारी से देश की आजादी के लिए उन्होंने योगदान इतना दिया कि बहुत सारे सम्मान भी कमाए। 1997 का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें प्रदान किया था, उसके भी पहले 1975 का लेनिन प्राइज, ज्ञान के क्षेत्र में 1991 में नेहरू प्राइज, और 1992 में पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। श्रोताओं, यदि हम याद करें तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, सावित्री देवी फूले, डॉक्टर आनंदी जोशी, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ जैसी कई वीरांगनाएं और देशभक्ति के ऐसे नाम हैं जो कि चांद तारों की तरह आसमान में जगमगा रहे हैं और युवा पीढ़ी को रास्ता दिखा रहे हैं कि वे कैसे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और हाँ, चांद से याद आया श्रोताओं, आज एक और ऐतिहासिक घटना हुई थी 1949 में। जी हाँ, जब अपोलो 11 नाम का यान नासा के स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, और उसका मिशन था अंतरिक्ष में मानव को ले जाकर चंद्रमा की सतह पर उतारना। 76 घंटे की यात्रा के बाद अपोलो 11 चंद्र कक्ष में पहुंच गया था। उसके बाद में धीरे धीरे उसने चंद्रमा पर उतरने की तैयारी की, पूरी उड़ान की, मिशन भी पूरा किया, साथ ही साथ अपना सफर सफलतापूर्वक कंप्लीट करके वापस भी धरती पर आ गए थे उनके चंद्र यात्री। तो अब कार्यक्रम में बातें बहुत हो गई, लेकिन थोड़ी बातें बाकी भी हैं, सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा सुरीला सा विराम ले लेते हैं, प्यारा सा गीत गुनगुना लेते हैं कार्यक्रम में आकर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी। आयुष्मान वह वंदना कार्ड से आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: दिल में अटका हो कोई गाना तो सोचिए मत, भेजिए ईमेल और सुनिए अपना फेवरेट गीत। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में रोज शाम 6:20 से 6:45 तक और 7 से 7:20 तक। ईमेल आईडी है geetmail@gmail.com। आकाशवाणी बिलासपुर से।
7: इन संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत।

0: स्वागत कार्यक्रम आज सुबह में आप सभी का। बात करेंगे वर्तमान की, क्योंकि हमारा वर्तमान अगर सही है तो हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा, उज्जवल होगा, हम स्वस्थ रहेंगे और सतर्क रहेंगे। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, आज उड़ीसा में विश्व विख्यात जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जा रही है और हजारों लोग, लाखों लोग जगन्नाथ भगवान की दर्शन को जाएंगे। वहाँ पर 72 फीट से ऊंचे रथों के दर्शन करेंगे और उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। श्रोताओं, हमारे अंचल में भी कई स्थानों पर रथ यात्रा और ये उत्सव मनाया जाता है। श्रद्धा का सैलाब तो होगा ही, प्रशासन पूरी तरह से तैयार भी है, तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, श्रद्धालु भी पहुंच चुके हैं, परंतु इस बीच हमें प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को और कोविड महामारी ने जो सिखाया है उसे कतई भूलना नहीं है। श्रोताओं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, साफ सफाई की जो आदतें हमने पहले से अपनाई थी वो आगे भी जारी रखने की आवश्यकता आज भी है, क्योंकि लगभग 4 साल बाद पिछले हफ्ते ही आंध्र प्रदेश में कोरोना का एक मरीज मिला है और इससे हमें सतर्क होने का अलार्म बज चुका है। विश्व को, हमारे देश को अभी भी कोरोना से मुक्त घोषित नहीं किया गया है, इसलिए हमें हवा में आ रही नमी, आसपास में भीड़ भाड़, विषाणुओं जीवाणुओं की बहुत सक्रियता, पानी के दिनों में होने वाली सर्दी खांसी और इस तरह की परेशानियों से बचे रहना है। तो अपने आप को पूरी तरह से सुदृढ़ बना के रखना है, रोग प्रतिरोधक बना के रखना है और बाहर से आते जाते समय हमेशा साबुन से हाथ धोने की आदत जो बनाई थी वो जारी रखनी है। साफ पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें, संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन के साथ साथ भीड़भाड़ से बचने या फिर मास्क का प्रयोग करने की भी आदत हम जारी रख सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, देश की खुशहाली के लिए, विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। और साथ ही साथ इसी पर आधारित है आज का ट्रैफिक अपडेट्स। तो चलिए सुन लेते हैं यातायात पुलिस से प्राप्त हुए आज के हमें ट्रैफिक अपडेट्स।
1: ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर के सभी श्रोता साथियों को नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का पर्व है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आज शहर के साथ ही जिले भर में जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा माता तथा बलभद्र भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस परिपेक्ष में शहर में आज क्रमशः पाराशर मंदिर सिंचौ, दर्जी मंदिर गोंडपारा बिलासपुर, राधा कृष्ण मंदिर साहु धर्मशाला जूना बिलासपुर से रथ यात्रा चलकर जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार, सिंध चौक, देवकी नंदन चौक तक जाकर पुनः वहीं वापस आकर संपन्न होगी। ये आयोजन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होगा। इसी क्रम में हमेशा की तरह रेलवे क्षेत्र में श्री श्री जगन्नाथ स्वामी सेवा समिति के तत्वाधान में आज दोपहर 2 बजे भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से चलकर तितली चौक, रेलवे स्टेशन, गिरजा चौक, तारबहार चौक, शिवटाकी चौक, गांधी चौक, जगमल चौक, आरटीएस कॉलोनी, रेलवे जीएम कार्यालय, थाना तोरवा, माँ काली मंदिर होते हुए मौसी माँ मंदिर, ओडिया समाज, जन्माष्टमी मंडप पहुंचकर यात्रा संपन्न होगी। इस विशाल रथ यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं यातायात की दिशा परिवर्तित की जा सकती है, अतः इस समय विशेष पर आप वैकल्पिक मार्ग का सहारा ले सकते हैं। साथ ही रथ यात्रा के प्रस्तावित मार्ग में व्यापारीगण अपनी दुकान के सामने सामान फैलाकर बेजा कब्जा ना करें, न ही इस सड़क में कोई वाहन ही खड़ा करें। मित्रों, रथ यात्रा के साथ बड़ा जनसैलाब होगा, सभी लोगों में रथ के रस्सा खींचने में होड़ लगी रहती है, इसलिए रथ से बच्चों एवं बुजुर्गों को दूर रखें। रथ यात्रा आयोजन समिति एवं रथ के साथ चल रहे भक्तों से विशेष निवेदन है कि रथ को सड़क के एक किनारे चलाएं ताकि शेष यातायात भी चलता रहे। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों

0: जाने पर तत्काल साइड भी देवें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: धन्यवाद करते हैं यातायात पुलिस को इन अपडेट्स के साथ साथ। हम आपको याद भी दिला दें कि इन्हीं अपडेट्स का पुनः प्रसारण हम करते हैं सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रमों के बीच में। और अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना भी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं, जिसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में आज गुरुवार को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय कोरबा के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश कुमार साहू उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सवाल पूछने का विषय होगा रसायन मुक्त खेती आज की आवश्यकता। इसके बाद 11 बजे से 11:30 बजे तक खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर सवाल पूछे जा सकते हैं। इन समस्याओं जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2665 और 3100026 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 16 जुलाई यानी कि आज शाम 7:30 बजे और 17 जुलाई को कल भी आप कार्यक्रम को सुन पाएंगे। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम में थोड़ा सा समय है, तो चलिए एक प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं और जिंदगी को शुक्रिया कहते हैं।

0: शुक्रिया हमारे सभी श्रोताओं का हमारे साथ बने रहने के लिए। और लेकिन कार्यक्रम आज सुबह का समय अब हो चला है समाप्त, तो आपके हंसते मुस्कुराते खुशनुमा दिन की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। नमस्कार।
1: आज सुबह।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 7:30 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म फकीरा से। इसमें आवाजें आप सुनेंगे महेंद्र कपूर और साथियों की। गीत संगीत रविंद्र जैन का है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अब 70 वर्ष से अधिक।
3: 1976 में आई फिल्म फकीरा का गीत आपने सुना, महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत संगीत था रविंद्र जैन का। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा है, गणेश का संगीत है। फिल्म का नाम है एक नारी दो रूप। 1973 में आई फिल्म एक नारी दो रूप का गीत अब प्रस्तुत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है बातों बातों में फिल्म से। आशा भोसले और अमित कुमार की युगल स्वर है, योगेश का लिखा हुआ गाना, राजेश रोशन का संगीत निर्देशन।

और आइए आप सुनते हैं रूना लैला की मधुर आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना, घरौंदा फिल्म से नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ यह गाना है, जयदेव का संगीत।

रूनालला की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे खरौंदा फिल्म से, और आइए अगला गीत सुन लेते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे यादों की बारात फिल्म से हमने लिया है। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गाना है, आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन है।

मोहम्मद रफ़ी के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म यादों की बारात से। आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत अब सुन लेते हैं सुरेश वाडेकर के साथ लता मंगेशकर के स्वर में, जिसे हमने लिया है फिल्म सिंदूर से।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन से सजा ये गाना आप सुन रहे थे, जिसकी शब्द रचना की थी आनंद बख्शी ने, युगल स्वर थे सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं थोड़ी देर में समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
4: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
3: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
5: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700

0: सौ करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: उड़ीसा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंडा जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: बज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।

0: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
2: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और MSME को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे PM। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर

0: मंत्रालय का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होरमोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: यूनियन कैबिनेट क्लियर्स 2 एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 25,000 करोड़ रुपीज फॉर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 2 elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43 kilometer long 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi city at a cost of around 11,000 crore rupees.
3: Varuna Nadi ke kinare kinare.
4: The project is a fully elevated 6-lane and 4-lane corridor along the Varuna River. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees and is expected to be completed in approximately 4 years. The fully elevated 6-lane corridor running alongside the Ganga River, it will span 46 kilometers and is estimated to be built at a cost of 14,448 crore rupees.
3: 448 crore rupees ka banega.
2: The Union Cabinet also approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
3: Semicon 2
4: is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
3: Us industry ko aur aage badhane ke liye.
2: The minister said the cabinet also cleared the mobile

बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सुनवैया जम्मू संगवारी मन की। राम राम जय जोहार। माटी के स्वर कार्यक्रम में कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महादेव हिरवानी और साथियों की आवाज़ों में, जिसे सुनना चाहते हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव, हरदेव लाल पारा, वार्ड सिमगा से आपने चिट्ठी भेजी है। तेलीपारा बिलासपुर से रंजन साहू, बेबीशानी साहू, छन्नूलाल शिवास, अनिता शिवास इस गीत को सुनना पसंद करेंगे। जिला मुंगेली सिंघनपुर सिंघनपुरी कुकुरहट्टा से लव सिंह, ठगवा सिंह, लोको महाराज, कृष्णमूर्ति पांडे, दशरथ सोनकर, तुलसी कोटवार के साथ श्याम शंकर की चिट्ठी आई है। नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज हमारे लूथरा खमरिया के श्रोता साथी हैं, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन के साथ बम्मर चाटी डी से गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेमी मीनाक्षी और निधि देवांगन।

और आइए कार्यक्रम माटी के स्वर में अगला गीत सुनते हैं महासिंह चंद्राकर और साथियों की आवाजों में, जिसे सुनवाने के लिए फरमाइशी चिट्ठी भेजी है हथखेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से आपके साथ हैं कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील बिलसपुरिया, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू इस गीत को पसंद करते हैं, हथनी पारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा इस गीत को पसंद करते हैं, नावागढ़ कटाई से चिट्ठी आई है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा की, महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से इस गीत को सुनना चाहते हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी कैवर्त और आरती कैवर्त, और ये चिट्ठी है बिरकोना से एस कौशिक की। तो आइए आप सबके पसंद पर सुनते हैं महासिंह चंद्राकर और साथियों के स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। आगे बढ़ने से पहले कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 16 जुलाई 2026 को आज स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय कोरबा के अधिष्ठाता डॉ. राजेश कुमार साहू उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने का विषय होगा रसायन मुक्त खेती आज की आवश्यकता, और 11 बजे से 11:30 बजे तक खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है श्रोताओं 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाइएगा, और इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग आज और कल 17 जुलाई को शाम 7:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और बढ़ते हैं इस संदेश की ओर, उसके बाद सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत आपको।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज
5: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
6: कार्यक्रम माटी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे गोरे लाल बर्मन और साथियों की स्वर में, जिसे सुनना चाहते हैं भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चौबाराम वर्मा, सूरज बारिकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू और आपके साथ मारवाड़ी को भाटापारा से सिया राम, अश्विनी पांडे और सोनाड़ी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ और डॉक्टर वंदना कुमार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रुआ बांधा शनिचरी से भिलाई की सुशील जैन, कल्पना जैन, सिया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन भी, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण वास्तव शिवाजी चौक राजीव से हमें चिट्ठी भेज रहे हैं। आपके साथ अमरपुर पिंडा से इस गीत को पसंद करते हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा, दिव्यांश और रूही के साथ लबी श्रीवास्तव। जानकीर मेहंदा से रामनारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुमलता, खुशबू कुमारी, और ये चिट्ठी आई है ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। सिमगा से इस गीत को सुनना चाहते हैं रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सन्नी और उनका पूरा परिवार। आइए सुनते हैं गोरेलाल बर्मन की आवाज में कार्यक्रम का ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे कुलवंतिन बाई, पंचरा मिर्जा और साथियों की आवाजों में। जिसे सुनना चाहते हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया, डॉली, अल कबीर, बेबी पूजा, प्रभा देवी, किकिर मेटा बिलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा, रुकमणी शर्मा जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, गुरामी डोंडी लोहारा से पीयूष नेताम, कोमल नेताम जोहात्री, जुनवानी दुर्ग से सुरीत और रमेश ताहू, आपके साथ राजनांदगांव से योगेश थारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि भी हैं, कनुला रजक, के आर साहूक, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, पानेश्वर, मुकेश कुमार, कुमारी हाविया और कुमारी टानिया रजक, आप सब देवरी भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं। जितेंद्र दास मानीपुरी, मिलाव दास मानीपुरी, जयदास, देवेश, धनवंतिन बाई, मोतिन बाई, गणेश धाम, परसुली, खेरता बाजार बालोद से हमें चिट्ठी भेजते हैं, पेंड्रा धनगवा बरपारा से कैलाश, चंद्रबाई, सुरेंद्र, संजना, बाबा, बबली, पवन और काशीपुरी के साथ श्याम शंकर दरक्का भी कुलवंतिन बाई की आवाज में ये गीत सुनना चाहते हैं।

कुलवंतिन बाई और पंचराम मिर्जा के गाए इस गीत के साथ ही आज का माटी के स्वर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।

0: छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, सुबह के 9 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।
1: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ। लीजिए सुनिए जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में जॉली LLB 2 फिल्म का गाना। जुनैद वसी हैं गीतकार और संगीतकार हैं चिरंतन भट्ट।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए नीति मोहन की आवाज में पद्मावत फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा है गीतकार और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का गाना। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान, नीति मोहन और अरिजीत सिंह की आवाजों में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार विशाल शेखर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
6: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
5: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजों में 102 नॉट आउट इस फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य के हैं बोल और तर्ज, अमिताभ बच्चन की

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाल दी।

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन।

इसके बाद फिल्म अपने में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

0: करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.5% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी। राज्यपाल रमेश डेका ने कल छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट संसदीय कार्य के लिए बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक तथा अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक अलंकरण से सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए संवाददाता संतराम साहू को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार अलंकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए सौरभ सिंह परिहार और डॉक्टर राजेश राज को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर अलंकरण प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन आज गुरुवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान मछली पालन के लिए पट्टा और वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोर दुर्ग में उपकरण खरीदी में अनियमितता के साथ ही अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्न सदस्यों द्वारा पूछे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुन्नूलाल मोहिले ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना से निर्मित प्रदेश की जर्जर सड़कों की स्थिति का मामला उठाएंगे। आज सदन में 3 विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न स्थानों में आज भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाएगी। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से भी आज दोपहर रथयात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बस्तर में भी आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 22 विग्रह 3 विशाल रथों पर नगर भ्रमण करेंगे। इस दौरान तुबकी की पारंपरिक सलामी दी जाएगी। 25 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए पुणे से पुरी के बीच 16 जुलाई को एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन का रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव रहेगा। ट्रेन में जनरल और स्लीपर सहित कुल 22 कोच होंगे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के बोर तालाब के आश्रित ग्राम गांधीनगर में बुधवार शाम बारिश का पानी भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र करीब 8 वर्ष थी। देर शाम ग्रामीणों ने काफी तलाश के बाद बच्चों के शव को पानी से बाहर निकाला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और इससे लगे उत्तर ओडिशा, पश्चिम के बंगाल तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। बलरामपुर जिले में जारगिम गांव के पास महिला मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न स्थानों में आज भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाएगी और राजनांदगांव जिले के ग्राम गांधीनगर में बारिश का पानी भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं जिसे आपने ट्यून किया है FM बैंड 103.2 MHz पर। 10 बजे हैं, पेश है

श्रेया घोषाल सोनू निगम की मीठी आवाजों में कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मुन्ना भाई MBBS से, जिसे स्वानंद किरकिरे ने लिखा है, शांतनु मोइत्रा ने संगीत तैयार किया है और इसे सुनना चाहते हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आपके साथ रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। इसी गीत को दरशुरा गांव से सुनना चाहते हैं ददवा साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू भी, नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारस मणि और पुष्पेंद्र मणि दतरिंगी भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं। श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। इनके साथ भाटापारा से दान सिंह रावत तानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। ये चिट्ठी आई है पीपर पारा पाल चुआ मुंगेली से, उत्तरा देवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका देवाकर भी। श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में ये गीत सुनना चाहते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत साजन फिल्म से है, अलका याग्निक की आवाजों में आवाज में नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में, और उसकी शब्द रचना समीर ने की है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है जतुका किशनपुर से आलम तिलकर, शबाना नास, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नास, सिराजपुर गणेशपुर से फिरोज नाज, प्रवीण, अर्श बाबू और अरसलान बाबू। इसी गीत को पेंड्रा धनगवा से सुनना चाहते हैं बरपरा छत्तीसगढ़ के कैलाश चंद्रबाई, सुरेंद्र, संजना, काशीपुरी पवन, कुमार संतोषी और सूटी के साथ एस एस दरकेश, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज लूतरा खमरिया से हमारे श्रोता साथी हैं, और कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन के साथ रवि और रियांश के साथ कान्हा आदित्य देवांगन भी इस गीत को पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर साजन फिल्म का ये गाना।

साजन फिल्म के बाद आईना फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर, जॉली मुखर्जी और साथियों की आवाजों में, समीर का लिखा हुआ गाना, दिलीप सेन का संगीत निर्देशन। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, धमनी राजिम से समय लाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल, ममता और मुन्नी धीवर, ओवरेटीपारा भाटापारा से वीणा साहू, अनिता साहू, नेहा और मनीषा मोनिशा, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार और उनके साथ विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनक्ष और आरु साहू भी इस गीत को पसंद करते हैं। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चौबेराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेख राम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआं भाटापारा से सिया राम, अश्विनी पांडे, सोनाडी से शुभ्रा चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ के साथ बिट्टू कुमार, मेहमतपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से इसी गीत को पसंद करते हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी कैवर्त और आरती कैवर्त।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: तराना, इस फिल्म का गीत

सुनना चाहते हैं हमारा हमारे श्रोता साथी शैलेंद्र सिंह की आवाज में, और इसके लिए पसंद करके हुए चिट्ठियां भेजी हैं बेल गहना बाजार से इंदु बबलू, श्याम शंकर मिस्त्री, तारा चंद्र साहू, नागेश्वर पटेल, गणेश गुप्ता, राजकुमार और बाबा विजय पायलट, रागिनी, गीता देवी, कैलाश, चंद्रवती, कुसुम, काशीपुरी और राधा पड़वार। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन इस गीत को पसंद करते हैं। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश कुमार, वासु, डॉली, पूर्वेश भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू पोटिया कला दुर्ग से हमारे साथ हैं। राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और चंद्रकांता प्रजापति ग्राम बुड़गहन से इस गीत को सुनना चाहते हैं।

कार्यक्रम आपकी पसंद का आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में, फिल्म वीर जारा से जावेद अख्तर का लिखा हुआ यह गाना है। मदन मोहन का संगीत ओरिजिनली इसमें लिया गया था। सुनना चाहते हैं डोंडी लोहारा बालौत से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका तुषार तामुरिया, डॉली अलकबीर, बेबी पूजा, प्रभा देवी, संतोष शर्मा, गुरामी डोंडी लोहारा बालौत से पीयूष नेताम, कोमल जोहत त्रिबाई, जुनमानी दुर्ग से सुरीत रमेश ताहू और योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश कुमारी, अंजलि सारवा भी, रज्जन साहू, बेबी शानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास, अनिता श्रीवास, तेलीपारा बिलासपुर से हमारे श्रोता साथी हैं, शिवाजी चौक राजीव से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव के साथ, अमरपुर पेंडा से दीपक कुमार, रोशन, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा, दिव्यांश, रूही के साथ लक्की श्रीवास्तव भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। जिला मुंगेली सिंघनपुरी कुकुरहट्टा से लव सिंह, टगवा सिंह, लोको महाराज, कृष्णमूर्ति पांडे, दशरथ तुलसी, श्याम शंकर के साथ हथनी पारा भाटापारा से ये चिट्ठी आई है। दुर्गा दुर्गेश्वरी गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश और किरण के साथ दुलारी वर्मा की। चलिए आप सबके पसंद पर सुनते हैं ये गीत उदित नारायण की आवाज में, वीर जारा फिल्म से।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद हम यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले आपको अपना पता बता दें ताकि आप हमें चिट्ठियां भेज सकें अपनी फरमाइशों के साथ। कार्यक्रम का नाम है आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर 495006। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद और अब वक्त हो चला है नए तराने सुनने का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नया तराना, जब हैरी मेट सेजल फिल्म से। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे शाहिद माल्या और साथियों की। प्रीतम का संगीत निर्देशन है, सुनिधि चौहान की आवाज भी इस गीत में है। आइए सुनते हैं जब हैरी मेट सेजल फिल्म से ये गाना।

आप गीत सुन रहे थे सुनिधि चौहान, शाहिद मालिया और साथियों की आवाजों में, प्रीतम के संगीत निर्देशन में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नया तराना, जिसे हमने लिया है फिल्म माय नेम इज खान से। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे राहत फतेह अली खान और साथियों की।

0: शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म माय नेम इज खान से, जिसे राहत फतेह अली खान, साथियों और ऋचा शर्मा ने आवाजें दी थी। निरंजन अयंगार ने इस गीत को लिखा था। कार्यक्रम नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से। आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं, आइए सुन लेते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
1: ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर के सभी श्रोता साथियों को नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का पर्व है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आज शहर के साथ ही जिले भर में जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा माता तथा बलभद्र भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस परिपेक्ष में शहर में आज क्रमशः पारासर मंदिर सिंचौ, दर्जी मंदिर गोणपारा बिलासपुर, राधा कृष्ण मंदिर साहू धर्मशाला जूना बिलासपुर से रथ यात्रा चलकर जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार, सिंह चौक, देवी नंदन चौक तक जाकर पुनः वहीं वापस आकर संपन्न होगी। ये आयोजन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होगा। इसी क्रम में हमेशा की तरह रेलवे क्षेत्र में श्री श्री जगन्नाथ स्वामी सेवा समिति के तत्वाधान में आज दोपहर 2 बजे भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से चलकर तितली चौक, रेलवे स्टेशन, गिरजा चौक, तारबहार चौक, शिवटाकी चौक, गांधी चौक, जगमल चौक, आरटीएस कॉलोनी, रेलवे जीएम कार्यालय, थाना तोरवा, माँ काली मंदिर होते हुए मौसी माँ मंदिर, ओडिया समाज, जन्माष्टमी मंडप पहुंचकर यात्रा संपन्न होगी। इस विशाल रथ यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं यातायात की दिशा परिवर्तित की जा सकती है, अतः इस समय विशेष पर आप वैकल्पिक मार्ग का सहारा ले सकते हैं। साथ ही रथ यात्रा के प्रस्तावित मार्ग में व्यापारी गण अपनी दुकान के सामने सामान फैलाकर बेजा कब्जा ना करें, न ही इस सड़क में कोई वाहन ही खड़ा करें। मित्रों, रथ यात्रा के साथ बड़ा जनसैलाब होगा, सभी लोगों में रथ के रस्सा खींचने में होड़ लगी रहती है, इसलिए रथ से बच्चों एवं बुजुर्ग को दूर रखें। रथ यात्रा आयोजन समिति एवं रथ के साथ चल रहे भक्तों से विशेष निवेदन है कि रथ को सड़क के एक किनारे चलाएं ताकि शेष यातायात भी चलता रहे। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के आने

0: पर तत्काल साइड भी देवें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: और आइए अब सुन लेते हैं ये संदेश।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। आइए सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा हुआ गाना संदेश शांडिल की आवाज में। साथ दिया है श्रेया घोषाल ने।

0: सारेगामा कारवा।
1: ये गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल के साथ ओमार नदीम की आवाज़ में, संदेश शालडिंड के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था यमला पगला दीवाना। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जरा हटके जरा बचके।

0: हेलो एवरीवन,
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गाना, कबीर सिंह फिल्म से तुलसी कुमार अखिल सचदेवा की आवाज में। इस गीत की शब्द रचना कुमार ने की है, संगीत निर्देशन अखिल सचदेवा का है।

ये मीठा सा नया तराना आप सुन रहे थे तुलसी कुमार अखिल सचदेवा की आवाज़ों में फिल्म कबीर सिंह से। इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।

हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी मिली। 5:35 पर बहनों का कार्यक्रम महिला सभा प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक किसान वाणी कार्यक्रम में आज फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रसायन मुक्त खेती आज की आवश्यकता विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार साहू श्रोताओं से फोन पर बातचीत करेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 से, और ईमेल करें गीत सुने ये फरमाइशी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आज शाम 6:20 से। इसका शेष भाग आप सुनते हैं शाम 7 बजे से।

एफ एम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। दिन के ठीक 11 बजे है, समय है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनने का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओ, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोज पत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओ, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
1: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
2: जी।
1: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
1: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप

0: हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
0: जलवायु परिवर्तन।
2: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
4: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
2: जी,
4: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
2: जी, लेकिन वो कैसे?
4: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
2: जी,
4: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
2: जी,
4: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
2: जी,
4: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
2: जी,
3: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
2: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
3: जी,
2: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
2: जी।
3: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
3: जी
4: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
2: जी।
4: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
3: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
2: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
3: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
2: अच्छा
3: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
2: डॉक्टर नमिता
4: जी,
2: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं,
4: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए

0: शीशे का घर बनाया जाता है।
1: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहां तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
0: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
1: जी,
0: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
2: अच्छा।
0: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
2: बहुत सुंदर उदाहरण हुई है। तो अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
1: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
2: बिल्कुल।
0: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
1: जी।
0: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
2: बिल्कुल।
0: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
1: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
2: जी।
1: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
2: जी।
1: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
2: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
0: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
2: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
1: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
0: बिल्कुल।
1: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
1: जी।
0: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
2: बिल्कुल। तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
0: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
1: जी
2: बिल्कुल।
1: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
2: जी।
1: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
1: जी।
0: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
2: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
1: जी।
2: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने से किताबें निकालो, चलो चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी
1: तुम्हें भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश, अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी जी
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: नीलू जी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी,
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी, पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से,
3: गंदे पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी,
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, पीछे पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं,
5: हाँ।
6: एक तालाब भी है।
5: अच्छा
7: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ हाँ, ये भी ठीक है।
8: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
7: मास्टर जी,
5: हाँ हाँ बोलो।
7: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर जी।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को। पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
9: दीदी
10: बोलो मालती।
9: दीदी मुझे तो

0: बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
1: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
0: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
1: ठीक।
0: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
1: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
0: जी।
1: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
0: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
1: हाँ।
2: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
3: नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते बच्चों। नमस्ते
4: दीदी। ये,
1: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
5: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
1: अच्छा
6: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
1: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
4: गुलाब।
1: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
3: दीदी मैं बताऊँ?
1: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
4: गुलाब, गेंदा,
5: चमेली,
4: और चमेली,
1: चमेली,
4: सूरजमुखी।
1: सूरजमुखी, शाबाश।
2: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
1: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
2: जी जी।
1: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
2: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
1: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
2: बहुत अच्छे।
1: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
2: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
1: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
2: जी।
1: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
2: हल्के नीले रंग के?
1: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
2: अच्छा।
1: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
2: काहे की लिस्ट?
1: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं।

0: इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण अभी किया जा रहा था। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में हम चढ़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा से।

फिल्म बवंडर का ये गीत आपने सुना ऋचा शर्मा की आवाज में, हरिराम आचार्य की रचना थी, विश्व मोहन भट्ट का संगीत था।

0: भूपेंद्र की आवाज़ में फिल्म बाजार की यह गजल आप सुन रहे थे। बशर नवाज की लिखी यह गजल थी, खयाम की तर्ज थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये एल्बम थी याद पिया की आने लगी। फाल्गुनी पाठक की आवाज में समीर की रचना आपने सुनी। ललित का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

तर्जर आवाज थी भूपेन हजारिका की गुलजार की रचना। आप सुन रहे थे फिल्म रुदाली से। तेरी कसम फिल्म का ये गीत है अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज।

FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

भगवान को अपने सामने देख पाते हैं। ऐसे कई किंवदंती हैं, दंत कथाएं हैं, जो भगवान और भक्त के बीच मधुर संपर्क को, मधुर संबंध को

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में फिल्म पुष्पांजलि से ये गीत आप सुन रहे थे। रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: रंग

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता

0: करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आनंद बख्शी की रचना, लता मंगेशकर, इला अरुण की आवाजें, फिल्म लम्हे का ये गीत आपने सुना। बेताब फिल्म का ये गीत आपको सुनाते हैं, आवाजें लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज।

फिल्म बेताब में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें आपने सुनी। इसके पहले श्रोताओ, हमने आपको लम्हे फिल्म का गीत सुनवाया था। उस गीत में तर्ज थी शिवहरी की। फिल्म मोहरा, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत पीयूष शाह का।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: बकपिलाई दी की तर्ज अनजान के बोल किशोर कुमार आशा भोसले के युगल स्वरों में नमक हलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक
4: और ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और सखियों को आप सुन रहे थे फिल्म चिराग में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही स्वागत करते हैं उन श्रोताओं का भी जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, यानी नए श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, गीतों की पुरवाई बनकर विविध भारती आपके घर आंगन तक पहुँचती है, तो शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का नायाब कार्यक्रम सुरीला सफर। चलिए चलते हैं साथ साथ इस सफर पर, देखते हैं कौन कौन से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने तो पढ़ा ही है क्या

खूबसूरत अभिनेत्री साधना और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आपको फिल्म बतानी है श्रोताओं, और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर देखकर हमें बचपन के दिन याद आ गए हैं। और एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि दिल का भंवर करे पुकार, दम भर जो उधर मुंह फेरे। और एक शेर सुनाता हूँ, और बहुत सारे गीत इन्होंने अपने पसंद के लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र है, बाल्यकाल से यौवन तक का सफर और ढलती उम्र को उपमा के साथ दर्शाया गया है। स्मृतियों के वातायन में वातायन जब खुलते हैं तो जीवन का प्रथम पहर एक सुरम्य चित्रपटी की भांति उभर आता है। बचपन जीवन की वो भोर है जहां धूप भी मखमली लगती है। वह एक ऐसा कालखंड है जब समय तितलियों के पंखों पर बैठकर उड़ता है, जैसे कि कदम यौवन की दहलीज पर पड़ता है तो जीवन का आसान चटक रंगों से भर जाता है। आकांक्षाओं का उतुंग शिखर एक चेतना का एक नया विस्तार छूने की बात होती है। बचपन हमें सहजता सिखाता है तो यौवन हमें संघर्षों से टकराने का साहस देता है। आज जब जीवन की ढलती शाम में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो बचपन की नादानी और यौवन की रवानी ही थी जिसने हमारे भीतर के मनुष्य को जीवित रखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, इन पुरानी सीढ़ियों पर आज भी कदमों के वो अनगिनत निशान बाकी हैं जो कभी दौड़ भाग कर छुपने छुपाने की गवाही देते हैं। वक्त की धूप और छांव इन पर बैठकर ही तो गुजारी है। जब भी इन घुमावदार डंडों पर चढ़ती हूँ तो लगता है जैसे वक्त का पहिया उल्टा घूम गया हो। चौखट से झांकती वो माँ की ममता और आंगन में गूंजती वो बचपन की किलकारियां आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। इन सीढ़ियों की हर एक दरार में जैसे मेरा बीता हुआ कल महफूज है जहां उतरने का तो कभी ख्याल ही नहीं आया। और बस इन्हीं यादों के सहारे ऊपर आसमान छूने को चाहत रही। आप ये बताएं श्रोताओं कि जब बीते दिनों की बातें हम करते हैं, जब सीढ़ियों की बातें करते हैं, जब उन घरों की बातें करते हैं जिनकी यादें जो हैं वो धुंधलके की तरह हो चुकी हैं, तो ऐसे घरों में वो कौन था जो आपको सबसे प्यारा लगता था और किसकी यादें सीढ़ी से वाबस्ता हैं, आपको बतानी है।

ये कौन से अभिनेता हैं श्रोताओ जो पियानो पर नजर आते हैं? मुकेश की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे देवर फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे रोशन की तरह से, और हमारे श्रोताओं ने जो पहले वाला गीत है उसे पहचाना है। मेरे महबूब फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर इबारत लिखी है आपने, और हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं जिसे हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब तो बस यादें ही हैं। गाँव में जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक खेलते, और जब मन करता तो गांव तालाब में डुबकी लगाते, बस यही काम रहता था उन दिनों। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज बचपन नादानियां और शरारतों पर आधारित गीत सुनवाए जाएंगे। एक और श्रोता ने लिखा है, चंदन सी चढ़ती उतरती धूप जीवन के उतार चढ़ाव सुख दुख धूप छांव की को परिभाषित करती है। चंदन शीतलता और महक का प्रतीक है जो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे सुख हो या फिर दुख, छांव हो या धूप, यदि आपने अपने मन को शांत और सुगंधित रखा जाए तो हर परिस्थिति में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का पैराग्राफ समय की भागदौड़ में व्यस्त युवा लड़कियों की जिंदगी को बयान करता है। जिंदगी की आपाधापी में कब बचपन और उसके बाद किशोरावस्था निकल जाती है पता ही नहीं चला। आज फ्लैशबैक में वो गुजरा हुआ समय याद आ रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं, वक्त पीछे रह गया और हम आगे, ये वाक्यांश जीवन से जुड़े हैं, गहरे दार्शनिक पहलुओं को बयान कर रहा है। बीतते हुए वक्त के साथ बचपन जैसे जैसे पीछे छूटता है, इस पल में हम जो भी कर गुजरते हैं उसकी यादें पल भर पल पल हमारे साथ जुड़ती जाती हैं। बचपन के खेल, संग साथी और बेखुशगवार क्षण या कोई दुख वाले लम्हे सभी हमारी यादों के गलियारे में दर्ज हुआ करते हैं। और ऐसे समय में अगर हम पीछे का समय थोड़ा सोचें तो सबसे अच्छा दोस्त कौन था? श्रोताओ, अगर आपको कोई दोस्त याद आता है जो आपके लिए, या घर का कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए एक सीढ़ी की तरह था, जिसकी बातें सुनकर या जिसकी बातें मानकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो ऐसी बातें भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और क्या आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला है? अभिनेता किन अभिनेत्री के बारे में सोच रहे हैं श्रोताओं, आपको बताना है।

हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि अभिनेता सुनील दत्त सोच रहे हैं अभिनेत्री साधना के बारे में। जी हाँ, मेरा साया फिल्म से ये गीत था, राजा मेहदेले खां का लिखा, मदन मोहन का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, मेरी नानी के वहां पत्थर से बनी काफी चौड़ी सीढ़ियां थी, एक सीढ़ी घर के अंदर थी जो रसोई घर में खुलती थी। एक और श्रोता लिखते हैं, बचपन में सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठकर बहुत फिसलते थे। जी हाँ, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक भी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो हमने ये भी देखा था कि झूला भी डाल देते थे। ये उसी तरह है, बिल्कुल खतरनाक होता है, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि सीधे ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, इन गीतों को याद किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ियां सिर्फ चढ़ने उतरने के लिए नहीं होती, न जाने कितने रूप हैं सीढ़ियों के। जब हम यादों की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बचपन से लेकर न जाने कितने यादों के झरोके खुल जाते हैं। चांद की सीढ़ी पर चढ़कर कभी आसमान को निहारो तो प्रकृति के नजारे में खो जाने को जी करता है। पक्षियों के कलरव और वृक्षों की हरियाली में मन रमने लगता है। ये सत्ता आनंदमयी और करुणामयी है, प्रकृति की सीढ़ी दिव्यता की सीढ़ी है जो हमारी चेतना में अंदर तक बसी है। बस जरूरत है इसे जानने की, समझने की, और जो धूल मन पर जमी है उसे हटाने की। एक और श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत इबारत स्मृतियों के उन अनमोल आंगन में ले जाती है जहां समय ठहर सा जाता है और जीवन अपनी सबसे निर्मल छवि में दिखाई देता है। सीढ़ियां यहाँ केवल ऊंचाई तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि बचपन, अपनत्व, सपनों और आत्मीय रिश्तों की जीवंत पगडंडियां हैं। वर्तमान की भागदौड़ के बीच जब मन अपने पुराने घर की दहलीज पर लौटता है तो हर कोना, हर आहट और हर स्मृति फिर से रंगों से भर उठती है। जीवन की सबसे बड़ी संपदा वो क्षण है जो स्मृतियों में सदैव चंदन की सुगंध की तरह महकते रहते हैं। आपको ये सीढ़ी पहचाननी है कि ये जगह कौन सी है।

अगला गीत जो आप सुनेंगे श्रोता, उस फिल्म का नाम और संगीतकार आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है, जाना है, तो आप अदाकार और अदाकारा भी बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सांप सीढ़ी का खेल बचपन में बहुत खेला है, आज विश्व सर्प दिवस भी है। जी हाँ। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत ये तेरा घर ये मेरा घर, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो चांद खिला वो तारे हंसे, तमाम गीत इन्होंने हमें सुझाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कुतुब मीनार पर फिल्माया गया बेहतरीन गीत संगीत सचिन देव बर्मन जी का है, और भी कुछ आपको बताना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां हैं। जी हाँ। और सीढ़ियों पर जो गीत फिल्माए गए हैं श्रोताओं, वो बड़े ही यूनिक हैं या बड़े खूबसूरत और बड़े अलग से नजर आते हैं। ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो आपको याद आते हैं तो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि सांप सीढ़ी बहुत खेली है बचपन में, और जब सांप काट कर हमें नीचे पहुंचा देता तब सीढ़ियां ही हमें ऊपर ले जाती। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी चार गीत की लिखी हुई इबारत में से दूसरा नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल, दिल का भंवर करे पुकार का राग सुनो, तो बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां जो आजकल बंद कर दी गई हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी गणित की अध्यापिका बहुत प्रेरणादायक बातें बताती थी। संगीता जी, गणित के अध्यापकों की तरह बिल्कुल सरल, मतलब जैसे होते हैं गणित के अध्यापक, उन्होंने कुछ अजीब सा शब्द लिखा है, तो बहुत सरल थी वो, और हास्य भाव में पढ़ाती और समझाती थी, बहुत याद आती हैं आज।

भी, जी हाँ, ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो स्कूल या कॉलेज में जब हम सीढ़ियों पर बैठा करते थे। और या तो फिर आपको ये भी ज़रूर याद होगा कि किसी के आम को लेना है खेतों से, बाग से, तो एक की पीठ पर एक बैठकर भी सीढ़ी नुमा कुछ बना लिया करते थे और ऊपर पहुंच जाते थे, जिससे बड़े आराम से फल लिया जा सकता था। एक और श्रोता ने लिखा है, घर के भीतर खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल सांप सीढ़ी बहुत खेले थे। अक्सर 90 वाला सांप, लंबा सांप, मेरी गोटी निकल जाता था। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जब गांव में मिट्टी का कोठा वाला घर हुआ करता था, तो उसमें बंसर की बनी सीढ़ियां होती थीं, पर उस पर चढ़ने में बहुत डर लगता था कि कोई एक आदमी पकड़ता था तब हम ऊपर चढ़ते थे। जी हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में भी लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं, और कश्मीर की ही वादियों में फिल्माया गया एक गीत है जिसमें जॉय मुखर्जी ढोलक बजाते हुए धीरे धीरे से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी के पास रहते हैं और साधना भी नजर आती है। ये गीत क्या आपको याद आता है तो आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत खेला है सांप सीढ़ी और लूडो भी, आजकल तो मोबाइल पर उपलब्ध है, लेकिन वो पुट्ठे का गेम और गोटियां, उनकी तो बात अलग ही थी। तो कुछ एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी दादी जो घर में सबसे बूढ़ी थी, हमें तब नहीं पता था कि उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना असंभव है। हम जब भी उनसे छत पर चलने की जिद करते तो वो पहले तो समझाती थी, फिर टाल जाती थी। घर में बाकी सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते, तब हम उनसे गुस्सा हो जाते। वैसे सीढ़ियां चढ़कर जाना, छत पे चांद देखना और एक विशेष त्योहार भी है इससे जुड़ा हुआ, क्या आपको याद आता है तो आप जरूर लिखें।

अर्जुन की तर्ज थी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था। अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफी की आवाज में इंदिवर की रचना थी। और अगले गीत की डिटेल आपको बतानी है श्रोताओं, फिल्म का नाम बताना है और गायक कलाकार के नाम आपको बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ी से मुझे अपने मामा के यहाँ का घर याद आ गया, जहाँ हम बच्चे छुट्टियों में जाते थे और सुबह उठकर सब लोग सीढ़ियों पर लाइन से बैठ जाते थे, फिर वहीं बैठकर नाश्ता करते थे। जी हाँ, और इसी वजह से कि बच्चे तो सीढ़ियों पर ही खेलेंगे, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से की जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले मकान बनाते समय पुराने लोग सीढ़ियां बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिसलन नहीं होती थी, पर आजकल सीढ़ियां बनाते समय मार्बल पत्थर और टाइल्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है श्रोताओं। तो सीढ़ियों पर जब चलना होता है तो बड़ा संभल कर चलना होता है, और इसी वजह से जो पुराने घरों में सीढ़ियां बनाई जाती थी वो जरा रफ होती थी, उनकी सुंदरता चाहे उतनी ना होती हो लेकिन उनमें गिरने का खतरा मतलब सेहत से जुड़ा खतरा कम हुआ करता था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब फुर्सत के पल मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं, मैं चाय का प्याला लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ। बस यूं ही बाहर के खूबसूरत नजारे, चारों ओर फैली हरियाली और बरसते बादलों को देखते हुए सुकून समेटने। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी नानी के घर में आंगन की दीवार से लगी सीढ़ी थी और दीवार के पार नीम का वृक्ष था, जिस पर बहुत से पक्षी रहते थे। हम बस उसी सीढ़ी पर बैठकर उनको देखा करते थे। उनका कलरव सुनकर बहुत अच्छा लगता था। आपने क्या कुछ चुरा कर सीढ़ियों में चुपके चुपके खाया है, आप बता सकते हैं?

राज कपूर और रूतन पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म से, और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, रोशन का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बेहद खूबसूरत और भावुक दृश्य काफ्य है। ये रचना बचपन, मासूमियत और वक्त के गुजरने के एहसास का एक मुकम्मल दस्तावेज है। यहाँ सीढ़ी को महज एक ढांचा नहीं बल्कि जीवन के सफर का एक जीवंत प्रतीक बना दिया है। ये रचना एक ऐसी जादुई छड़ी है जो वक्त के पहिए को पीछे घुमा देती है। इसमें जहां एक तरफ बड़े होने का अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ बचपन की यादों की वो गर्माहट जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जब हम लौटते हैं अपने घरों की तरफ तो ये देखते हैं कि वो सीढ़ियां जिन पर कितना मतलब एक एक कह सकते हैं कि शोर सा रहता था, वो सीढ़ियां कैसी शांत पड़ी हुई हैं। और कई कई जगह तो ऐसा भी है कि ये सीढ़ियां टूट चुकी हैं। एक हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, जॉय मुखर्जी के हाथ में ढोलक है और वो लकड़ी की सीढ़ी के तरफ होते हैं, तो ये गीत अगर आपको याद आ रहा है तो आप जरूर बताएं। और सीढ़ियों पर फिल्माया गया कौन सा गीत आपको बहुत सुंदर लगता है? और एग्जाम की पढ़ाई जब आप करते थे तो क्या आपने सीढ़ियों पर पढ़ाई की है, या फिर कॉलेज की जो यादें हैं वो आप साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कल्पनाओं की एक परी उतरेगी और फिर वो बचपन से जवानी तक ले जाएगी, इन दिनों उसकी मस्ती में हम कैसे कैसे पड़ाव पार करते आगे बढ़ते रहे, जीवन के विभिन्न आयाम में गुजरती ये शामें ये रातें, कैसे कैसे लोगों से मिलाते रहे। ऐसी कुछ बातें होंगी दोपहर के सुरीले सफर में सुनते हैं। तो जी हाँ, ऐसी ये बातें हैं और आप अपनी बातें साझा भी कर सकते हैं। अगले गीत में आपको बताना है कि ये जो सीढ़ी पर अभिनेत्री नजर आ रही हैं ये कौन है।

अनोखी रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। परीक्षित, साहनी पर फिल्माया गया और सीडी पर जाहिदा नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर, मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत देखकर पढ़कर हम अपने बचपन के दिन हमें याद आए हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम और भंवरा बड़ा नादान रे, ये सब गीत इन्होंने सुझाए हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पूरी इबादत में बचपन और शरारतें, घर आंगन सीढ़ियां हवेली छत झूला आम चुराना पंचगट्टे का खेल। जी हाँ, पंचगट्टे का खेल, ये खेल क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो हमें जरूर लिखें। वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि जो सीमेंट की बनी गिट्टियां होती हैं श्रोताओं, उनसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या आपने खेला है हमें आप बता सकते हैं। चांदनी रातें लिखती हैं आगे, चांदनी रातें और समय के पीछे छूट जाने का एहसास बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यादों की दुनिया में लौट गया हो। तो इस गीत को पहचानिए आप और बताइए कि इस बार सीढ़ी पर कौन है।

फिरोज खान और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म औरत से, और इस गीत की डिटेल हमारे कुछ एक श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा वो जरूर हमें लिखकर भेजें। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में लकड़ी की सीढ़ियों से हम सब भाई जो हैं वो बैठकर फिसला करते थे, आज वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे पुराने घर की सीढ़ियां ऊपर मंजिल तक ऊंचाई तक थीं, बच्चे गिरे नहीं इसलिए सीढ़ियों के कोने पर लोहे की छोटी गेट बनवा के लगवाई थी ताकि बच्चे ऊपर जाएं तो गिरे नहीं। जी हाँ, सावधानी तो बहुत सीढ़ियों में बरतनी पड़ती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कुछ अवसर सीढ़ी का काम करते हैं और इसी के समानांतर कुछ घटनाएं सांप का काम करती हैं। इस तरह जिंदगी बसर होती चली जाती है। फिर है सुंदर सी सीढ़ी, और फिर है ये कौन सी सुंदर सी अभिनेत्री।

मुकेश की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना। मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखती हैं कि बचपन में घर में बिना बताए हम और हमारे चचेरे भाई बहनों की टोली के सारे भाई मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर निचली डाल को जोर से हिलाते थे और हम सारी बहनें नीचे चादर बिछाकर कच्ची अमिया उसमें भर लेते थे। दांतों का बुरा हाल हो जाता था, कई दिनों तक दांत चमक जाते थे, फिर अपनी चोरी पकड़ ली जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास सीढ़ियां हैं और बचपन में हम इन सीढ़ियों से उतरकर पानी लाते थे और मैं सबसे पहले पानी लेकर पहुंचती थी और हमेशा प्रथम आती थी। होड़ में अभी वो सीढ़ियां वही हैं, लेकिन जब मायके जाना होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता है जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती हैं कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, इन्हें

करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, हे प्रभु बाई सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान बाई सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

श्रोताओं, कॉलेज की सीढ़ियों का जिक्र आप कर सकते हैं। तालाब और नदियों के किनारे क्या आप घूमने गए हैं, जहां खूब सारी सीढ़ियां होती हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार का ये गीत, साधना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि लखनऊ की भूल भुलैया की सीढ़ी, जहाँ किधर से भी चलो तो मिल जाएंगी सीढ़ियाँ, पर सच में भूल भुलैया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चोरी चोरी खाने का मजा ही अलग है, अमरूद खाना नहीं भूलता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अधिक सीढ़ियों के बारे में कहीं स्विट्जरलैंड के बारे में इन्होंने लिखा है, नसेन पहाड़ पर हैं ये सीढ़ियाँ। और एक और श्रोता ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गीत था उसे पहचाना है। और एक और श्रोता लिखती हैं कि स्कूल पढ़ने के दौरान स्कूल कैंपस के पास ही बनी दुकान की सीढ़ियों में बैठकर खाना खाते थे। कॉलेज पढ़ने के दौरान कॉलेज की कैंटीन के पास ही एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कोफ्ते, समोसे और कचौरी खाए हैं खूब। जी हाँ, कई सारी दुकानें भी तो होती हैं वहाँ। आप अभिनेता और अभिनेत्री पहचाने?

शहनाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था, राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती के संग।

मित्रों, जीवन में सच बोलना या सत्य के मार्ग पर चलना जितना कठिन है, झूठ उतना ही आसान। झूठ बोलना, थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ का सहारा लेना और झूठ के सहारे एक और झूठ, फिर एक और झूठ, यानी झूठी बातें बनाना हम आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन सच कहना, सत्य बोलना और इस मार्ग पर चलना कुछ दरिया के बहाव को विपरीत दिशा देने जैसा ही है। सच की राह पर चलना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन कोशिश करने से, जहन में ये बात रखने से कि हमें सत्य बोलना है, ये राह आसान हो जाती है। हाँ, इस आदत को बनाने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। सदा

सत्य हमेशा कटु लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन सत्य वचन हमारे जीवन की गति में सहायक होते हैं। जहां हम न चाहते हुए भी झूठ का सहारा लेते हैं और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समय का हवाला देते हुए झूठ बोलते हैं, तो कई बार इसके गंभीर परिणामों से भी हम अनभिज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी आदतों से हम छुटकारा पा नहीं सकते, बस कोशिश करने की जरूरत है। सच बोलने की आदत न सिर्फ आपकी निष्ठा को अधिक बनाए रखती है बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक प्रभावशाली दिशा भी दे सकती है।

सच्चाई और अच्छाई का अनुसरण करना हमारे जीवन को आसान बनाता है। कभी कभी परिणाम के डर से भी हम सत्य बोलने से कतराते हैं, जो आगे चलकर झूठ बोलने की आदत में बदल जाता है। सत्य वचन हमारे जीवन की ढाल की तरह होते हैं, पीछे छूट जाते हैं सभी अवसाद। सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में उजली किरण की तरह बिखर जाता है और जीवन में एक नया रंग भर देता है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
5: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवीं या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है।

0: 1 अरब 70 करोड़ लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% हैं।
1: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
2: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
2: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।

0: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जिंद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति

0: मीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म नवरंग का दो गाना आपने सुना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती का ये कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: वो भी नहीं है कि बनाई तर्ज पर जैसे गया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: में मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जहां आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल सुरों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज है। श्रोताओ, यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, आप सुनिए ये गीत, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी।
2: बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जो उन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उनसे बातें करेंगे और हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे।
1: तो भाई वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता है कि आज के विषय क्या है। हाँ। तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत जरूरी है।
2: बताना जरूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप पर।
1: तो मनोरंजन की बात हो रही, भाई रेडियो की बात ना हो, मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो और हमारे जो श्रोता है वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम हैं उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है।
2: जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के,
1: हाँ वो तो कहा ना,
2: आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे सब मिलके सखियों से बात करके। तो ये सब चीजें जो है पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो है वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं, सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही लगता है।
1: बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है किसी को नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति है ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो।

0: बिल्कुल, चार दोस्त मिल गए जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी, किटी पार्टी
1: हाँ
0: जैसा करेंगी,
1: हाँ
0: उनका मनोरंजन हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है, तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखे, अपने विचार हमें लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में।
0: मतलब ये ऐसे उपचार हैं, कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट, यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है, यानी कि जो चीज अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के
1: क्योंकि
0: बराबर होती है।
1: प्राकृतिक उपचार होता है, तो
0: जी
1: प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान लें तो हम हमारे सारे चीजों का इलाज वैसे ही हो जाएगा।
0: आरती, आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगाकर
1: हाँ
0: पीतने हैं,
1: नहीं,
0: पसंद
1: बहुत
0: करते
1: महंगी
0: हैं।
1: आती हैं वो वाले, जो
0: हाँ
1: जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में, वो बहुत महंगा पानी आता है। तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात
0: जी
1: है। तो शुद्धता होती है जो प्राकृतिक चीजें, जड़ी बूटियां होती हैं, उनका
0: बिल्कुल,
1: कुछ अलग ही
0: तो
1: क्या
0: शुद्ध
1: रहता है।
0: हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है। इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो
1: बिल्कुल
0: जिन सखी की आज हम
1: बिल्कुल।
0: बात करने वाले हैं, ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं।
1: बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज,
0: जी
1: और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हो।
0: दिमागी कसरत।
1: भूल गए, थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे
0: जी
1: जीभ को घुमा देते हैं पूरी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियां होती हैं, पहेलियां बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं बूझो तो जाने। अब ऐसी बात, हमने कुछ लाइंस बोल दी, अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है,
0: हाँ
1: कौन सी चीज छिपी हुई है इन शब्दों में। तो ये पहेलियां जो है ना, इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना, उसकी सारी बिल्कुल काम में लग जाता है, बिल्कुल कि ढूंढने की आखिर है क्या चीज
0: और
1: ये।
0: पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना, तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से। तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं, बच्चों के दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा आपने क्या किया है, हमारे साथ
1: और
0: जरूर
1: सिर्फ
0: साझा
1: बच्चों के
0: करें।
1: ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते
0: जी
1: रहते हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो
0: जी
1: इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है, तो
0: हाँ,
1: वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
0: और बारिश का मौसम है ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती
1: बहुत
0: है।
1: ज्यादा।
0: इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब चीजों
1: वैसे
0: का।
1: भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए। कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग होता है,
0: जी
1: तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पियेंगे, तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें।
0: और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले हैं ताकि वो
1: अच्छा
0: प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार
1: बिल्कुल।
0: रहें।

0: हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी, और अब वो हमें
1: पूरे
0: कमेंट्स
1: ध्यान से,
0: भेजेंगे
1: पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे
0: जी,
1: तो।
0: और जो हमारे विषय हैं उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर, और बात जब मनोरंजन की होती है आरती, तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है,
1: बिल्कुल
0: और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं, और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे।
1: बिल्कुल
0: और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था।
0: हाँ
1: गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे। रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक खेल जो यानी सब परिवार पूरा मिलकर
0: जी
1: खेलते हैं
0: जी
1: हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियां और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन।
0: और पहले के जमाने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं
1: हाँ
0: और या पासे होते हैं उसमें, तो वो हम खुद ही किसी कोयले से या चौक
1: हाँ
0: से जमीन पर उसको काढ़ लिया करते थे
1: बिल्कुल
0: और कुछ पत्थर वत्थर रख के बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीजों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाजार में, और
1: बिल्कुल
0: अब ये चीजें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर टैब पर भी हम खेलते हैं
1: बिल्कुल।
0: वैसे
1: वो
0: ही
1: अभी
0: खेल।
1: भी गांव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई दे
0: हाँ
1: जाएंगी, वो बहुत अच्छे लगता है वो। और जो जमीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से,
0: हाँ
1: और एक दो तीन चार करके
0: हाँ और वो
1: जितने हैं,
0: लंगड़ी से चलते हुए खेलते
1: हाँ
0: हैं, कहीं दो
1: हाँ
0: पैर टिकाने हैं, कहीं एक पैर टिकाना
1: बिल्कुल,
0: होता
1: इस तरह
0: है।
1: के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन हाँ ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव
0: और
1: रखते थे।
0: बिल्कुल इन माध्यमों में

0: सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि संस्कार है, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था और
1: बिल्कुल
0: मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं।
1: जी
0: डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, OTT, ये इतनी सारी चीजें हैं, इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया है।
1: बिल्कुल। और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात।
0: हाँ
1: एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
0: हाँ
1: और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है। अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है।
0: हम बातें और करेंगे और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें।
1: बिल्कुल।

0: आरती, ये जो इस तरह के गीत हैं ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना ये कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये
1: बिल्कुल,
0: आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है।
1: बहुत ज्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो सबको पसंद आए,
0: जी,
1: है
0: और
1: ना।
0: परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग
1: बिल्कुल
0: रखेंगे, तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो
1: बिल्कुल
0: बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है,
1: जी
0: लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं।
1: बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और
0: जी,
1: बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको स्वीकार कीजिए।
0: और अपने बच्चों को भी, जो अपनी संस्कृति है, उससे अलग ना होने दीजिए।
1: बिल्कुल
0: अब वो नई चीजों को, जो भी आधुनिकता है, उसे अपनाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, उससे जुड़ाव बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहाँ इंटरनेट ने बहुत सारी चीजों को लेकर आया है, वेब सीरीज आई हैं, आगे इन्होंने इसके बारे में बात की है, फिर ये

0: बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी एआई एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को, और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है, और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में। तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें।
1: बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं।
0: हाँ
1: पहले रेडियो पर मनोरंजन हुआ करता था, पर आजकल तो मोबाइल फोन पर बहुत सारे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं, पर मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है। पर मेरा मनोरंजन का स्वरूप पहले जैसा ही है, लगता है कुछ भी नहीं बदला है। मुझे वो पुराने रेडियो का दौर अच्छा लगता है, इस कारण जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मैं सिंपल पुराने रेडियो पर ही सुना करता हूँ, और मेरे लिए यही अच्छा है।
0: हमारे सुनने वाले श्रोता है ना, जो इतने पुराने गीत जो आज हम सुन रहे थे ना, ये अक्सर सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उन्हें सुनाई पड़ते होंगे। तो आज एक बदलाव ये भी है उनके लिए कि इतने पुराने गीत आज सखी सहेली में उन्हें सुनाई पड़ रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं। और क्या संदेश है?
1: एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मनोरंजन अधिक जो विविध है, त्वरित और सस्ता हो गया है। घर बैठे ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे। अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियां भी कम हुई हैं और आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है।
0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, बड़ों की, और ना सिर्फ आंखों पर, आपकी और भी इंद्रियों को ये प्रभावित करते हैं। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीजों को लेकर बदलाव करते हैं, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके बहुत सा कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो टीवी लगा दिया, या तो फिर हमने उसके
1: फोन
0: हाथ में
1: पकड़ा
0: मोबाइल
1: दिया।
0: दे दिया कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहां से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो टीवी और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटकाकर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं, और फिर वो चीजें आदत में बदल जाती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है,
1: नहीं,
0: मनोरंजन देना है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन स्वस्थ मनोरंजन
1: बिल्कुल।
0: हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है।
1: और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं,
0: जी
1: तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना, तो एक जुड़ाव होता है खाने के
0: जी
1: साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है। इसलिए
0: हाँ
1: जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो, उस समय टीवी मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए, कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
0: बहुत सही बात कही आरती आपने, कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें हैं इस तरफ कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एक तरफ हम टीवी भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: और जितना असर हमें हर चीज को लेकर वो भोजन देगा शायद नहीं दे पाए।
1: बिल्कुल। तो और हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफी बदल गया है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीजें चेंज हो गई थोड़ी सी।
0: बिल्कुल, तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं
1: बिल्कुल बदलाव।
0: और बदलाव हम लेकर
1: हाँ
0: आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं।

0: बड़ा खूबसूरत गीत था और दो बहनों की आवाजें थी, तो दिमागी कसरत की बात है भाई, हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे श्रोता पता है कौन सी दो बहनें हैं इस गाने में, थोड़ी सी दिमागी कसरत उनकी भी हो जाए।
1: बिल्कुल
0: और ये भी एक खेल ही हो गया ना, मनोरंजन का बदलता स्वरूप है ये।
1: बिल्कुल, मनोरंजन के स्वरूप ही की बातें कर रहे थे, जैसे कि हम पहले हम परिवार के साथ में हम अपनी हंसी को बांटते थे, खुशी को बांटते थे, अब आज कई क्या ऐसा
0: अब
1: हो
0: हम
1: गया
0: सोशल
1: है,
0: मीडिया पर बांटते
1: बिल्कुल आज कई बार
0: हैं
1: हंसी जो होती है वो हमारे जो इमोजी होते हैं ना वो
0: हाँ
1: बनकर मोबाइल स्क्रीन पर रह जाती है, पहले संवाद आमने सामने होते थे अब आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं, कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में फोन में बिजी दिखाई देता है।
0: और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था,
1: अरे वाह।
0: जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ, उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमा घर और दूरदर्शन का जमाना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें काफी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: देखिए परिवर्तन तो होता ही है,
0: जी
1: अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारे एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मजेदार एक और मनोरंजन का साधन था कथा कहानी सुनाने का। अरे वाह, सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था, और कथा एक दिन में खत्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी, सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।
0: और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, इस जिस जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहां से कॉपी करके एज इट इज वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और
1: बिल्कुल,
0: आपकी क्या बात है
1: उससे
0: वो
1: हमें
0: राय भी हमने
1: बिल्कुल
0: लिखकर
1: उससे हमें
0: पहुंचाए।
1: आपके विचार
0: जी
1: जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा,
0: तो ये
1: आपके
0: तो हमें भी पता
1: अनुभव
0: है, बिल्कुल
1: आपके अनुभव मिल
0: गूगल पर
1: सकते
0: सब
1: हैं।
0: तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिखकर भेजने, इसलिए हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिखकर
1: बिल्कुल
0: भेजिए कि आपने क्या बदलते देखा है इस दौर
1: बिल्कुल,
0: में।
1: जो आपके अनुभव है ना वो जब हम साझा करेंगे ना तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे।
0: जी
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले, कठपुतली के शो, नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे, इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई है कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं, तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है
0: बिल्कुल।
1: जो।
0: और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती,
1: बिल्कुल
0: अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है, तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए।
0: बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित, सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीजों को आप लीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन भी जरूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीजों को देखिए, ऐसी चीजों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो, और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहे, इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे खेल

0: उनमें भी आप जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: बाकी
1: कहा
0: आप
1: आपने।
0: कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताई, आप वो भी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं, अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल
1: हाँ,
0: सकते हैं,
1: जिनमें
0: तो
1: कोई
0: सोचना
1: इलेक्ट्रिक कोई
0: पड़ता है।
1: खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ
0: बिल्कुल,
1: करते थे।
0: तो बहुत
1: लेकिन
0: सारी
1: घड़ी की
0: चीजें हैं
1: सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक
0: अंतराल
1: अंतराल
0: का।
1: का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
3: बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी।
2: अभी बातचीत से पहले हम सुनेंगे,
3: वही देखा चंचल जी की तरफ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम पहले
2: अभी हम गीत सुनेंगे।
3: चलिए पहले
2: भाई मनोरंजन की बात हो और मनोरंजन में गीत ना हो तो कैसे होगा।
3: आपने

0: तो भाई इस गीत के बाद में अब हम बात करेंगे सखी विशेष में, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उनकी जो है यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं।
1: बिल्कुल। और यानुंग जामोह लेगो भारत के अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संजोने और लोगों को निस्वार्थ उपचार करने में समर्पित किया है।
0: वो विशेष रूप से कुछ समुदाय हैं उनमें प्रचलित उपचार, पारंपरिक उपचार पद्धतियों की संरक्षक मानी जाती हैं। 1963 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सिका टोडे गांव में उनका जन्म हुआ और ये वहाँ के समुदाय हैं उनसे ताल्लुक रखती हैं।
1: बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा में उनका प्रवेश घर से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटी चिकित्सा सीखी, जो कि एक सम्मानित लोक चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में पौधों के चयन, तैयारी और उपचार और प्रार्थना से संबंधित पारंपरिक रीति रिवाजों का अवलोकन किया। और लगभग 15 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1995 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट से बीएससी और एमएससी कृषि की उपाधि प्राप्त की।
0: विश्वविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करना शुरू किया और वो लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए 2023 में वहां से सेवानिवृत्त हुई। और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक प्रशिक्षण को समर्पित कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने इंडिजिनियस हर्बल हेरिटेज की स्थापना की, जो औषधीय पौधों और घरेलू स्तर पर जड़ी बूटियों के बागानों की खेती, संरक्षण और शिक्षा देने की पहल है, जिसके माध्यम से पूर्वजों के ज्ञान को व्यवहारिक खेती से जोड़ा गया है।
1: और लेगो के योगदान का एक मुख्य पहलू है पुनर्जीवन और ज्ञान का प्रसार। बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटियों की सूची बनाना, उनकी प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और नर्सरी एवं रसोई के खेतों में दुर्लभ प्रजातियों की खेती करना।
0: स्वदेशी हर्बल हेरिटेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी चिकित्सा के पारिस्थितिक आधार को मजबूत करते हुए उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 5,000 औषधीय पौधों का रोपण करने में भी बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है।
1: और पिछले कई दशकों से यानुंग जमाह लेगो ने पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग उनसे संपर्क करते रहे, जिनमें पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याओं से लेकर श्वसन संबंधी शिकायतें और गुर्दे की समस्याएं, बहुत सारी चीजें शामिल हैं।
0: और आरती, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कह सकते हैं कि बड़ी बीमारियां भी हैं
1: हाँ
0: उसमें, और उन्हें उनका भी वो उपचार करती हैं। और पद्म पुरस्कार दस्तावेज 10,000 से अधिक लोगों के लाभ का दावा करते हैं। लोग लेगो अक्सर ऐसे विश्वास को व्यक्त करती हैं जो पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप हैं, यानी कि वो कहती हैं कि प्रकृति में ही बीमारियों के समाधान भी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है। ये एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जिसे वे पौधों के संरक्षण के संदेश के साथ जोड़ती हैं। लेगो का अभ्यास औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के जो अर्क होते हैं उस पर केंद्रित है, जिन्हें काढ़े, पाउडर, पेस्ट या तेल के रूप में तैयार किया जाता है। उनके प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2007 में सृष्टि सम्मान, 2013 में पारंपरिक वैद्य रत्न और 2019 में अरुणाचल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
0: तो बस लोग उनसे इसी तरह से चिकित्सा लाभ लेते रहें और वो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में इजाफा करती रहें, यही शुभकामना है। सुनते हैं गाना।
2: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।

0: शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का गाना था आरती, और हमने एक गाना सुनवाया था अपलम चपलम, और हमने एक दिमागी कसरत या पहेली पूछ ली थी अपने सुनने वालों से कि उस गाने में दो बहनों की आवाज, वो कौन सी दो बहनें हैं। तो बहुत सारे जो गाने हमने बाद में भी सुनाए ना, उनके लिए भी हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम कौन सा है, गायक गायिका कौन से है, वो सारी जो पूरी जानकारी है वो लेकर भेजी है। लेकिन फिलहाल वो हम बता दें कि वो आजाद फिल्म का गीत था, आवाज थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। और बात है दिमाग पहेली की,
1: बिल्कुल,
0: तो पहेली जो है वो दिमागी कसरत करवाती है, और दिमागी कसरत के लिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी
1: बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो कौन सा आप पहले पढ़ रही हैं संदेश?
0: एक संदेश में लिखा है कि मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही नियमित अखबार में आने वाली जो वर्ग पहेली होती थी ना, उन्हें भरने का बड़ा शौक रहा है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के लिए पहेलियां लाभदायक होती हैं। कुछ मिनट में पहेलियां सुलझाना दिमाग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए नियमित व्यायाम। हम किसी पहेली का उत्तर खोजते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, कल्पना, स्मरण शक्ति और सूझबूझ का एक साथ में उपयोग करता है। ये मानसिक अभ्यास सोचने

0: समझने की क्षमता को निखारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि एक साथ कितनी चीजें जुड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिखते हैं कि शारीरिक कसरतें हैं उनके साथ दिमागी कसरतें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पर हल्की कसरत करने के बाद प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, साथ में रेडियो पर विविध भारती भी सुनता रहता हूँ, दिमागी मनोरंजन रूपी कसरत भी हो जाती है। रही बात पहेलियों की, तो न्यूज़पेपर में हर रोज़ आ रहे क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व करके टाइम पास करने के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियां ही नहीं, मैं जो सखी सहेली और सुरीला सफर प्रोग्राम में कमेंट्स लिखता हूँ उसके लिए भी शब्दों और वाक्यों को सोचता हूँ और उससे मेरी दिमागी कसरत होती है। जो लेखन का कार्य करते हैं बिल्कुल उनके लिए हर बार नए शब्द चुनना, और जो काव्य गद्य लिखते हैं क्योंकि एक जैसा ना हो, एक रास्ता ना लगे, हर बार सुनने वालों को
1: बिल्कुल।
0: पढ़ने वालों को नया लगे, इसके लिए नए शब्दों को सोचना, नई रचनात्मकता लेकर आना अपने लेखन में, ये बहुत बड़ी
1: बहुत
0: दिमागी
1: जरूरी।
0: कसरत है।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहेलियां सुलझाना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है, ये ना केवल हमारे दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखता है बल्कि सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत के कुछ मुख्य फायदे भी हैं, जैसे कि एकाग्रता में सुधार होता है, पहेलियों को समझने और उनका जवाब खोजने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, समस्या सुलझाने का कौशल आता है, ये हमें किसी भी स्थिति में लीक से हटकर सोचने में मदद करती हैं, और साथ ही नए शब्दों और तर्कों का उपयोग करके दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं और नई यादें बनती हैं और कुछ नया और मजेदार भी होता है, इसी हमें तनाव से राहत मिलती है।
0: हमारे श्रोता ने तो बहुत सारी पहेलियां लिखकर भेज दी हैं और अंत में उन पहेलियों के जवाब भी लिखकर भेजे हैं। और देखिए एक बड़ा सुंदर संदेश है, पहेलियों के विभिन्न पहलुओं और सुरागों यानी उनके क्लूज को याद रखने से शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत होती है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है। आगे ये कहना चाहते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमता, पेचीदा सवालों को हल करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एकाग्रता और धैर्य, एक सही उत्तर तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है जिससे फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।
1: बिल्कुल। और सबने इसी तरह से लिखा है कि पहेलियां वास्तव में मस्तिष्क के लिए बेहतरीन दिमागी कसरत है। हमारे श्रोता कहते हैं ये हमारी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को चुनौती देती हैं जिससे मानसिक विकास होता है।
0: तो भाई अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए,
1: एक
0: क्यों
1: गीत
0: ना गीत सुने।

0: जब होती है तो कई बार ना चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक चीज है।
1: क्योंकि मैं खाती हूँ ऐसा।
0: हाँ, तुम बहुत चटोरी हो, ये बात पहले भी श्रोताओं के सामने तुम मान चुकी कि तुम बड़ी चटोरी हो। और बारिश में भी चटपटा हम देख के, जब हम देखते ना कि तली भुनी चीजें बन रही है, कहीं पकौड़े हैं या कुछ और है, चाट बन रही
1: है, मन नहीं मानता है फिर तो एकदम से।
0: लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को तुम कितना अनदेखा अनसुना करती हो, अपनी नाक कान बंद कर लेती हो।
1: बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि बारिश के मौसम में मैं बहुत ही कम, कभी खा लिया अगर पकौड़े वगैरह, पकौड़े खा लिए तो फिर मैं उस दिन बहुत ही हल्का कभी एक टाइम खाना खाती हूँ, वो भी बहुत ही हल्का सा खिचड़ी ले लिया कुछ इस तरीके का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हैवी जब हो जाता है ना तो वो आपकी परेशानी कर सकता है।
0: बिल्कुल, आपको अपच की समस्या इस मौसम में बहुत जल्दी हो सकती है, और आपकी जब पाचन समस्या अगर जवाब दे गई तो वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ लेकर आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में साफ उबला हुआ पानी पिए या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, ताजा और गर्म गर्म भोजन करें, खुले में जो भी बिकने वाली खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से बचें।
1: बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा बारिश पड़ी है उसके बाद हम गए हैं तो फिर बहुत नहीं बिकते हैं वो सामान, तो किस तरह से हम खा रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है, ताजा है या बहुत देर का रखा हुआ है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है।
0: और हम सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें, भी बारिश में कई बार आसपास में पानी जमा हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना गड्ढे जहां पानी सूखता ही नहीं है, कुछ ऐसी अगर चीज रखी है हमारी छत पर, हमारे आंगन में, गलियारे में, वहां पानी भर गया, वो सूख नहीं रहा, तो वहां मच्छर बहुत जल्दी पनप सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन्हें लेकर आ सकते हैं, तो वहां पानी का भराव ना होने दें। और घर में भी मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले जो अन्य साधन हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाएं उनका उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लेकर आए उनको धोकर अच्छी तरह सुखाकर फिर उपयोग करें, तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर हम कहीं से बाहर से भीग गए, भीग कर आए तो तुरंत कपड़े बदलें और अच्छे से उसमें हम स्नान करें या कुछ इस तरह की चीजें करें, और जिससे कि ना भीगे ना रहें।
0: और बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य के लिए खास तौर पर ध्यान रहना देना होता है, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है, इसीलिए इसमें इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। तो मौसम के अनुसार हल्के और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े भी आप बच्चों को पहना सकते हैं और बुजुर्गों के लिए भी इस चीज का ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है ये चीजें करनी। और साथ ही हमारे श्रोता भी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ताजा और गर्म भोजन करें, बाहर जाते समय रेनकोट या छाता साथ में रखें, सड़क पर जल भराव और खुले हुए तारों से आप दूर रहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश होती है उस समय अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है, तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए।
0: हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिए, ताजा और सुपाच्य भोजन हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी, दलिया, सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में नमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पिए, और जो खाने जो बाहर सड़क पर बिक रही है चीजें और जो ढकी हुई नहीं है उनको आप खाने से बचिए, उन्हें मत खाइए, भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के लिए किसी चीज का आप उपयोग कर सकते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में नमी और दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और पेट का संक्रमण

0: का संक्रमण, इन सबका खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ शुद्ध पानी पिएं, स्ट्रीट फूड से बचें। मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, और जैसा हमने बताया भी था कि मच्छरदानी भी आप उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगने से बचें, और अगर भीग जाए तो घर आते ही सादे या गुनगुने पानी से नहा लें और सूखे कपड़े पहने, हाथों को अपने साफ रखें। बैक्टीरिया से बचने के लिए समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें। आंखों के संक्रमण से बचने के लिए, जो बरसात में अक्सर ऐसा होता है कि आंखों का आना या जैसी कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, उसका खतरा बढ़ जाता है, तो अपनी आंखों को बार बार छूइए मत और साफ पानी से उन्हें धोइए।
0: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं इन संदेशों को, वो बहुत इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले संदेश में लिखा गया है कि बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है। कितनी अच्छी बात लिखी है, लेकिन आगे फिर लिख रहे हैं कि इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में साफ और ताज़ा भोजन का सेवन करना चाहिए, बाहर के खुले अस्वच्छ पदार्थों से बचना है, उबला स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई, इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, और जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। और ये तो बहुत सही बात है कि कपड़े एक बार गीले हो गए और लगातार बारिश है तो उनको सुखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। और नमी वाले कपड़े अगर हम पहने रहेंगे तो शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात का मौसम सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी जैसा होता है, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको या परिवार में किसी को भी तेज बुखार, अत्यधिक थकान, उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से आप परामर्श करिए।
0: और अब मुझे लगता है कि हमें एक गीत सुन लेना चाहिए, और ये होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: दिल्ली केंद्र से आप लोग सुन रहे थे। मुझे आशा है आप सभी को आनंद आया होगा, भगवान जगन्नाथ जी का आपको आशीर्वाद मिले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जय किशोर नागर जी, विनय कुमार सामंतराय जी, तकनीकी सहायता में मिहिर कुमार सामल और शंभुनाथ बेहरा थे। इसी के साथ मैं मोहन मजीठिया, मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से उनके साथ मिलकर आपके साथ ये जो समय बिताया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए विदाई लेते हैं और अब आप लोगों को ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली को। जय श्री जगन्नाथ।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ।
3: व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित तीसरे भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। सरकार ने ईंधन निर्यात की समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्लू ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई, कहा इससे छात्रों पर तनाव बढ़ेगा। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान की तैयारियां की गई हैं और व्यापक सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी किए गए हैं। अमरीका ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। म्यांमार में रोहिंग्यों के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को ले जा रही दो नौकाओं के बंगाल की खाड़ी में डूबने से 500 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए, अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपनी पल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से, रामपुर भांगर से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान हैं, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई, दो बहनें हैं और मेरी पत्नी, दो बच्चे।
0: वाह क्या बात है, सच में आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल है। पर यही कहूँगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म हैं वो सर्वोपरि हैं और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूँगा, मेरे गाँव में पुराने समय से ही काफ़ी फौजी हैं। छोटा सा गांव है पर फौज में काफ़ी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं। पांचों में से चार जो है अपने जो है फौज में हैं मैम।
0: वाह क्या बात है। तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम बिल्कुल। ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो है ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से, उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूं और देश की सेवा करो।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
1: जी मैम। मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियां सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती है, काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है, हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
0: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनती थी तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा
1: जी
0: होता था आपके साथ?
1: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियाँ सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज।

0: एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
1: वाह क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
0: जी मैम, मेरी उम्र जो है, मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था, फिजिकल मेरे पहले से ही टफ था मैम। मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
1: जी, तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए,
0: जी मैम,
1: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
0: मैं जैसे किससे कहानी सुनता था, तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है, तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पे जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
1: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आपके
0: जी
1: बाबा
0: जी
1: सब फौज में रहे, लेकिन
0: जी
1: आप चार भाई बहन,
0: जी
1: इनमें से कोई फौज में नहीं था।
0: जी
1: पिताजी खुद जो है, उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है। वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे
0: जी
1: जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
0: जी
1: तो वो वहाँ मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए
0: फिर
1: देश
0: से
1: के प्रति।
0: जी
1: तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहाँ अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
0: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से 2 या 3, किसी के 2 लड़के हैं, 2 भी भर्ती उसी में सेना में, 3 है 3 भी। सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम, मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले, बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं कह ऐसा कभी नहीं होगा,
1: वाह क्या
0: मेरे को
1: बात
0: देश
1: है,
0: से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊँगा।
1: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, इसकी खास बात यही है।
0: जी
1: जिस तरह से बेटियों को जब ब्याह जाता है, कहा जाता है कि जो जहाँ तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
0: जी
1: वापस लौट कर मत आना,
0: जी
1: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी, या तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
0: मैडम, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को। तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पिनातोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
1: वाह क्या बात है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है? वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो जो 20 सालों का जो समय रहा है, जिसमें आप अपना योगदान दिया है और
0: जी
1: अभी
0: जी
1: भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है, महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको।
0: मैम, बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर
1: जी
0: बहुत यादें जुड़ी रहती हैं। और काफ़ी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूँगा, मेरी यादें काफ़ी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
1: वाह क्या बात है। निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे, काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की सोच सिर्फ देश प्रेम है ना,
0: जी मैम,
1: और
0: बिल्कुल
1: हमेशा जहन में ये चलता रहता हो कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे, इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम
1: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा, हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने, कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है, जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का ज़रूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है। क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी, और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियाँ, जिससे जुड़ी हुई कहानियाँ आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम
0: जी, आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सहस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे, और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन बीरपुर बिहार में हुई। उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डीजी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया। 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे, और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड

0: मेडल भी मिला है,
1: जी
0: तो ये साथ साथ आप करते रहे और कितना समय निकाल पाते?
1: मैम, मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया। कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया तो मैंने अपनी एसएसबी में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैम।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का ये सफ़र यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे ज़रूर जो आपके साथी होंगे, और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली, और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
1: हाँ मैम, काफ़ी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफ़ी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं। बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते। और बोलते हैं कि और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
0: वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, वो लोग जो सीमा में, यानी कि सहस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले, वो साथी, वो
1: जी
0: भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे। कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज जो खुद सेनाओं में हैं, कुछ खुद फौज में हैं, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी, और क्या ऐसा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
1: मैम, ज़्यादातर जो है हमारे गांव में से काफ़ी लोग होते हैं। लास्ट में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सभी भर्ती हो लिए थे लास्ट में मैं ही हुआ था। तो जितने भी तैयारी करते थे ज़्यादातर लोग सेना में भर्ती हो गए और कुछ थे जो हमारे साथी थे जो कि नहीं हो पाए। जैसे कि मेरा एक मित्र था योगेश शर्मा, वो जो है कोशिश भी किया पर भर्ती नहीं हो पाया।
0: तो उनके मन में मलाल रहा होगा कि काश हम भी तुम जैसे बन पाते, काश।
1: हाँ मैडम बिल्कुल बोलते हैं
0: अच्छा, कुछ
1: कि
0: ऐसे भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहां हैं, हम भी आज सेनाओं का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा
1: नहीं
0: स्रोत?
1: मैडम, ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते हैं। और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टॉप वॉच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे। तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया। स्टॉप वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
0: सुखद रहा है,
1: जी
0: मतलब।
1: जी
0: अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे।
1: जी मैम, मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान तो उनसे मैं कोचिंग लेता था। तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था। तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था, इस प्रकार से करना है, डंड ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सिटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
0: वहाँ तो जब आप ट्रेनिंग देते थे, उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर, तो कैसा महसूस होता था, और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी, और आपकी नियुक्ति कब हुई?
1: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई थी
0: जी,
1: मैम
0: ये तो आपने मुझे बताया,
1: जी,
0: तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
1: उनके बाद में हुई मैम मेरी,
0: अच्छा,
1: सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम। और जो है मैंने काफ़ी और ज़्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए जिनको मैं
0: सिखाता था।
1: सिखाता था वो लग गए, तो मेरे को और भी ज़्यादा लगन हुई मैम, मैंने और ज़्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी एसएसबी बल में भर्ती
0: तो
1: हुआ मैं
0: आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई,
1: जी।
0: यानी कि मास्टर जी।
1: नहीं मैं नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता,
0: हाँ,
1: जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है, अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है,
1: जी मैम
0: अपने आप से लड़ना सिखाता है, और कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वहीं हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है। तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड

कांस्टेबल हैं सहस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम, सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहां दर्शाता है।

0: आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफ़र बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत से कहानियां इनके जहन में ज़रूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ जानना चाहती हूँ। 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था, क्या हुआ था जिसके बाद आप कि चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया, और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं आपको मैं बताना चाहूँगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35BN में। एक मैम, हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, आईपीएस संजय सर ने, और हमारे बल ने एसएसबी ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब हैं, डीजी साहब ने जो है अपनी एसएसबी को जो कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का, और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पर थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो है 4-5 जो ज़िले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियां होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे आईपीएस आईजी संजय सर, और डीआईजी सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित शाह डीसी डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैम
0: जी। अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था, उस वक्त कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ, कैसा कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो आईजी जो आईपीएस आईजी संजय सर थे वो, और अपने जो है डीआईजी सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर 2IC, नरपत सर डीसी, ये सभी आते थे, और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ, उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है

0: स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का CHM बना दिया जाए।
1: वाह,
0: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं CHM था, एक नंबर टीम का CHM वो था।
1: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ? किसी के साथ साझा किया था उस वक्त?
0: नहीं मैम ये साझा तो
1: नहीं
0: ऐसी
1: किया
0: चीजें नहीं
1: जाता उस
0: किया
1: वक्त,
0: जाता,
1: ऑपरेशंस के दौरान नहीं किया
0: मगर जो
1: जाता।
0: है टीम जो है एक ही माइंड के एक माइंड सेट के सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
1: मुश्किल
0: है।
1: होता है।
0: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो, एक जगह रहना एक जगह खाना कभी ऐसा नहीं, भाई की तरह रखना बिल्कुल, कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
1: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम
0: और
1: करते हैं।
0: जी जिसमें कि मैम जो है IG जो संजय सर और DIG सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं, वो कोई भी हो अपना 7-7 दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि
1: जी
0: अंदरूनी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: अंदरूनी बातें हैं।
0: जी
1: और जब हम कहते हैं, जब आपकी फोर्स की बात होती है, तो बहुत सारे
0: जी
1: ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको
0: जी
1: हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि
0: जी
1: आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी मायोविस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मुझ मेरा चयन किया गया, हम हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?
0: मैम देखो बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी DGDs मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
1: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते
0: जी
1: हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे,
0: जी मैम
1: आंसू रो रहे होंगे जानने के लिए, वो और कौन से सम्मान हैं
0: जी मैम
1: जिनसे नवाजा गया आपको?
0: जी मैम मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है, DG साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर DGDs मिली है, गोल्डन DGDs 1 स्टार, गोल्डन DGDs 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे DG साहब ने, IG साहब ने, DIG साहब ने, कमांडेंट सर ने काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया है मैम।
1: वाह, क्या
0: जी
1: बात है। और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए
0: जी
1: हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे हैं ना, उनकी दीप्ति,
0: जी
1: उनकी
0: मैम
1: चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है, और
0: जी
1: ये
0: जी
1: सच्चे देश प्रेम की गाथा है। शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस

0: करें कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सशस्त्र सीमा बल में रह कर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: मैम,
0: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
1: जी।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात ज़रूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है अपने अपने कार्यों को, कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे, बताते होंगे तो ज़रूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन्स रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए कहते हैं ना कि मजबूत, एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग थी जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSB में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NSG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NSG के अंदर, वो भी किया है। वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो है PTI इंस्ट्रक्टर था NSG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही जब तक उम्र है आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रहे हैं और 20 सालों का सफ़र यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा, निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में अपने परिवार, सबसे पहले कि सहस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभाकर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है, या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम ऐसा है कि जो परिवार और

0: देश, कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है। वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप, तो उनसे क्या कहा आपने, क्योंकि आप फौज में और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं। कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया, कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया?
0: मेरे को मैम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफ़ी डिफेंस में, उनको पहले से पता था। पर फिर भी जो है एक रहती है, तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
1: अच्छा ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली? अब बच्चों पर, जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियां सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
0: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है। वो NDA की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
1: वाह क्या बात है। और हम यही कहेंगे जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं उनको देखकर वो ज़रूर प्रेरणा प्राप्त करें।
0: बिल्कुल मैम,
1: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं, और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
0: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे FM रेम्बो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो, तो ये जो जहाँ भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
1: बिल्कुल, कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है, इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। संदेश हमारे पास आए हैं, यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भगिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहीं, और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं जय हिंद सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित कर रहे हैं। FM रेनबो को हार्दिक बधाइयाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें, और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल भवानी का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम ज़रूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो DP है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में, सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा

0: कहीं ना कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है
1: जी।
0: और मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से, निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं।
1: जी, एक और संदेश हमारे पास आया है सीटी दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें। और आज मैं बहुत उत्साहित हूं, प्रसन्न हूं संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से। हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज

0: संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गारंटी से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना, और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो आपसे और भी बहुत सारी बातें हो करने की, कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और ख़ास तौर पर ये नगमा भागिंदर जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागिंदर सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM रेनबो के स्टूडियोज़ में आने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। GD राजेंद्र सिंह जी, 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए ये आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भागिंदर सिंह जी।
1: थैंक यू मैम।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा।

0: ये साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये मकनपुर, नवाडीह, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदननगर, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनक पुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और उदयपुर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, अस्कला, दोरना, जरहाडी, मानपुर, महेशपुर, जगन्नाथपुर, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, दुलदुला, तपकरा, पत्थर गांव और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये बंदरचुआ, डोडा पानी, चूल्हा पानी, साजा पानी, गट्टी बुड़ा, करडेगा, हल्दी मुंडा, सिकिरमा, बिदुरपुर, गारीघाट, अंकिरा, टिकलीपारा, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, झिक्की, परसाडाण, पेटा, कुरडेग, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्म जयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 97 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछाप, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, तेंदुमार, सीलिंगपारा, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वनमंडल के केंदई, एतमानगर और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 56 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, नागदरहा, पंडरीपानी, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध

0: द क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

आंखों आंखों में इस फिल्म का गीत भी हमने आपको सुनवाया। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें थी, वर्मा मलिक का लिखा हुआ गीत और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए अगले गीत की ओर आगे बढ़ते हैं।

आस का पंछी, इस फिल्म से अभी हमने सुना लता मंगेशकर के साथ मुकेश को। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को हसरत की शब्द रचना के साथ और शंकर जयकिशन की संगीत के साथ। फिल्म है हमराही।

0: लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी को अभी हमने सुना। हमराही फिल्म थी हसरत की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हसरत का ही लिखा हुआ पर संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म है हमसाया और आवाज़ें हैं आशा भोसले के साथ महेंद्र कपूर की।
1: आज की रात कभी

आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म 9-2-11 से। आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज, मजरू का गीत, एसडी बर्मन का संगीत।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रोफेसर से। आशा भोसले के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

ये था कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला सभा।

0: सखियों स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम महिला सभा में और मैं हूं आपकी दोस्त लिंटा। आप सभी को हमारा प्यार और भगवान श्री जगन्नाथ के पावन रथ यात्रा की भी शुभकामनाएं। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, हम ये कामना करते हैं। और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सखियों, कहते हैं जब संवेदनशील सोच और सच्ची सेवा साथ होती है तब समाज में सकारात्मक बदलाव अपने आप दिखाई देने लगता है। महिलाओं और बच्चों का विकास केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं है, लेकिन एक सशक्त, स्वस्थ और जागरूक समाज की नींव भी है। जब कोई माँ स्वस्थ होती है, बेटी शिक्षित होती है और हर बच्चे को सही पोषण और सुरक्षा मिलती है, तभी देश का भविष्य भी मजबूत बनता है। और इन्हीं उद्देश्यों को साकार करने में महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, जो कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी के पद पर जिला जांजगीर चांपा में कार्यरत हैं। और आज अनीता मैडम से हम महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़े अनेक विषयों पर उनके अनुभव और मार्गदर्शन से जुड़ी बातें आप सखियों से साझा करेंगे। अनीता मैम, स्वागत आपका हमारे रेडियो के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: मैम, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे मैम।
1: जी, मैं रायगढ़ से हूँ। अभी वर्तमान में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जांजगीर में पदस्थ हूँ। मैं 93 से PSC के थ्रू इस पद पे आई थी।
0: जी, तो इस विभाग में आप कितने वर्षों से जुड़ी हैं मैम?
1: मुझे 30 वर्ष हो चुके हैं इस विभाग में कार्य करते हुए।
0: इस कार्य क्षेत्र में जब आप जुड़ी तो आपका इतने समय का अनुभव कैसा रहा मैम?
1: महिलाओं एवं बच्चों के लिए कार्य करने में बहुत ही अच्छा लगा। और ये पुल पुलिया बनाने का कार्य नहीं है महिला बाल विकास विभाग का कार्य।
0: जी,
1: ये मानव निर्माण का कार्य करता है और बहुत सारे चेंजेस अभी दिखाई देते हैं हमें।
0: जी,
1: विभिन्न गतिविधियां जो आयोजित हुई हैं उनके माध्यम से जो प्रचार प्रसार हुआ है उसमें महिलाओं और बच्चों में काफी सुधार परिलक्षित हुआ है।
0: जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है और महिलाओं और बच्चों के लिए किस प्रकार से कार्य कर रही है मैम?
1: जी, महिला एवं बाल विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों का समग्र एवं सर्वांगीण विकास करना है तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में निरंतर प्रयास किया जाना है।
0: जी,
1: महिला बाल विकास विभाग समाज के कमजोर वर्गों के साथ सभी चिन्हित हितग्राही वर्ग को सहायता प्रदान करता है। विभाग विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करता है।
0: जी मैम,
1: और उनके माध्यम से कार्य करता है, जैसे कि पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इन सभी विभागों से समन्वय स्थापित करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कुपोषण और बाल मृत्यु दर को कम करना।
0: जी मैम,
1: बच्चों का समग्र विकास करना है अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना,
0: जी
1: पोषण के अधिकारों की रक्षा करना, गर्भवती शिशुवती एवं बच्चों के पोषण स्तर एवं किशोरी बालिकाओं में जागरूकता लाना,
0: जी
1: शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को शाला में पुनः प्रवेश करवाना, उनमें जागरूकता लाना,
0: जी
1: बाल विवाह व दहेज प्रथा जैसी कुरीति को रोकना, हिंसा की शिकार महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं कानूनी सहायता प्रदान करना है, एवं महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें कौशल विकास एवं आजीविका के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
0: जी, बहुत ही सुंदर जानकारी इस वक्त जो हमारी बहनें सुन रही हैं उन तक कार्यक्रम के माध्यम से आप पहुंचा रही हैं मैम। और जैसा कि अभी आपने उद्देश्यों के बारे में बताया तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मैम कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनकी की जानकारी जो हमारी ग्रामीण बहनें हैं उनको अवश्य रूप से होनी चाहिए।
1: जी जी मैम,

0: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है महतारी वंदन योजना।
1: जी मैम,
0: महतारी वंदन योजना मार्च 2024 से लागू की गई है छत्तीसगढ़ में, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उनके सम्मान की सुरक्षा करनी है।
1: जी,
0: तो ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है और जो विवाहित है, उनके लिए ₹1,000 प्रति माह प्रत्येक महिला के खाते में जो पंजीकृत है
1: जी
0: सरकार के माध्यम से, DBT के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर की जा रही है, जिससे वो आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में खर्च कर रही है। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना
1: जी,
0: और इसका विशेष ड्राइव कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें जांजगीर ने अभी प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
1: वाह, क्या बात है।
0: मातृ वंदन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो महिला प्रथम बार गर्भवती होती है उनको पोषण स्तर को उनको सुधारना है, उनके खाते में ₹5,000 की राशि प्रदान की जाती है जो कि 2 किस्तों में होती है।
1: जी मैम,
0: जब गर्भवती महिला का टीकाकरण हो जाता है उसके पश्चात ₹3,000 की राशि उनके खाते में DBT के माध्यम से जाती है, और जब बच्चा हो जाता है उसके पश्चात ₹2,000 की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है।
1: जी मैम,
0: कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है, और इसमें जब दूसरी बालिका होती है तो एक मुश्त ₹6,000 की राशि महिला के खाते में प्रदान की जाती है।
1: जी,
0: तीसरी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
1: जी मैम,
0: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बाल विवाह को रोकने के लिए है, दहेज प्रथा को रोकने के लिए है, आदर्श विवाह को बढ़ावा देने के लिए है।
1: जी,
0: तो इस योजना के माध्यम से जब लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़की की 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
1: जी,
0: तो इसमें समूह के रूप में विवाह करवाया जाता है, और इसके माध्यम से उनको ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ₹35,000 उनको चेक के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं
1: जी,
0: बाकी जो ₹15,000 है उनके आने जाने का व्यय, उनकी शादी में व्यय, उनकी ज्वेलरी, कपड़े, मोर मुकुट, जूता चप्पल सब में व्यय किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना महिला बाल विकास विभाग की है।
1: बहुत सुंदर।
0: इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई है। यह छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में 2015 में लागू की गई थी
1: जी,
0: उसमें रायगढ़ जिला था और बीजापुर था, लेकिन इसका विस्तार करते हुए सभी जिलों में अब लागू कर दिया गया है। इसमें भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, लड़कियों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करना है
1: जी।
0: तो इसमें महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से बहुत सारी गतिविधियां और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं
1: जी मैम।
0: इसके अलावा हमारे विभाग में सखी वन स्टॉप सेंटर है, नवा बिहान है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है जिसमें बच्चों के लिए हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं
1: जी। सखियों, इतनी अच्छी जानकारी योजनाओं के बारे में और इस क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं आप सभी को मिल रही हैं, उस बारे में अनीता मैडम एक से बढ़कर एक जानकारी आप सभी को दे रही हैं। बस जरूरत है कि आप अपने पास के केंद्र में जाएं और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। मैडम, हर जगह पर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र तो होता ही है, तो आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो महिलाओं और बच्चों के विकास में किस प्रकार से भूमिकाएं निभा रही हैं, और जो हमारी गर्भवती महिलाएं और जो छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: वहाँ पे उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं?
0: बिल्कुल मैम, महिला बाल विकास विभाग की सबसे छोटी इकाई है आंगनबाड़ी केंद्र, जो कि प्रत्येक गाँव में स्थित है, और 800 की 1000 जनसंख्या पे एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाता है ग्रामीण इलाके में, जबकि ट्राइबल इलाके में 300 से 400 की जनसंख्या पर भी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाते हैं
1: जी मैम।
0: आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे जो हितग्राही होते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती माताएं, शिशुवती माताएं, ये सभी हमारे हितग्राही होते हैं, और इन आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उन्हें पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। VHSND जो कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम लोग संचालित करते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में होता है, सुपोषण चौपाल
1: जी।
0: ये सुपोषण चौपाल में हम जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उन पेरेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें संस्कार डेवलप करने का कार्य करते हैं उनके माध्यम से। इसमें विशेष थीम आयोजित की जाती है महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। देखिए, खाने पीने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, गर्भवती माता की किस प्रकार देखभाल करनी आवश्यक होती है, ये सभी जानकारियां आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से और पर्यवेक्षक

0: के माध्यम से पेरेंट्स को दिया जाता है। 3 वर्षों तक बच्चों का मस्तिष्क का विकास होता है। तो हमारी एक गतिविधियां, अभी मैं केंद्र में गई थी तो बहुत ही अच्छे से वहां पे गतिविधियां हो रही थी। ऊन लिए हुए थे 5-6 गोले ऊन लेके, सभी पेरेंट्स उसमें खेल कर रहे थे।
1: जी मैम।
0: तो उसमें जो जाल बन रहा था, बहुत ही सुंदर जाल बन रहा था, इसमें संदेश यह भेजा जा रहा था कि यदि आप बच्चों को ध्यान दोगे तो बच्चों का विकास भी इसी प्रकार से होगा।
1: वाह, क्या बात है।
0: इसके अलावा यह देखा गया है कि ज्यादातर यह मिथक है कि माँ ही बच्चे को संभालती है, लेकिन पिता की भूमिका भी बहुत आवश्यक है। तो वहाँ पे पेरेंट्स में पिता को भी बुलाया जाता है और उनकी भूमिका के बारे में भी समझाइश दी जाती है। इस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: वाह, सुंदर जानकारी आपने दी अभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में।
0: जी।
1: और ये हम सभी जानते हैं कि पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा,
0: जी,
1: इन तीनों को बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव माना जाता है।
0: बिल्कुल मैम।
1: इस दिशा में जो हमारा विभाग है मैम, वो क्या प्रयास कर रहे हैं और परिवार की भी क्या क्या मतलब जिम्मेदारी इसके प्रति बनती है?
0: जी, पोषण और स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है।
1: जी,
0: जैसे कि कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है।
1: जी,
0: तो जो हमारे बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी केंद्र में, उनको अनौपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से दी जाती है।
1: जी,
0: और इस अनौपचारिक शिक्षा को अभी बड़ी बड़ी कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इसमें जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो कि स्कूल जाने वाले होते हैं,
1: जी,
0: उन बच्चों को स्कूल में भ्रमण कराया जाता है बड़े बच्चों के साथ।
1: अच्छा।
0: ताकि उनकी वहाँ पे सोच विकसित हो कि आगे हमको स्कूल आना है, और स्कूल छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उससे कम होती है। और स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से महिलाओं को दी जाती है।
1: जी जी।
0: क्योंकि देखिए, घर में जैसे ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है चीला प्रतिदिन खाएंगे या चावल चावल खाएंगे, लेकिन हरी सब्जियां भी आवश्यक है, प्रोटीन भी आवश्यक है।
1: बिल्कुल मैम।
0: मौसमी फल उनको लेने चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि आप काजू किशमिश खाओ, मौसमी फल आप उपयोग कीजिए, बिही आते हैं, मुनगा आता है, ये सब का उपयोग आप करिए। इस प्रकार से उनको समझाइश दी जाती है और बच्चों को भी खिलाइए। 6 माह के बाद बच्चों को स्तनपान को थोड़ा कम करके, और बाद में उनको सेमी सॉलिड फूड और आगे चल के सॉलिड फूड देना जरूरी है, यह भी बताया जाता है, और स्तनपान के महत्व को भी बताया जाता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैम। मैम, आपसे ये जानना चाहूंगी कि यदि किसी महिला या बच्चों के साथ किसी प्रकार का हिंसा हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है या कोई शोषण हो रहा है मैडम, तो उन्हें सबसे पहले खुद से, अपने आप से क्या कदम उठाने चाहिए, और आपके जो विभाग है उनकी तरफ से किस प्रकार की मदद उनको दी जाती है?
0: बिल्कुल मैम। यदि किसी महिला या बच्चे के साथ उत्पीड़न हो रहा है,
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए हमारे विभाग के द्वारा 2 कार्यक्रम लागू किए गए हैं। एक तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, और दूसरा हब है जो महिला सशक्तिकरण के लिए है। यदि किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो सबसे पहले तो उनको 112 में कॉल करना चाहिए, 1098 में कॉल करना चाहिए, और 181, ये 3 हेल्पलाइन नंबर है।
1: जी।
0: महिलाओं के लिए है 181 और पुलिस सहायता केंद्र 112 है।
1: जी।
0: तो इसके माध्यम से उनको कॉल करना चाहिए, तत्काल ही सभी टीम एक्शन में आ जाती है।
1: अच्छा।
0: तो जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, अब वो कहीं ट्रेन में चल के दूसरी जगह पहुंच गया, मान लीजिए रांची का कोई बच्चा या तो घर से भाग के या किसी कारणवश छत्तीसगढ़ में आ चुका है,
1: जी मैम,
0: जब चाइल्ड लाइन की टीम उसे रेस्क्यू करती है,
1: जी,
0: तो हम फिर वहाँ के CWC से बात करते हैं।
1: अच्छा। जी।
0: और फिर यहाँ के CWC को प्रोड्यूस करके उनके पेरेंट्स को खोज कर उनके पास पहुँचाते हैं। इसके अलावा जैसे अन्य बच्चे हैं, जैसे अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए बालगृह है।
1: जी।
0: बालक बालगृह और बालिका बालगृह है, दोनों चीजें हैं।
1: जी।
0: तो बालगृह में भी रखा जाता है CNCP बच्चों को।
1: जी।
0: हमारा जो महिलाओं के लिए है सखी वन स्टॉप सेंटर, कोई भी पीड़ित प्रताड़ित महिला,
1: जी,
0: किसी कारणवश अपने घर से या तो झगड़ कर आ जाती है,
1: जी जी,
0: या किसी प्रकार का उनके साथ उत्पीड़न होता है,
1: जी,
0: तो 5 दिन तक का शेल्टर सखी वन स्टॉप सेंटर में दिया जाता है।
1: जी।
0: सखी वन स्टॉप सेंटर 24/7 मतलब 7 दिन कार्य करता है, उसमें छुट्टी नहीं होती।
1: जी।
0: कोई ना कोई वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की उनको सुविधाएं प्रदान की जाती है।
1: जी।
0: जैसे कि विधिक से संबंधित के लिए,
1: जी,
0: भी वहाँ पर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और उनकी काउंसलिंग की जाती है।
1: जी।
0: इसके अलावा महिलाओं के लिए हमारे यहाँ नवा अभियान है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला।
1: अच्छा।

0: हमारे यहाँ आती है
1: जी,
0: तो जैसे FIR होता है वैसे ही DIR होता है। तो DIR नवाभियान सेंटर है
1: जी,
0: उसमें जो प्रशासक है वो भर्ती है, उसको DIR भर्ती है
1: जी,
0: और उसको जितनी भी सुविधाएं उत्पन्न कराई जाती है विधिक से
1: जी,
0: तो वो पूरा कोर्ट में पेश करती है DIR को।
1: अच्छा जी,
0: तो इस प्रकार ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, कानूनी प्रावधान की भी उनकी जानकारी हो जाती है
1: जी,
0: और परिवार परामर्श केंद्र पुलिस विभाग में संचालित है उसमें भी काउंसलिंग की जाती है
1: जी
0: और परिवार को जोड़ा भी जाता है परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से।
1: जी,
0: जो हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है इसमें दो विंग काम करते हैं
1: जी मैम,
0: एक तो CWC और JJB जुबेनाइन जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी।
1: जी
0: JJB में जो अपराध से जुड़े हुए बच्चे रहते हैं
1: जी,
0: उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है और उनकी जो भी काउंसलिंग वगैरह होती है वहाँ पे काउंसलिंग की जाती है और संबंधित संस्थाओं में भेजा जाता है उनको, जैसे बाल संप्रेक्षण गृह हुआ,
1: जी
0: पॉक्सो के भी प्रकरण इसमें आते हैं और CWC में भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है
1: जी,
0: उसमें CNCP बच्चे जो केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे होते हैं उनकी सुनवाई होती है
1: जी
0: और उनको भी आवश्यकतानुसार या तो बालिका गृह में बाल गृह में भेजा जाता है या
1: जी
0: उनके घर में भी रिस्टोर किया जाता है।
1: जी
0: इसके अलावा फॉस्टर केयर प्रोग्राम है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा है, जांजगीर जिला इसमें भी सबसे आगे फॉस्टर केयर में।
1: जी
0: जैसे 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं
1: जी
0: उनको, छोटे बच्चों को तो सब गोद ले लेते हैं लेकिन बड़ों बच्चों को गोद नहीं लेते,
1: नहीं
0: तो
1: लेते
0: संस्था में जो निवासरत बच्चे हैं
1: जी,
0: उनको हम ऐसा परिवार तैयार करते हैं जिनको वो बच्चे अपने में अपना ले।
1: अच्छा,
0: और ऐसे हमारे जिले से लगभग 10-11 बच्चे हमारे जा चुके हैं, 2 साल तक उन लोग रहते हैं परिवार में
1: जी,
0: और यदि वो मैच हो जाते हैं, मैचिंग हो जाती है उनकी
1: जी,
0: तत्पश्चात उनकी गोदनामा की कार्यवाही की जाएगी। तो अभी ये नई योजना है
1: जी,
0: लेकिन बहुत ही यूजफुल और अच्छी योजना है,
1: बहुत ही अच्छी लाभप्रद जानकारी हमारी बहनों तक पहुंच रही है मैम आपके माध्यम से। और जैसा कि बहनों आपने सुना कि आप अपने ही परिवार की नहीं लेकिन अगर आप अपने आसपास भी अगर किसी को परेशान देखते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि अनीता मैम ने बताया कि बच्चों के लिए आपको 1098 पर आपको कॉल करना है, पुलिस केंद्र अगर आपके पास में आप नहीं जा सकते हैं तो आप 112 पर संपर्क कर सकते हैं, और महिलाओं से कोई जुड़ी जानकारी है तो आप उसमें 181 पर कॉल करके तुरंत आपको जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सकती हैं, जिनका कि आपको लाभ उठाना भी चाहिए। मैम ये सारी जानकारियां तो हुई कि क्या क्या लाभ पहुंचाए जा रहे हैं, सुविधाएं कौन कौन सी मिल रही हैं, लेकिन हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उनकी जो हमारी सखियां हैं वो विभाग द्वारा कुछ रोजगार और कौशल विकास से संबंधित,
0: हाँ, रोजगार से जुड़ने की योजनाएं
1: उनका लाभ उठा रही हैं क्या मैम?
0: बिल्कुल उठा रही है। इसमें एक हमारी विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना है
1: जी,
0: छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना।
1: अच्छा,
0: इस योजना में जैसे समूह में भी ऋण दिया जाता है और एकल महिला को भी दिया जाता है, जो 35 से 45 वर्ष की महिला है सक्षम योजना के अंतर्गत इसमें ऋण दिया जाता है। ऋण इसमें बहुत ही कम होता है, 3%
1: जी,
0: वो भी साधारण ब्याज होता है
1: जी।
0: तो जैसे सक्षम योजना के लिए कोई महिला जैसे विधवा है, परित्यक्ता है
1: जी,
0: वो ऋण लेना चाहती है तो यह 40,000 के गुणकों में दिया जाता है, जैसे 40,000, 80,000, 1,20,000 इस प्रकार हम उनको लोन के रूप में देते हैं और उसको 3 महीने बाद उसकी किस्त चालू होती है। तुरंत चालू नहीं होगी, 3 महीने में वो अपना रोजगार व्यवस्थित कर लेगी, उसके पश्चात उसकी किस्त बांध दी जाती है और वो किस्तों में अपनी राशि को अपना वापस कर सकती है। इसके अलावा जो समूह की महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं भी इसमें ऋण ले सकती है छत्तीसगढ़ महिला कोष के ऋण योजना अंतर्गत, और इसमें भी 6 लाख रुपए तक का ऋण 3% ब्याज की दर पे उपलब्ध कराया जाता है। इसमें किसी बैंक के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती।
1: वाह,
0: जिला प्रबंधक जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं तो वो ही उनके ऋण स्वीकृत करते हैं कलेक्टर के अनुमोदन से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा स्व सहायता समूहों का गठन तो प्रारंभ से महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किया ही गया है
1: जी मैम,
0: और विभिन्न विभागों से समन्वय करके भी महिलाओं को जागृत करती है। जैसे कृषि विभाग में भी लोन दिए जाते हैं महिलाओं के लिए, NRLM की महिलाएं, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि NRLM से बहुत महिलाएं जुड़ी हैं
1: जी मैम,
0: तो उनको भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है उनकी तरफ से। अभी एक मैं किसी शिविर में बैठी थी तो एक महिला बहुत खुश होके बोल रही थी, अब हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी,
0: कि हम कुछ तो कमा रहे हैं
1: जी।
0: कई
1: जी
0: महिलाएं सिलाई से जुड़ी है, मशरूम से जुड़ी हुई है
1: जी,
0: ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है
1: जी, जी, जी।
0: तो हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से किशोरी बालिकाओं का ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण करवाए थे
1: जी मैम।

0: अभी तो बालिकाएं बहुत ही खुश हुई और कुछ बालिकाओं ने अपना खुद से ब्यूटी पार्लर खोल लिया है
1: जी।
0: तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है।
1: मैम, यदि कोई महिला है जिनको कि इन सरकारी योजनाओं की जानकारी तो है, वो लाभ भी लेना चाहती है
0: जी,
1: लेकिन उनको उसकी प्रक्रिया पता नहीं है मैम
0: जी, मैम
1: तो वो कहाँ पे संपर्क करें मैम?
0: एक तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है जो हर गांव में है, इसके अलावा परियोजना कार्यालय है
1: जी,
0: पर्यवेक्षक है, सखी वन स्टॉप सेंटर है, हब है
1: जी,
0: इन सभी में वो आके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकती है।
1: और अगर जैसे कुछ लिखा पढ़ी का काम है और वो पढ़ाई नहीं जानती तो उसमें भी
0: मदद कर देते हैं, उसमें भी मदद किया जाता है उसमें
1: जी। जी जी मैम, महिलाओं के सशक्तिकरण की जैसे कि हमारी चर्चा हो रही थी
0: जी,
1: तो आपके अनुसार एक महिला को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए किन बातों पर सबसे अधिक हमें ध्यान देना होगा मैम?
0: महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक तो अभी बगावत पे उतर आ रही है महिलाएं
1: जी,
0: देखने में आ रहा है
1: जी।

0: हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है जो हर गांव में है, इसके अलावा परियोजना कार्यालय है
1: जी,
0: पर्यवेक्षक है, सखी वन स्टॉप सेंटर है, हब है
1: जी,
0: इन सभी में वो आके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकती है।
1: और अगर जैसे कुछ लिखा पढ़ी का काम है और वो पढ़ाई नहीं जानती तो उसमें भी
0: मदद कर देते हैं, उसमें भी मदद किया जाता है उसमें।
1: जी जी जी मैम, महिलाओं के सशक्तिकरण की जैसे कि हमारी चर्चा हो रही थी
0: जी,
1: तो आपके अनुसार एक महिला को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए किन बातों पर सबसे अधिक हमें ध्यान देना होगा? मैम,
0: महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक तो अभी बगावत पे उतर आ रही है महिलाएं,
1: जी जी
0: देखने में आ रहा है
1: जी जी मैम,
0: तो अपना जो बगावत ना करें, और सशक्तिकरण, शिक्षा के स्तर, कौशल विकास के प्रशिक्षण एवं अपनी सोच को बदले थोड़ा सा,
1: जी जी मैम,
0: तो काफी आगे तक महिलाएं जा सकती है। अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं, ऐसा देखा जाता है कि लड़कों को तो पढ़ा लेते हैं
1: जी,
0: लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते। ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है जब छोटी बच्चियां रहती है, थोड़ी सी बड़ी हुई तो छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए उनको घर में छोड़ दिया जाता है
1: जी,
0: और वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है और उसकी पढ़ाई छूट जाती है
1: जी मैम,
0: तो उनको बहुत ही जरूरी है कि अपने बच्चियों का भी ख्याल रखे वो, और उनको अनिवार्य रूप से स्कूल में भेजें, कौशल प्रशिक्षण दिलवाए
1: जी।
0: बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें महिलाएं शामिल हो सकती हैं
1: जी मैम। मैम अंत में हमारे कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों और उनकी बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: महिलाएं समाज की शक्ति हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें
1: जी,
0: अपने बेटों को भी बचपन से ही संस्कार डालें कि वो प्रत्येक महिला और लड़की की इज्जत करे, जैसे कि अभी
1: जी,
0: लड़कों को भी शिक्षा देना आवश्यक है जिसमें हमारी बहनों की भूमिका बहुत अच्छे से हो सकती है।
1: बिल्कुल मैम,
0: यही संदेश मैं देना चाहूंगी, तभी समाज में समानता आएगी।
1: बिल्कुल मैम, सशक्त महिला वही होती है जो अपने अधिकारों को भी जानती है और अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा के साथ पूरा करती है।
0: बिल्कुल
1: मैडम, मुझे लगता है कि आज आपने सिर्फ जानकारी नहीं दी है लेकिन हमारे सुनने वाली जो बहनें और सखियां हैं उनको एक नई सोच आपने प्रदान किया है, उनमें आत्मविश्वास आपने जगा दिया है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: अनिता मैम, आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में समय निकाल कर आए और आपने लाभप्रद और इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को प्रदान की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका भी, जो आप लोगों ने मुझे सुना।
1: तो सखियों, आप थी श्रीमती अनिता अग्रवाल जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर जिला जांजगीर चांपा में कार्यरत हैं। उम्मीद है मैडम के द्वारा प्राप्त जानकारियों का लाभ आप सभी जरूर उठाएंगी। और सखियों, अब वक्त हो चला है एक सुंदर से गीत का, जिसकी फरमाइश के लिए हम तक मेल्स पहुंचे हैं इन सखियों के। बिलासपुर से सुकृता साहू, उदिता कुमारी, झलक सचदेव, इशिका देशमुख, रेणुका शर्मा, अंशिका गुप्ता, नवनीत कौर, अर्शलिन कौर एवं नेहा बरेत का। हमारी इन सभी सखियों की फरमाइश पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज में और जतिन ललित के संगीत निर्देशन में फिल्म खामोशी का ये गीत।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सखियों अन्नपूर्णा पवार जी साहस पर केंद्रित कुछ बेहतरीन कविताओं की प्रस्तुति देंगी।
1: महिला सभा की सभी श्रोता बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कवित्री अन्नपूर्णा पवार आहुति भाटापारा से आप सबके मध्य उपस्थित हूँ। बहनों, आज महिला मन की वेदना और महिला सशक्तिकरण पर दो कविताएं आप सबके साथ साझा करने चाहती हूँ। पहली कविता जिसका शीर्षक है मैं चोटिल हूँ। मैं चोटिल हूँ मुझे जीने दो, मैं चोटिल हूँ मुझे जीने दो, हंसने दो खुश रहने दो, कुछ फैसले खुद करने दो। मैं चोटिल हूँ मुझे जीने दो, उधड़ी तुरपाइयां सीने दो, मैं चोटिल हूँ मुझे जीने दो। क्यों मेरे बदले हर फैसले ये दुनिया कर सकती है, क्यों हंसने की आजादी भी किसी और की हंसी से मिलती है, क्यों समझौतों की वेदी पर मेरी आशाएं जलती हैं। परिवार को खुश रखने में यूं हर एक गम तो न पीने दो, मैं चोटिल हूँ मुझे जीने दो। क्यों मैं ना रह सकती हूँ, क्यों मैं ना रह सकती हूँ, क्यों सजी धजी ही जचती हूँ, एक आधे पैमाने पर क्यों पूरी मापी जाती हूँ, दुनिया की उम्मीदों पर क्यों हरदम आकी जाती हूँ। मेरे ही जीवन से मुझको बस दो चार महीने दो, मैं चोटिल हूँ मुझे जीने दो, मैं चोटिल हूँ मुझे जीने दो। आइए अब दूसरी कविता की ओर चलते हैं। इस कविता का शीर्षक है भीतर पौरुष जिंदा रखना। कई बार हम महिलाओं से ऐसी उम्मीद की जाती है कि हम महिला ना होकर आधे पुरुष हो जाएं, लेकिन आवश्यक भी है कि पूरी तरह नारीत्व को धारण ना करके यदि थोड़ा सा पुरुषत्व हम अपने भीतर जागृत कर लें तो शायद जिंदगी और आसान हो जाएगी। कविता इस प्रकार है कि नारी इतना करना कि अब सपनों का मुक्त परिंदा रखना, भीतर पौरुष जिंदा रखना। कर्तव्यों का भार उठाते स्वयं प्रभा ढकती जाती। अबला तू कहलाती तुझको लज्जा तनिक नहीं आती। बांध सके जीवा ऐसी तैयार सदा वो फंदा रखना, भीतर पौरुष जिंदा रखना। और तूने ही तो उत्पन्न किए हैं सृष्टि के सम रूप सभी नर

0: प्राणी, जनजीवन, पशु पक्षी और अद्भुत रूप सभी। गर्भ तेरे गहरे में, गर्भ तेरे गहरे में तुझसी बाकी एक सुनंदा रखना, भीतर पौरुष जिंदा रखना, भीतर पौरुष जिंदा रखना। शौर्य तेरा जय घोष बने, गूंजे ललकार दिशाओं में, शौर्य तेरा जय घोष बने, गूंजे ललकार दिशाओं में। नारित्व तेरा, नारित्व तेरा गौरव जब तक ना बहने लगे हवाओं में, रण कौशल से तेरे रण में, रण कौशल से तेरे रण में लहराए सदा वो झंडा रखना, भीतर पौरुष जिंदा रखना, भीतर पौरुष जिंदा रखना।
1: सखियों, अब अनुमति दीजिए आपकी सखी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।

कार्यक्रम महिला सभा अभी हम सुन रहे थे, पेश कर रही थी लिंटा मनोज। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर, और अब समय हुआ है आपको कार्यक्रमों की जानकारी देने का।

0: ग्राम सभा होगी 7:20 पर। आज बेरा के गोठ का विषय होगा छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी हमर पहचान हवे। किसानवाणी कार्यक्रम का समय होगा 7:30 पर। किसानवाणी में आज की बात होगी मशरूम उत्पादन रोजगार के साधन विषय पर। भेंटवार्ता के क्रम में डॉक्टर राजेश कुमार साहू अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कोरबा से बातचीत का विषय होगा रसायन मुक्त खेती आज की आवश्यकता। साथ ही कार्यक्रम में मंडी मौसम और सामयिक सुझाव भी होंगे। रात 8 होगा कार्यक्रम चिट्ठी मिली। रात 8:20 पर हम सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। ईमेल करें गीत सुने 6:20 पर हम प्रसारित करेंगे और शेष भाग होगा 7:00 से। अब एक नजर कल के प्रसारण पर। कल प्रातः 6:30 पर खेती की बात का विषय होगा राहिर की खेती। जानकारी हम तक पहुंचाएंगे रूपेश कंवर। कल सुबह 10 होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। तीजन भाई और साथियों द्वारा पंडवानी हम सुनेंगे। प्रसंग होगा पांडव का धृतराष्ट्र के पास जाना। साथ ही सुनेंगे बिसाहूराम बैगा आतुराम और सुख सिंह बैगा का गाया बैगा कर्मा। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा कल सुबह 10:30 पर। आज सुबह कार्यक्रम हम सुनेंगे 7:05 पर और गांधी चर्चा का प्रसारण समय कल सुबह 7:20 का होगा। यादों के झरोके से फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 7:30 पर। प्रधानमंत्री आवास योजना पर जानकारी आप सुनेंगे कल प्रातः 6:45 पर नव विहान की कड़ी में। कल शाम 5 होगा कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कल शाम 5 सुनेगा चित्रपट संगीत। कल आप सुनेंगे युवा जगत शाम 5:35 पर। नेल्सन मंडेला पर एक बहुमुखी व्यक्तित्व पर केंद्रित होगी बातचीत और साथ ही होगा क्रम युवा पसंद। ग्राम सभा के कल शाम 7:20 पर बेरा के गोठ का विषय होगा होम हर्बल गार्डन। कल ग्राम सभा के बाद 7:30 पर हम सुनेंगे खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार साहू के साथ फोन इन कार्यक्रम। सुगम संगीत में कल रात 8 हम सुनेंगे मिताली सिंह को। रजनीगंधा कार्यक्रम होगा कल रात 8:15 पर। ईमेल करें गीत सुने अपने नियमित समय यानी शाम 6:20 पर और शेष भाग 7:00। कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार के लिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है।

0: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, प्रधानमंत्री है काली अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के संगे संग बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन के घलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम लेकर ही लोकार्पण। विधानसभा के चौथा दिन आज छत्तीसगढ़ अग्निशमन और आपातकालीन सेवा संशोधन विधेयक के संगे संग तीन विधेयक ला ध्वनिमत ले करेगी पारित। और रथ यात्रा के पर्व आज देश के संगे संग प्रदेश में घलो भक्तिभाव और उत्साह के संग मनाया जाते। राज्यपाल और मुख्यमंत्री है दिन बधाई। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है काली 17 जुलाई के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम लेकर ही। एमा रायपुर रेल मंडल के बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन घलो शामिल है। मुख्यमंत्री है कहिन कि अमृत भारत स्टेशन योजना हा भारतीय रेलवे ला आधुनिक सुरक्षित सरल बनाए के दिशा में एक ठिन बढ़िया पहल हरे। ओमन विश्वास जतन कि सरोना और बालोद रेलवे स्टेशन के उन्नयन ले यात्री मन ला और बढ़िया सुविधा मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथा दिन आज सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह अलदा और देवरी घुलघुल गांव में उद्योग स्थापना पर कथित फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के मुद्दा उठाइन। उमन सरकार ले दोषी मन ऊपर कार्रवाई और कंपनी ला आवंटित जमीन ला निरस्त करे के मांग करीन। श्री बघेल ह जानना चाहिन कि का सरपंच और सचिव ऊपर कार्रवाई होही और दोनों कंपनी ला दे गे जमीन निरस्त करे जाही। जवाब में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी है बताइन कि दोनों कंपनी है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ले जल और वायु अधिनियम के तहत सहमति पर अर्जी नहीं करीन, जेखर सेती मंडल ला ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं मिलीस। ओमन मानिन कि गांव अलदा के प्रस्ताव में जालसाजी के शिकायत के जांच त्रिस्तरीय समिति है करेनहीन। जांच में पाएगी कि ग्राम सभा में सर्वसम्मति ले अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे के प्रस्ताव पास हो रही। पुलिस का विवेचना करत है, जांच के बाद दोषी और कंपनी मन ऊपर कार्रवाई करे जाही। मंत्री के जवाब ले विपक्षी सदस्य मन हा संतुष्ट नहीं हुईन और ओमन सदन ले बहिर्गमन कर दिन। उन्हें सदन में आज कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अनियमितता के मुद्दा उठाइन। ओमन कहिन कि बस्तर संभाग के माई लोगिन मन ला ए योजना के फायदा नहीं मिल पाते, गड़बड़ी करैया विभागीय अधिकारी मन पर कार्रवाई करे के मांग करीन। जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े है कहिन कि योजना के तहत जम्मो हितग्राही मल्ला फायदा मिलत है, कहूं गड़बड़ी होही तो जांच कराया जाही। एकर बाद विपक्षी सदस्य मन हा नाराबाजी करत सदन ले बहिर्गमन कर दिन। राज्य विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ अग्निशमन और आपातकालीन सेवा संशोधन विधेयक पेश करेगी। संगे संग छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक घलो पेश करेगी। ये तीनों विधेयक ला ध्वनि मत ले पारित कर देगी। विधानसभा में काली 17 जुलाई के विपक्ष धार ले प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव ऊपर चर्चा कराया जाही। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू है खादु ले जुड़े मुद्दा उठाइन। ओमन आरोप लगाइन कि कतकोन जिला में ज्यादा खातू दे गए है, जेखर जांच कराया जाना चाहिए। जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम हा बताइन कि केंद्र सरकार के आवंटन के मुताबिक उर्वरक कंपनी हा सहकारी संग्रहण केंद्र और निजी थोक विक्रेता मन ला खातू देते। उन्हें सदन में आज कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद हा मछली पालन पट्टा आवंटन के मुद्दा उठावत पूछिन कि प्रदेश में कतका समिति और समूह मन ला पात्र माने जाते और ए बेरा कौन से मछली पालन नीति लागू है। जवाब में मंत्री श्री नेताम हो बताइन कि प्रदेश में नवीन मछली पालन नीति 2022 प्रभावशील है। ओमन मानिन कि जांजगीर चांपा जिला के बमनीडी के गांव सरहर और नगर पंचायत बलौदा में पट्टा आवंटन में गड़बड़ी के शिकायत मिले रहीस, फिर जांच समिति है शिकायत ला निराधार बताइन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा सतत कृषि विकास ला सुनिश्चित करे बर किसान मन के बीच एकीकृत कृषि पद्धति ला बढ़ावा दे के जरूरत ऊपर बल दे है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस में उमन कहिन कि किसान और वैज्ञानिक मन के सामूहिक मेहनत ले बढ़िया परिणाम मिलत है। उमन कहिन कि अनुसंधान ले किसान मन ला बेरा मा लाभ मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री है कहिन कि देश है 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन के रिकॉर्ड बनाए हैं। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो।

0: आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगो बढ़ो बांचे समाचार कोती। आज पूरा देश में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा निकाले गए है। छत्तीसगढ़ में घलो रथ यात्रा के पर्व भक्तिभाव के संग मनाया जाते। आज बिहनिया चले मंदिर मन में पूजा पाठ करिया लोगन मन के भीड़ बाढ़ गए है। प्रदेश में आज जगह जगह भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा ला रथ में बैठा के यात्रा कराया जाते। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में राखे गए महाप्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुई। इस मौके में ओमन पूजा पाठ करके छेरा पहरा के रस्म निभाई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगन मल्ला रथ यात्रा के शुभकामना देवत कहीं कि भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा सनातन संस्कृति सामाजिक समरसता लोक परंपरा और जनमन के आस्था के महापर्व है। ये उत्सव समाज के लोगन मल्ला सेवा समर्पण और लोक कल्याण के संदेश देते। ये मौके में सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल विधायक पुरंदर मिश्रा के संगे संग आने जनप्रतिनिधि और बड़ संख्या में श्रद्धालु मन शामिल हुई। दुर्ग रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 में कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज बिहनिया हुए सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 जिन लोगों की मौत हो गई और एक जिन 8 साल के लड़का गंभीर रूप से घायल हो गए है। दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल बताइन कि एक फटफटी में बैठ के 5 जिन लोगन मन भिलाई ले रायपुर जावत रहीन। इस दौरान दशमेश ढाबा के तीर सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर ले जा टकरीन। घटना के बाद 4 जिन लोगों के मौके में मौत हो गए। घायल लड़का के इलाज रायपुर के एम्स अस्पताल में चला थे। ओती बलरामपुर जिला में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जारगीम गांव के तीर महिला मजूर मल्ल भरे एक ठिन पिकअप गाड़ी अंते तंते होके पलट गए। इस घटना में 2 जन लोगों की मौत हो गई और करीबन 10 जिन लोगन मन घायल हो गए है। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ विकासखंड के बोरतालाब के आश्रित गांव गांधी नगर में काली संझा पानी ले भरे गड्ढा में बुड़े ले 3 जिन लड़का के मौत हो गई है। जानबा के मुताबिक ये घटना ऐसा गड्ढा में हुई जहां रेलवे ले जुड़े काम पर ठेकेदार डहर ले खनन के काम करे गई रही। गांव के लोगन मन आरोप लगाए है कि गहरा गड्ढा ला सुरक्षित नहीं रखे गई रही जिखर से ये घटना हुई। कोंडागांव जिला के केसकाल पुलिस एक ठिन कार ले 102 किलो ले ज्यादा के गांजा बरामद करे है। जब्ती करे गए गांजा के भाव करीबन 51 लाख रुपया बताया जाते। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के रहिया रहे। पुलिस के मुताबिक गांजा ओडिशा ले रायपुर कोती लाया जात रही। सूचना मिले के बाद केसकाल घाटी में नाकाबंदी के दौरान कार के डिक्की ले गांजा के 20 ठिन पैकेट बरामद करेगी। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ले गए है। छत्तीसगढ़ योग आयोग बस्तर में योग युक्त बस्तर अभियान शुरू करी। आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल अपन बीजापुर प्रवास के दौरान कहिन कि प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक मन के माध्यम ले लड़का जवान सियान और गर्भवती माई लोगिन मन ला रोजे योग के प्रशिक्षण दे जाही। और अब थोरकुन समाचार सार में। सर्वोच्च न्यायालय जम्मू राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मल्ला सियान या गंभीर बीमारी ले ग्रसित कैदी मल्ला बेरा ले पहली रिहाई पर जरूरी नीति बनाए और आगुला करे के निर्देश दे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय माउंट एवरेस्ट चढ़ैया जांजगीर चांपा के पर्वतारोही अमिता श्रीवासला बधाई दे हवे। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर GST को तिले जम्मू राज्य मल्ला भेजे गए चिट्ठी में मकान बंगला फ्लैट बिसाए या कोनो कार्यक्रम पर बुकिंग कराए के बाद ओला रद्द कराए ऊपर काटे गए GST ला वापिस करे के निर्देश दे है। और माई लोगिन और नोनी मन के सुरक्षा ला और ज्यादा मजबूत बनाए पर दुर्ग पुलिस पिंक पेट्रोलिंग गश्त अभियान के शुरुआत करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गाँव फिर। प्रधानमंत्री काली अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के संगे संग बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन के घलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम लेकर ही लोकार्पण। विधानसभा के चौथा दिन आज छत्तीसगढ़ में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा संशोधन विधेयक के संगे संग 3 विधेयक ल ध्वनिमत ले करेगी पारित। और रथ यात्रा के पर्व आज देश के संगे संग प्रदेश में घलो भक्तिभाव और उत्साह के संग मनाया जाते। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दिन बधाई। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.5

किशोर कुमार आशा भोसले का गाया ये गीत अभी आप तक पहुंचा। ये गीत था फिल्म जख्मी से और गौहर कानपुरी ने लिखा था और संगीत रचना बप्पी लहरी की थी। और इस गीत के लिए जो मिलीजुली फरमाइशें हमें आपके ईमेल के माध्यम से आई हैं वो ये हैं। नानगाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत हैं। राष्ट्रपाल गजबीय राधिका अनिष्का तन्मय गजबीय हैं डूंगरगांव से। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनित, सोनम वर्मा। बक्सर बिहार से ये हैं शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू। कैदीमुडा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह हैं। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से हमें ये ईमेल भेजा है अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत ने। सादुल शहर राजस्थान से है रामकुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड। दिल्ली शहर से हमें ये ईमेल फरमाइशी भेजते हैं आसमा परवीन, आमना परवीन, वली भाई अंसारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना, सुहान और अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। ये हैं गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, असद मिफ्रा नवाज और चाहत। छन्नूलाल श्रीवास, अनिता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास हमें बिलासपुर से ईमेल करते हैं। साथ में हैं रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास। देवरी भाटापारा से हैं केआर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। सावतपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन हैं। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। मुंबई से आदिबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। जलंधर से संदीप जाटोलिया और तेलंगाना से हमें ईमेल भेजा है मोहम्मद बुरहाउद्दीन ने। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र का यह ईमेल है। संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गवांडकर, टुक टुक प्रिंस, आकाश, सुमित गवांडकर और ध्वनि गवांडकर। जलंधर से मीना कौर, मन्नत नूर हैं और पंजाब से हैं, यवतमाल से हैं रामटेके, यशोधरा, श्रव्या रामटेके। भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु, भुवन कामरी। अवेरा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीना, नेहा, मोनिशा साहू। खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक, डावर मोहम्मद, उमर डावर और राजेंद्र कटारी। यह ईमेल जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो है पटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का है। नरगोड़ा से है कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी दिशा गोस्वामी। राजकुमार दौड़ी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दौड़ी हैं हिसार से। महसौल सीतामढ़ी बिहार से हमें ईमेल प्राप्त हुआ है। मुसर्रत जहां नाज, तलअफ नफरत और नुजहत सियाशीन, नाज और नाजिया नूर नाज का है। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े, हनुमत उत्तम जमदाड़े। कैंचिया बठिंडा पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीन, करणदीप, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजूत। गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, पूजा, पायल और जगदीश। और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल चिंपा और पूजा परिहार। उमा राज, पवन, संजय, दीपक, कमल राजगढ़ बिहार से हैं। अक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां हैं। और अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। समदिल नवापाड़ा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता। राजकोट से हैं राजेंद्र कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। सरगुजा मैनपाट से हैं अजीत पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन करजत मुंबई से हैं। पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। पहंदा पलारी से हैं नीतीश

कुमार, अनु तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, और खमरिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार हैं। बालोद से हैं दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। नेपानगर से हैं प्रखर, नीति, शुरभि, अश्विन, मंगलबेन और राजेंद्र शाह। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, परसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का यह ईमेल है। श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे हमें धांडी नांदूर महाराज से ये ईमेल करते हैं। पलारी से ईमेल एक और है, प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी का। देवरी भाटापारा से गल्लूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम। और ये हैं टोरोवाल जिला नवागांव पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। आप सबकी पसंद पर हमने ये गीत सुनवाया आपको, फिल्म जख्मी का। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शर्मिली का, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें हैं। नीरज का लिखा हुआ गीत है, एस डी बर्मन का संगीत है और फरमाइश करने वालों के नाम इस गीत के बाद सुनेंगे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। अभी हमने आपको सुनवाया शर्मिली फिल्म का गीत, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें, नीरज का लिखा हुआ गीत और एस डी बर्मन का संगीत। आप इंतज़ार कर रहे होंगे अपने नामों का। जी हाँ, वो हैं जाखोद से शंभूलाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक, पूजा खटक हैं। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल हैं। ये जमानिया गाजीपुर यूपी से हमें ईमेल मिला है सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल का। सुभाष गोदरा, विमल, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदरा हैं फलकीजा पंकज से, पंजाब से। और ये हैं जोधपुर राजस्थान का ईमेल रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, करवी और हिमाक्षी का है। डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग हैं। और बुल्ढाना वड़शिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। ये हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो। ये हैं परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश। रेशमा साहू है बठेना से। नईवाल हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा हैं। और बोरसरा नैला से प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोदी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और पीरांशु साहू। राजकोट से हैं जूली जगदीश, गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी हैं। गुमला झारखंड से नजूल होदा, जावेद, शगुफ्ता, अंजुम। तेलंगाना निज़ामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, साक्ष कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। आप हैं लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। जिला धमतरी से हैं कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन। कुम्हार गली कोलगांव से हैं पांडुचंदन, ऊषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुम्हार। अगला ईमेल हमें जो दिखाई दे रहा है वो है रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष सौहान का। और पिलौट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, नवीन, सौरव, साइना शर्मा और मैंडी शर्मा। पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, कौरव, ज्योति, रानी, गुरमीत और कौर और मनु इनके साथ हैं। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। धनौरी तेलीवाल से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान। और ये हैं मेहरनगर उमखेड़ महाराष्ट्र का अभिजीत गवांडकर, सरिता, प्रिंस एकांश गवांडकर का ईमेल। और ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप हमें मोहाली चंडीगढ़ से भेजते हैं। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। अंबागढ़ चौक से हैं रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। छत्रपति शिवा संभाजीनगर से हैं राजेश साबले, पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल और राजेश। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। डूमरगांव से हैं वलीउल्ला अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और अफजल इफजाल ताज। ईमेल हमें दिखाई पड़ रहा है कोटवा नागपुर बलिया का है, ओम प्रकाश राय, ऊषा, अमित राय और हैप्पी राय। नारायणपुर बलिया से है ये। और

ये हैं नरवेल महाराष्ट्र का पी एस न्वारकर, निर्मला विशाल न्वारकर। सौगा मगरलोट से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। कुम्हार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दड़े। यह है कर्मा चौक लोहारडी जिला कवर्धा का ईमेल। अशोक कुमार साहू लेलेश्वरी, खुशांत निशांत साहू का है। रोहासी से हमें ईमेल करते हैं मुकेश साहू, नंदन, मनीष, मयंक और जानकी साहू। नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सा, जस्सी और सीता और गीता। चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदली लहरे। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूचा, मधु, सागर बालूचा हैं। और सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। पोटिया कला से मुकेश भत्ता, नरम भत्ता। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर। दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमल रानी, गीतिका भानी। और पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुताई, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। ये हैं जफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचिता, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली और सर्वदा जी देशमुख। दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। आप सबकी पसंद पर हमने ये गीत सुना। अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुहाग फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं इसमें और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: प्रादेशिक समाचारों के लिए आकाशवाणी रायपुर से जुड़ते हैं प्रादेशिक समाचार के लिए।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेलमंडल के बालोद और सरोना स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य विधानसभा में आज कथित फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में अनियमितता के मुद्दे पर विपक्ष ने किया बहिर्गमन। सदन में 3 संशोधन विधेयक पारित। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा। और दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 17 जुलाई को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेलमंडल के बालोद और सरोना रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और यात्री केंद्रित बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरोना और बालोद रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अल्दा और देवरी घुलघुल गांव में उद्योग स्थापना के लिए कथित फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से दोषियों पर कार्रवाई और कंपनियों को आवंटित जमीन निरस्त करने की मांग की। श्री बघेल ने जानना चाहा कि क्या सरपंच, सचिव पर कार्रवाई होगी और 2 कंपनियों को आवंटित जमीनें निरस्त की जाएंगी। जवाब में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि दोनों कंपनियों ने छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल और वायु अधिनियम के तहत सहमति के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए मंडल को ग्राम सभा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने स्वीकार किया।

0: कि ग्राम अल्दा के प्रस्ताव में जालसाजी की शिकायत की जांच त्रिसदस्यीय समिति ने की थी। जांच में पाया गया कि ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया था। श्री चौधरी ने कहा कि पुलिस विवेचना कर रही है, जांच के बाद दोषियों और कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में आज कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने गड़बड़ी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि योजना के तहत सभी हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है, कहीं भी गड़बड़ी होगी तो जांच कराई जाएगी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने उर्वरक वितरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जिलों में लक्ष्य से अधिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई है, जिसकी जांच कराई जानी चाहिए। जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि केंद्र सरकार के आवंटन के अनुसार उर्वरक कंपनियां सहकारी संग्रहण केंद्रों और निजी थोक विक्रेताओं को आपूर्ति करती हैं, जहां से किसानों तक उर्वरक पहुंचाया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि विभाग के वितरण के बाद केवल उपलब्ध शेष उर्वरकों का रिकॉर्ड रखता है। सदन में आज कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने मछली पालन पट्टा आवंटन का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रदेश में नवीन मछली पालन नीति 2022 के तहत पात्र समितियों और समूहों को पट्टा आवंटित किया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह के ग्राम सरहर और नगर पंचायत बलौदा में पट्टा आवंटन में अनियमितता की शिकायत मिली थी। हालांकि कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने शिकायतों को निराधार पाया। राज्य विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ अग्निशमन और आपातकालीन सेवा संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक भी पेश किए गए। इन तीनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा में कल 17 जुलाई को विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल रमेन डेका ने कल छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट संसदीय कार्य के लिए बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक तथा अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक अलंकरण से सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए संवाददाता संतराम साहू को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार अलंकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए सौरभ सिंह परिहार और डॉक्टर राजेश राज को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर अलंकरण प्रदान किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग गश्त अभियान की शुरुआत की है। आज भिलाई स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने 14 विशेष पिंक पेट्रोलिंग टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक टीम में 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और टीम का नेतृत्व पुलिस उप निरीक्षक करेंगी। पिंक पेट्रोलिंग टीमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में प्रवेश और छुट्टी के समय गश्त करेंगी। इसके अलावा पार्क, गार्डन, बाजार, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी नियमित निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जांजगीर चांपा की पर्वतारोही अमिता श्रीवास को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अमिता ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाया है। गौरतलब है कि अमिता श्रीवास ने बीते 22 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और दिन भर

0: पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इस मौके पर विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ पर सवार कर यात्रा निकाली गई। राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर छेरा पहरा की रस्म निभाई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी।
1: छत्तीसगढ़ वासियों को रथ दुरतिया जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग विधिवत जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र स्वामी और सुभद्रा माता का पूजन अर्चन किए हैं और उनसे प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे।
0: इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दुर्ग रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार

0: इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दुर्ग रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक 8 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि एक दोपहिया वाहन में सवार होकर 5 लोग भिलाई से रायपुर जा रहे थे। इसी दौरान दशमेश ढाबा के पास उनका तेज रफ्तार वाहन हाईवे किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोपहिया सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बच्चे का इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा है। पुलिस ट्रैक्टर को जब्त कर चालक से पूछताछ कर रही है। वहीं बलरामपुर जिले में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जारगीम गांव के पास महिला मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के बोर तालाब के आश्रित ग्राम गांधी नगर में कल शाम पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस गहरे गड्ढे में हुआ जहां रेलवे से जुड़े कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा खुदाई की गई थी। कोंडागांव जिले की केशकाल पुलिस ने कार से 102 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 51 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए संस्करण का मकसद टिकट बुकिंग के अनुभव को पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर GST की ओर से सभी राज्यों को भेजी गई चिट्ठी में मकान, बंगले, फ्लैट खरीदने या किसी कार्यक्रम के लिए बुकिंग कराने के बाद उसे रद्द कराने पर काटी गई GST को वापस करने का निर्देश दिया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराने की अपील की है। मूक बधिर दिव्यांग युवाओं के लिए कल 17 जुलाई को रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित विशेष रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा द्वारा कल कुलीपोटा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भाटापारा हथबंद स्टेशनों के बीच संपार डाउन लाइन स्थित ट्रैक में मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके कारण 18 जुलाई को सुबह 8 बजे से 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक इस मार्ग पर सड़क यातायात बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें रायपुर रेल मंडल के बालोद और सरोना स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य विधानसभा में आज कथित फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में अनियमितता के मुद्दे पर विपक्ष ने किया बहिर्गमन। सदन में 3 संशोधन विधेयक पारित। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा। और दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी रायपुर से किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। 7 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम के पहले भाग में हमने आपको सुनवाया था सागर फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की, माफ कीजिएगा, सुहाग फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और जो फरमाइश करने वाले श्रोता थे वो ये थे। राजनांदगांव से बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत कुमार प्रांजल और समीक्षा आराध्या साहू। महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश। भागलपुर से हैं कमल किशोर साहू शाह, अश्विनी अमरदीप, पशुपति साह, टीकू मुस्कान। दतरंगी से है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको

सागर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। एसपी बाल सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में था जावेद अख्तर का गीत, आरडी बर्मन का संगीत, और जिन्होंने हमें खत भेजे हैं ईमेल के माध्यम से वो ये हैं, कतियापारा जना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष रवि, शनि रेयांश कान्हा, आदित्य देवांगन, मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू हैं, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना, आदेश कुमार काले, वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, किरण लाविया, आरव खुराना, एसपी पप्पी, ये हैं सहारनपुर से हैं आशु मोची, गुनौर से हैं नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, विनोद मंडलकर, वीना मंडलकर, विविधा मंडलकर रायपुर से हमें ईमेल करते हैं, और मोताला महाराष्ट्र से ईमेल हमें मिला है विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार सुरलकर का। तो आइए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसे हमने लिया है रॉकी फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, आर डी बर्मन का संगीत है, और रॉकी फिल्म के इस गीत के लिए जो मिली जुली फरमाइशें हैं वो ये हैं। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र सिंह, गुरप्रीत सिंह, लवलीत प्रीत कौर हैं, गंडई पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू और रौनक हैं, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश, संध्या, कीर्ति, दिकेश बाकू, पूर्वेश साहू और डॉली हमें रसेड़ा कलतरा से भेजते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौकरी, बागबहरा भदरसी से हैं पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन, पांडर कड़वा से हैं अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे हैं, उदयपुर सरगुजा का ये ईमेल है, जीवन धन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमसाय, कलेश्वरी, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा का है, बाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, दिल्ली से हैं लालबाबू दीवाना, उमर राज और दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव, देवशंकर जमादार, और निर्मला, दीपक, प्रतिमा, धनराज, दुर्गेश मरकाम हमें भूत कछार लोरमी से भेजते हैं, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ईमेल, उदयभान पाल, जयसिंह, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल का है, अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद, गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता हैं, सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव हमें ये पैठन से भेजते हैं, पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा प्रांजल चंदन, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत और कमल, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार नरगिस खातून, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, सीमा, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, रितिका, बलवीर हमें दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भेजते हैं, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग हैं, और पुरानी भिलाई चरोदा तीन से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जीशान अहमद सिद्दीकी, शहनवास अहमद सिद्दीकी, रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द राहुल हमें अम्बाला हरियाणा से ये भेजते हैं, दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरा, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, आप सबकी पसंद पर रॉकी फिल्म का एक गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने आप सुन रहे हैं।

गुलशन बावरा का लिखा हुआ गीत, आर डी बर्मन का संगीत, और जिन्होंने हमें फरमाइशें भेजी हैं वो ये हैं, पजौना जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौरिया, आदर्श सार्थक अलौकिक हैं, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण हैं, और जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक हैं, धुराबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देवी नजीन, युवराज साहू हैं, और ये हैं बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, भिलाई से हैं अशोक, श्याम कुमार, प्रमीला, आसमा श्याम कुमार हैं, ये हैं गिडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जय, ऋषभ, ऋचा देवांगन हैं, कुमार हेट सहारनपुर से हैं सैयद मसरूम, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम हैं, और लूत्रा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श आतिका हैं, रिंगनी से है देव दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद, चंद्रकांता, और ये हैं लूत्रा खमरिया से आपके साथ हैं, और साथ ही हैं तिव्रता डबरी पारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह सहोदरी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी देवी है, दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, विनय, विनय शंकर पांडे हैं। आइए आप सबकी पसंद पर ये गीत आप तक पहुँचा रहे हैं।

कार्यक्रम के इस मोड़ पर इस गीत को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। कार्यक्रम के अगले मोड़ पर हम अलग अलग गीतों के साथ पेश होते ही रहेंगे, तब इस गीत को कभी और पूरा सुनेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने से अनुमति दीजिए। कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं, आइए चलते हैं ग्राम सभा में।

बहा के सकेल दारे हवे औ कतक किसान भाई मन जेमन पानी के अगोरा करत रहिन हवे ओ मन के बूता काम ह अभी मस्त भद्रा है। बात करबो संगवारी हो खरीफ सीजन के धान पान के तैयारी के तो अभी हमार कतक किसान भाई मन रोपा लगावत हवे कनो लहरा बोवत हवे कनो खुरा बो करत हवे ए बेरा सबसे ज्यादा हमला चेत करके आवश्यकता हवे कि अपन जो बीजा भात है ओला विशेष करके अच्छा किस्म के चुन के हम ला खेती के तैयारी करना हवे काबर की चार महीना के अगोरा हम सबो किसान भाई मल रहते और ए बेरा अगर चुक गए तो अपन जानते हवा कि यह किसान के नुकसान हुआ है ये पूरा राष्ट्र के नुकसान होते तो कहीं ना कहीं हमला जो अपन खेती के साथ निबुझते काम है ओला चेत लगा के ध्यान लगा के हमला करना चाहिए। आज भारत सरकार का तिले घलो कई प्रकार के संदेश घलो दे जाते हैं जिनमें कहा हवा कि जितके ज़्यादा हुए हमारे जो पानी के संरक्षण ला ज्यादा ज्यादा हमन करी जिससे कि बरसात में जो पानी गिरा था हवा ओला हमन संचयन कैसे करी कौन प्रकार से करी ताकि अवैया बेरा में हमन जो अपन लोग लेकर है वो उमल हमन बता सकी कि देखा हम अपन बर पानी ला बचा के रखे हवन। बरसात में जो पानी गिरा थे संगवारी हो ओला सबसे ज़्यादा हमारे जो छोटा गड्ढा बनाया जाता रही हवा अभी हर ग्राम पंचायत में उमा विशेष करके अगर हम बनावा थन तो कर से भी हम पानी के बचत कर सकत हन। जितका भी सरकारी संस्थान हवाए वहाँ हमला छोटा गड्ढा के हमला निर्माण कराना चाहिए ताकि जितके ज़्यादा होए हम पानी के बचत कर सके। अभी कुछ दिन पहले हर गांव में कार्यक्रम चलाते रही हवा मोर गांव मोर पानी के अभियान के तहत आज ओकर सार्थक रूप हमला देखे मिलते जैसे गाँव में नरवा हवाए डबरा हवाए वहाँ मनरेगा के माध्यम से जीराम के माध्यम से वहाँ अबड़कन काम बूता चलिन हवे और आज वो जो गड्ढा रिन हवे जो तालाब है पोखर है नरवा है चेक डैम के माध्यम से वहाँ अबड़े ज़्यादा पानी के ठहराव करेन हवे किसान भाई मन और वही पानी के उपयोग आज कहीं ना कहीं हम अपन जो खेती के सैनिक बूता काम में करत हन। तो देखिए संगवारी हो तो वास्तविक में जे प्रकार से हमन ये मुहिम अगर लगातार चला जाबू तो अभी जितका भी पानी गिरही ओला हम अच्छे से संरक्षित कर सकत हन और जो भूइया के नमी क्षमता ला घलो बढ़ा सकत हन ताकि हमारे जो अवैया पीढ़ी रहा है उमन हमन बता सकत हन कि देखा हम आप मन पर पानी के कतका कन खजाना ला बचा के रखे हवन। काबर कि हमन जब नान्हे नान्हे रहें तब हमन कुआं बोरिंग नरवा तालाब में बांधा में पानी ला देखत रहें जैसे हमन बाढ़े आवन तो देखत हन एक लीटर पानी ला हमन कमा देखत हन बाटल में और कतका कन बेचाते 20 रुपया में तो सोचा अगर हमन अभी के बेरा पानी ला जतन के नहीं रखबो सकेल के नहीं रखबो बचाबो नहीं तो जो हमार लोग लिखा मना ही कोमल फिर हमन का देबो। तो संगवारी हो बेरा हवा अभी मस्त बरसात के सीजन चला था पानी गिरा था हवा जितके ज़्यादा होए अपन घर द्वारी में हमन सोखटा गड्ढा बना के पानी के निर्माण कर सकी पानी ला हमन बचा सकी जितके ज़्यादा हमन पानी बचाव संगवारी उतके हमार जो पर्यावरण हवा वो सुघर रही अच्छा रही। खबर के पाछू महीना अपन जानते हवा कि अभी हमन कैसे तापमान ले गुजरे हमन ऐसे लगात रहा है कि इच करा आगे ही जरा था को एक बित्ता हमारे रंगे नहीं सकत रहते कन हमला भूम रहा तिपत रहे गोड़ बात तो अपन का अबड़कन करबो आवाज सुनत छोट बुटी संदेश आला।

संगवारी हो, राम राम, जय जोहर। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंची भाई रुपेश कुमार कंवर। यही दिन के गोरा हम सबो किसान भाई मल रहते कि कब पानी कंज है गिरे तो कब हमन अपन खेती सने की बुद्धा कामला शुरुआत करी। जौन किसान भाई मन करा सिंचाई के साधन है, पल्लो के साधन हवा, वो मन महीना दिन पहली, 15 दिन पहली खेती सने की बुद्धा कामला

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: संगवारी उस संदेशा के पहली गोड़ बात करते रहें कि हमन जितके ज्यादा हुए पानी की हमला बचत करना चाहिए। जितके ज्यादा पानी बचत करबो उतके ज्यादा हमारे जो फसल हवा है वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दी ही हरियाही। और हरियाही के बात कर बात करी संगवारी हो तो अभी बरसात की बेरा हवा है, और बरसात की बेरा हम सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़

आनी बनी के भाजी पाला पाए जाते संगवारी होकर मतलब ये नहीं कि जोन भाजी मिला थे ओला हमें सीधा रान कूट के खाई। बरसात के बेरा में भाजी पाला तो अबड़ मिलते और ऐसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में 36 किस्म ले ऊपर भाजी पाए जाते जब अबड़े ज़्यादा विटामिन घलो मिलते हमारा। बरसात के बेरा में ये बात की हमारा चेत करे की आवश्यकता होते कि हमारा जोन भी भाजी पाला रांधा थन पसावा थन ओमा तरी कति देखी कोनो प्रकार के कीड़ा मकोड़ा थोड़े चटके हवा है काबर कि आजकल हरियर हरियर भाजी पाला दिखा था कीड़ा मन घलो नहीं दिखाई उसे तो जोन भी भाजी पाला रांधा था हमन पसावा था हमन ओला विशेष करके सावधानी पूर्वक हमला चेत करके रांधना पसाना चाहिए ताकि कोनो प्रकार की घर में अनहोनी घटना झन होए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 36 भाजी ले ज़्यादा प्रकार के भाजी पाए जाते और कहीं ना कहीं हर भाजी है अपन एक अलग विशेष अपन मिठास ला हमन ला बताते। जैसे कि अमारी पान की बात करी संगवारी हो तो अपन जानते हवा अबड़ मिठास रहते अमारी पान में। फिर मुनगा के बात करी तो अपन जानते हवा कि मुनगल अगर अच्छे से फोरन में और सूखा मिर्चा में और लहसुन डाल के अगर बघारा थन तो ओकर मिठास ला झन पूछा और थोड़ा कन मिर्चा की चटनी हो गए सूखा मिर्चा के भूंज के खावा थन तो ओकर मिठास ज़्यादा रहते हैं। एक बात और कीबो कि आजकल भाजी हर घर में बनाते हैं साग के रूप में लेकिन देखबो तो बस एक दो जन खाते बाकी मन नहीं खाए। आज भाजी ला विशेष करके बात करबो तो हमारे जो दीदी बहनी है हमारे जो महतारी है वो मतलब ज़्यादा खाना चाहिए काबर की उनकर माँ एनीमिनिया की जो कमी रहते वो ज़्यादा रहते संगवारी हो एमा कहीं ना कहीं उनका जो खून के कमी रहते अगर लगातार हम भाजी पाला खावा थन तो हमारे जो शरीर है खास करके हमारे महतारी है हमारे घर में नोनी हवा हमारे महतारी है इनकर बार सब ज़्यादा आवश्यकता होते जितके ज़्यादा भाजी खावा थन तो उतके ज़्यादा हमारे जो सेहत है बहुत ज़्यादा अच्छा रही और कई घर में देखे हैं संगवारी हो कि चेंज भाजी रांधे हैं तो मैं नहीं खाऊँ चेंज भाजी मरवाने साग रांध एक प्रकार के आज के लड़का मन बहाना करते हैं तो हमन खास करके हमारे जो नुनी हवाएँ हमारे जो बहनी हवाएँ हमारे जो दीदी हवाए मतलब यही कहो कि खास करके जो हमारे दीदी बहनी मन पर भाजी ले तो रोजाना खाना चाहिए एक बार नहीं तीन बार ज़्यादा से ज़्यादा खबर कि मुनगा के जो विटामिन है मतलब अपन जानते हवा फिर सुनसुनिया भाजी के स्वाद ला अपन जाना था बात करबो लाल भाजी के तो ऐसे बनेचकन भाजी हवा संगवारी हो जेमा सभी प्रकार के विटामिन अब्बड़कन पाए जाते हैं और जब ओला हम सब्जी के रूप में बनावा था तो ये बात के अवचेत करी हमला कि ओमा हमला विशेष करके केवल उसन के या पानी डुबा के थोड़ा कर निकाली तब फिर नून मिर्चा डाली तब खा दी वैसे नहीं वैसे करब तो उल्टा हमारे सेहत ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान होंगे। हमन अगर कोनो प्रकार के भाजी ला सब्जी के रूप में बनावा था तो विशेष करके पहले धो लेवा धोए के बाद ओला अच्छे से निमार लेवा कोनो कांकर वाकर थोड़ी नहीं कीड़ा मकोड़ा थोड़ी नहीं ओकर बाद हमला अच्छे से सुखा के थोड़ा कन तेल में ओला तलना चाहिए ताकि सब्बे भाजी में अच्छे से तेल रहे। जब तक तेल में नहीं भेंदी संगवारी हो भाजी पाला तब तक हमार सेहत में नहीं जाए और अच्छे से तेल में तले के बाद ओला अगर बघारा थन तो कहीं न कहीं वो भाजी हमार सेहत में लगी हमार शरीर में लगी और एक हमार जो बहनी मन की जो कमी रहती खून की कमी तो वह कहीं ना कहीं कर से दूर होने की संभावना घलो रहती। तो खास करके बात करब हमार जो गर्भावस्था में जो हमार बहनी में रहते दीदी में रहते वो मतलब तो विशेष करके खून बढ़ाए बर अभी के बेरा में ज़्यादा से ज़्यादा हम भाजी खाना चाहिए ताकि उनका जो सेहत है ज़्यादा रहे। जिससे कि किशोरावस्था हवा है हमारे जो बहनी मन के वो मतलब खाना चाहिए ताकि उनका जो शरीर है बहुत अच्छा रहे। गोड़ बात और करब संगवारी हो बात करी अभी के बेरा में स्वरोजगार के तो अपन जानते हवा कि बरसात के बेरा में पुटू बहुत ज़्यादा पाए जाते अब पुटू पर हमार सरकार कति ले प्रशिक्षण घलो देते ताकि हम पुटू के माध्यम से दोहरा आमदनी कमा सकत। बरसात के बेरा में पैरा पुटू ज़्यादा से ज़्यादा हमार किसान बहन उत्पादन करते और आज भाव भी ज़्यादा से ज़्यादा हवा देखा गोड़ बात करत करत बेरा होत हवा किसानवाड़ी में जाके तो चला चल चलत हन किसानवाड़ी में।

0: राम, अभी जैसे ग्राम सभा में अपन करा गोड़ बात कर रहे हैं कि अगर हमला रोजगार स्थापित करना है तो अपन घर में अगर छोटे से कुरिया हवाई 10x10 के, तो हम अच्छे से हमन अगर मसरू उत्पादन करा थन तो छोटे से जगह में हमन ज़्यादा से ज़्यादा हमन पैदावार पा सकते थन। जैसे हमारे बिलासपुर की बात करी, बृहस्पति बाजार हवाई, शनिचरी बाजार है, डबरा बाजार हवाई, यहाँ देखबो तो अभी पुटू लाए रहे दूर दराज के हमारे किसान भाई मन, गाँव के हमारे संगवारी मन, और ऐसी हम चली नेहरू चौक कती, तो यहाँ वहाँ तक हमारे किसान भाई मन रोड के तीरों बैठे थे छाता धर के, एक घंटे नहीं लगा पूरा पुटू बेचा जाते, कतको भाव रहे। तो वही पुता कामला अगर हम अपन घर में अगर हम करी संगवारी हो पुटू के अच्छा उत्पादन करके, तो अच्छे से हमारा रोजगार स्थापित मिल सकते। मेहनत थोड़कन ज़्यादा लगते लेकिन आमदनी ओकर और ज़्यादा मिली, और एक बार आज हमला सरकार है अनुदान घलो देवत है। उद्यान विभाग कथी लगा हम जुड़ा थन तो मछली उत्पादन के तहत उकर कथी ले अनुदान घलो मिलते, और जौन किसान भाई मान इच्छुक हवा कि हाँ नहीं हमने तरीके पुटू उत्पादन करना है, पुटू उत्पादन करे पर हमला सीखना पड़ना है, तो आपके जिला के जौन RCT हवा वहाँ जाके वहाँ के जौन अधिकारी है उनकर कर संपर्क कर सका था, संगे संग कृषि विज्ञान केंद्र हवा वहाँ के जो अधिकारी हुनकर कर संपर्क कर सका था कि हमला पोट उत्पादन करना है साहब, हमला सीखना पड़ना है, तो का करे लगी का बारे में बताओगे। तो स्थायी रूप से अगर हम देखें संगवारी तो अबड़ जन हमारे से किसान हवा स्व सहायता समूह की दीदी बहनी मन हवा जो अभी के बेरा में पोट उत्पादन करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमाते, और सीजन भी अभी चला था हवा, और जितना भी मन खरीफ सीजन के पहली जो पैरा बचा के रखे रहें वो पैरा ला भी हमन अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, और यही के वो संगवारी हो कि अगर हमन धान पन बोआ थन तो धान पन बोए के बाद हम का करते हैं फसल के जो अवशेष बचते तो जलाथन, तो जलावा नहीं संगवारी हो ओला हमन अच्छा से पैरा के रूप में मशरूम के रूप में वो उत्पादन कर सकते हैं और दोहरा आमदनी कमा सकते हैं। बड़ा थन कार्यक्रम की आगू कथी आवाजे बृहस्पत बृहस्पत के अपला गोरा रथे अपन की मनपसंद कार्यक्रम फोनी कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी। आज के बढ़िया कन विषय हवा रसायन युक्त खेती, एकर ज़्यादा आवश्यकता है, काबर के अपन जानते हवा कि अभी जितके ज़्यादा अगर हम रासायनिक खेती करत हन तो माटी की उपजाऊ क्षमता दिनों दिन घटत जात हवा, एक खातिर आए दिन हमला अपन रेडियो के माध्यम से ही कहतन कि जितके ज़्यादा हुए प्राकृतिक खेती करी, जैविक खेती करी। और आज हमारे बीच में पहुना विशेषज्ञ हवा डॉक्टर राजेश कुमार साहू, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कोरबाल। कार्यक्रम का संचालन करते हमारे संगवारी हरीश माड़वा, तावा सुनत हैं संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी।
1: हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप सबो संगवारी मन के स्वागत है। संगी हो आज विषय लेके आए हैं रसायन मुक्त खेती विषय में, अब पहुना हमारे डॉक्टर राजेश कुमार साहू, आप हो अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा के, तो बैसाखू के जय जोहार है, और कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हवा सिल्वेरियस लकड़ा मन के। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में अपन के स्वागत है, जय जोहार।
2: भैया जय जोहार। आज के समय में जो हमारी कृषि है वो बहुत ही गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: अच्छा।
2: जिसमें सबसे पहले मिट्टी का क्षरण है, कई जगह पे मिट्टी की उत्पादकता कम होती चली जा रही है, जल संकट हो रहा है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर भूजल है वो लगातार नीचे चले जा रहा है, हर साल वो उसमें हमको ज्यादा गहरा बोर करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसके अलावा जो आज के समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे अभी देख रहे हैं अनियमित वर्षा हो रही है, सूखा, बाढ़, तापमान वृद्धि हो रही है, ये सब बढ़ती लागत जो खेती है उसके लिए किसान भाइयों के लिए जो लागत है वो बढ़ते जा रही है, और किसानों की आय उसी अनुपात पे कम होते जा रही है। छोटे सीमांत किसान जो है हमारे छोटे भाई किसान भाई लोग, उन लोग को काफी आर्थिक उसका सामना करना पड़ रहा है।
1: सही बात है।
2: तो इन समस्याओं ने वैकल्पिक जो कृषि प्रणाली है उसकी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया, तो इससे जो निकल के आए रसायन मुक्त खेती, जैसे प्राचीन काल पे पूरा सिस्टम जो हमारा था वो बगैर केमिकल के ही होता था।
1: डॉक्टर साहब किसान संगवारी मन के एक ठीक फोन आ गए, एक बार फिर गोठ बात कर बो। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में आप मन के स्वागत है। भैया जय जोहार और राम राम।
3: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: हाँ बतावा।
3: फोन लगाए हम भैया कि रसायन मुक्त खेती हमन कैसा ढंग ले करी, आवश्यकता दिनों दिन काबर बढ़त जावत है।
1: वही बात लग गोठियात रहीन और आप मन घलो सुनत रहा, आप मन के समस्या के समाधान घलो करत हमें डॉक्टर साहब।
2: जी जी बिल्कुल।
3: और रोपा के तैयारी भी हो गए भैया, वो काम चलत हवा रोपा लगा के।
2: आज ऐसा लगता है हमको कि यूरिया नहीं मिलेगा हमको तो हमारा धान ही नहीं होगा ऐसा।
4: हाँ।
2: जो हमारे यहाँ भारत में जो पहला जो केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसका प्लांट 1909 में डाला था तमिलनाडु।

0: अच्छा
1: मतलब आज से 117 साल पहले, उसके पहले तक केमिकल कहीं उपयोग नहीं होता था, पूरा प्राकृतिक खेती ही थी। और आज की परिस्थितियों को देख के लग रहा है कि वापस वहीं जाने की जरूरत है, और जो पुरानी पद्धतियां थी उन्हीं को ही वापस फिर से हमको अपनाने की आवश्यकता है।
0: तो नारायण प्रसाद वर्मा जी एक अत्रहेन के आप मन रसायन मुक्त खेती करा और कैसे कैसे खेती करी है डॉक्टर साहब मन बतावा थी।
1: देखिए जो रसायन मुक्त खेती है ना, उसका जो सबसे ये कि प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित होता है ये। इसका जो प्रमुख विचार है कि मिट्टी जीवित है, उसमें पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका पूरा अपना एक लाइफ साइकिल उसमें रहता है, मिट्टी एक जीवित उसमें है, प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित कर सकती है कि जैसा हो सकता हो कि उस हिसाब से। और जैव विविधता जो कृषि की शक्ति है, जैसे पुराने समय में देखो कि चावल भी लगाते थे, साथ में तिल भी लगाते थे, कुछ उसमें दाल भी लगाते थे, कुछ मसाले भी लगाते थे, तो इसमें सभी चीजें उसमें आ जाती थी और बहुत सारी लोकल वैरायटीज रहती थी इसमें जो है। लेकिन आज के समय में आप जहां भी देखोगे सिर्फ धान ही धान दिखेगा, उसमें भी कुछ ही वैरायटीज दिखेगी, तो इससे क्या होता है जैव विविधता जो है वो कम हो जाती है। और पशुपालन और कृषि जो है वो परस्पर पूरक है, दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। पहले क्या होता था, हर किसान के पास में बैल जोड़ी गाय रहती ही थी, जिससे कि वो खेत में उनसे काम लेता था। आज मशीन का सब काम हो गया है, ट्रैक्टर वगैरह, तो किसान भाइयों के पास में जानवर कम होते चले जा रहे हैं, और जानवर कम हो रहे हैं तो गोबर कम हो रहा है, गोबर कम हो रहा है तो जो प्राकृतिक खाद उन तक पहुंचती थी वो एकदम कम हो गई है, इसलिए पूरी तरह से रसायनों पर होने लगा है। और इसके अलावा जो स्थानीय संसाधन है, जो आसपास ही खेत में ही हमारे मिल सकते हैं, उनका उपयोग करना सबसे सही रहता है, क्योंकि पूरा रिसाइकल होते जाता है वहीं से वहीं। और टिकाऊ कृषि ही भविष्य की कृषि है। अब जो रसायन मुक्त खेती है, उसका महत्व यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहले पर्यावरणीय महत्व, इसमें मिट्टी का संरक्षण होता है, जल का संरक्षण होता है, जैव विविधता का संरक्षण होता है, और कार्बन संचयन होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन जो मिट्टी में होता है उसका भी होता है। फिर आर्थिक महत्व है कि इसमें किसान भाइयों की लागत में कमी आती है, और स्थानीय संसाधनों को उपयोग किया जाता है कि जो खेत में या आसपास मिलता है, बाहर से कुछ खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे बाहरी जो निर्भरता है उस पर कमी आ जाती है किसी भी तरह से केमिकल, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां आजकल निकल रही हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और लोगों को लोकल स्तर पे रोजगार मिलता है।
0: डॉक्टर साहब किसान संगवारी मन के एक ठीक फोन आ गए, एक बात फिर गोठ बात कर बू। हेलो किसान वाणी। हाँ हेलो किसान वाणी, कार्यक्रम आप मन के स्वागत भैया। अच्छा मगर लोड
2: धमतरी।
0: अच्छा अच्छा धमतरी ली।
2: रसायन मुक्त खेती का होते बारे में जानकारी।
0: हाँ तो कार्यक्रम ला सुनत रहा और पूरा कार्यक्रम में रसायन मुक्त खेती के ऊपर चर्चा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन के जय जवाहर।
2: जी धन्यवाद
0: सर, बताओ।
1: हाँ तो क्या रासायनिक जो कृषि हमने की आजादी के बाद में धीरे धीरे, तो हरित क्रांति वगैरह उसके कारण हुई, जिससे कि उत्पादन वगैरह तो बढ़ा, हम आत्मनिर्भर हुए। आज के समय तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं खाद्यान्न। लेकिन इसके कारण कुछ समस्याएं भी होना चालू हुई गंभीर, पर्यावरण में सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि इसमें उपयोग के जो करते हैं हम केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक वगैरह, उसके कारण मिट्टी पानी हवा जैव विविधता और आखिरी में मानव के स्वास्थ्य, हमारे जो स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित करने
0: है।
1: तो इसके ऊपर फिर मंथन किया गया और फिर इसमें रसायन मुक्त खेती है इसके लिए क्या किया जा सकता है।
0: हाँ।
1: तो इसमें ये रहता है कि जो इसके जो नुकसान है उनको हम दूर करें।
0: अच्छा
1: केमिकल वाली हम जब खेती करते हैं तो उसमें जो है उसमें मिट्टी की जो जैविक गुणवत्ता होती है उसमें गिरावट आती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है सिर्फ इसमें मिनरल्स भी बस नहीं होते बल्कि कि जीवित एक इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं।
0: सही बात है।
1: और रासायनिक उर्वरक जब हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो लाभकारी जीवाणु जो है वो कम हो जाते हैं।
0: नेगेटिव फोन आ गए फिर गोठिया। हेलो किसान वाणी, कार्यक्रम में स्वागत है आप मन के।
3: हाँ भैया नमस्कार, मैं धनेन्द्र डिक्सेना बोलत हूँ।
0: धनेन्द्र डिक्सेना जी,
3: विकासखंड पाली जिला कोरबा।
0: जिला कोरबा के पहुना घलौ आई डॉक्टर राजेश कुमार साहू जी।
3: हाँ भैया।
0: हाँ तो इनकर से गोड बात करा, अपन सवाल घलौ रख सका था।
3: ये सवाल रही थे कि हमन रसायन मुक्त खेती करत हन, तो शुरू साल से हमल रसायन मुक्त करबो और जैविक खेती अपनावत हन, तो हमल लाभ में कमी थोड़े आई साहब, ये सवाल है।
1: देखिए लाभ में ऐसा है कि उसमें उत्पादन शुरुआत में तो थोड़ा सा कम होता है बगैर केमिकल के उपयोग करते हैं, वो फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है आगे चल के।
3: अच्छा।
1: लेकिन इसके साथ में ये भी है कि जो जैविक

0: जैविक उत्पाद हैं उनका जो आपको है मार्केट में रेट ज्यादा मिलता है। अच्छा। उसका जो रेट है 50% से 100% तक आपको ज्यादा मिलेगा जैविक। आज भी आप यदि कहीं धान लेके जाएंगे, अपना चावल लेके जाएंगे कि ये बगैर फर्टिलाइजर का है, तो आदमी उसको हाथों हाथ लेता है और ज्यादा रेट में लेता है।
1: सही बात है। हाँ।
0: तो जो थोड़ा बहुत उत्पादन में कमी होती है वो अपनी जो है उसके ज्यादा रेट में हमको वो बराबर हो जाता है, बल्कि प्लस ही में जाता है वो। इसके अलावा हमारी जो लागत जो है उसमें कमी आती है, हमको तो खातू है, दवाई है, सब बाहर से खरीदना पड़ता है पैसा लगा के। और जब रसायन मुक्त ही हम कर रहे हैं, जब रसायन बाहर से खरीद ही नहीं रहे तो हमको कुछ ज्यादा उसमें खर्चा करना ही नहीं है। और इसमें जो भी चीजें रहती है हमारे जो खेत में आसपास जो होता है उनका ही हम उपयोग करते हैं, है ना। तो इसके कारण हमारा जो है लागत भी कम होती है, उत्पादन आगे चल करके स्थिर हो जाता है। जैसे अभी खाद हम लगातार उपयोग करते जाते हैं तो उसका धीरे धीरे जो है वो हमारा उत्पादन कम होने लगता है, आगे चल के उसमें उपजाऊपना उसमें बढ़ेगा और हमारा जो खाद्यान्न है जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो भी अच्छा होगा और उसका उपयोग हम करेंगे तो हमारी तबीयत भी सब ठीक रहेगी, क्योंकि केमिकल उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर में भी केमिकल जाएगा, है ना। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा सुनिए, इसमें आगे हम और चर्चा करेंगे कैसे
2: सर,
0: कैसे करना
2: ना,
0: उसको।
2: एक जी, और
0: जी,
2: सवाल है।
0: जी जी बिल्कुल बताइए।
2: सवाल का इसमें क्या रोल है?
0: बिल्कुल है, नील हरित सवाल जो है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं उसको, एक प्रकार की विशेष प्रकार की काई ही होती है
2: जी,
0: है ना। तो उसको जो है एक एकड़ में हमको 5 किलो करीब उपयोग करना रहता है और वो जो एक प्रकार की काई है उसको हम जब डालते हैं तो वो धूप मिलता है, पानी मिलती, नमी, तो वो तेजी से फैलती है और फिर जब वो सड़ती है तो उससे जो है हमको नाइट्रोजन जो है वो जमीन में मिट्टी मिलता है, हमारे पौधों को मिलता है, तो यूरिया का उपयोग हमको कम करना पड़ता है उसके नाम कारण। इसके अलावा फायदा ये है कि चूंकि एक प्रकार की काई है इसको हम लगातार उपयोग करेंगे 3-4 साल तक, तो ये फिर अपने स्वतः ही खेत में इसके अवशेष रह जाते हैं और ये आगे चल के जो है अपने से ही उगने लगती है और इसमें ज्यादा इसका रेट पड़ता नहीं है। इसके अलावा क्या है, हम जब यूरिया डालते हैं तो उससे सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन जब हम इसका बीजीए का नील हरित काई का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं मिलता, इसके अलावा और भी बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, है ना। जैसे कोई चीज की कमी होती है तो डॉक्टर हमको गोली देता है तो गोली से तो हमको सिर्फ वही मिलता है, लेकिन हम खाना खाते हैं सब्जी फल चावल तो उसमें हमको सारी चीजें मिलती हैं उसके साथ में, पूरा हमको उसका पोषण मिलता है। वैसे ही जो भी रसायन मुक्त जो जैविक है वो पूरा पोषण प्रोवाइड करती है।
2: 15-20 क्विंटल बन गए।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, सब तरफ मांग चल रही है, कृषि विभाग से हाथों हाथ आपसे ले लेगा।
1: धन्यवाद
2: सर, नमस्कार।
1: जैसे लाइट ट्रिप प्रकाश प्रपंच के एला किसान संगवारी मन बिसा सकत है, इनके बना सकत है,
0: बिसा भी सकत है, लेकिन जो सादा है अपन बना सकत है, एक थे बस वो लाइट के सोर्स देना है, है ना, कोई भी बल्ब वगैरह लगा दिए, है ना, और उसके नीचे में एक बर्तन में पानी रख दिए, उसको अपन थोड़ा सा पेट्रोल या मिट्टी तेल जो भी मिले वो डाल दिए, तो उसमें क्या होता है कीड़े सब आते हैं लाइट के चारों तरफ घूमते हैं और नीचे गिर के उसमें मर जाते हैं। तो सिंपल टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई वो नहीं है।
1: अच्छा अच्छा,
0: है ना। और उसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो अपने पास के जो भी उनके कृषि विज्ञान केंद्र होगा वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं और एकदम इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, एकदम आराम से बना सकते हैं किसान भाई। और इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल वगैरह नहीं उपयोग होता है और इसमें हमारा डबल वो होता है, एक तो कीड़े की जो है वो भी कंट्रोल होते हैं, दूसरा यदि कोई कीड़े के आने की आशंका है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही तो उस समय से पहले उनको पता चल जाता है।
1: अच्छा, तो आओ का कतरा है ला पता है ना।
0: हाँ, तो उसके लिए जो है रसायन मुक्त खेती का फिर वो हमारे उसमें आया, तो इसमें रसायन मुक्त खेती के जो लाभ हैं, जैसे पर्यावरण का लाभ होता है, मिट्टी का संरक्षण होता है, जैव का संरक्षण होता है और जैव विविधता होती है, आर्थिक में लागत में कमी होती है, निर्भरता कम होती है, सामाजिक लाभ होता है इसमें, तो ये इसमें फायदे ही फायदे हैं। और इसमें जो रसायन मुक्त खेती, इसके हम मुख्यतः 3 तरीके से देख सकते हैं, एक तो जैविक खाद हम देते हैं और दूसरे जो है कीड़े बीमारी का जो होता है उसमें। तो पहले हम जैविक खाद की बात करते हैं, तो क्या होता था कि पहले जमाने में सब, जैसे हमने पहले चर्चा की कि जो पशुपालन है और कृषि है वो साथ ही साथ चलता था, लेकिन अब समय के साथ में धीरे धीरे मशीनें बढ़ने लगी तो जानवर कम होने लगे और उसका गोबर का भी उत्पादन कम होने लगा, तो इसलिए हो रहा था। तो इसमें जो जैविक खाद है उसमें बहुत सारी है, जिसमें से हम कुछ के ऊपर अभी बात करें, जैसे गोबर खाद ही है, फार्म यार्ड मैन्योर, ये सबसे पारंपरिक और महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें गाय भैंस बकरी आदि के गोबर और मूत्र से इसे बनाया जाता है। हर गांव में

0: भी जो
1: हाँ
0: घुरुवा
1: बनते हैं।
0: बोलते हैं वो
1: हाँ
0: बनाते हैं,
1: हाँ हाँ
0: है ना। इसमें पशुओं के मल मूत्र, पुआल, भूसे, इसको होता है सड़ते गलते, और महीनों के बाद में इसमें वो खाद तैयार हो जाती है। इसका लाभ ये होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जैविक कार्बन बढ़ता है, वो जमीन में जो पानी है तो उसको रोकने की क्षमता बढ़ती है धारण की। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो रहते हैं उनकी भी संख्या बढ़ती है।
1: हाँ
0: लेकिन क्या होता है, ये ओपन में होता है तो इसमें जो है उसका बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं उसमें से कुछ नीचे चले जाते हैं, कुछ जो है हवा में उड़ जाते हैं। तो इसके लिए कंपोस्ट खाद का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि जो
1: अच्छा।
0: जैविक कचरा है उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, विघटन होता है, उसको कंट्रोल उसमें हम करते हैं। जिसमें किसान भाई लोग सुने होंगे नाडेप कंपोस्ट सबसे महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: है ना। तो इसमें जो है जो भी फसल के अवशेष हैं, पत्तियां हैं, रसोई से जो निकल रहा है, गोबर है, घास है, ये सबका उपयोग किया जाता
1: अच्छा।
0: है ना। और इससे लाभ भी होता है, जो भी कचरा निकल रहा है उसका सबका पुनर्चक्रण होता है, मिट्टी की संरचना बढ़ती है, पोषक तत्व मिलते हैं, है ना। इसके बाद में फिर आता है वर्मी कंपोस्ट, है ना, जो हमारा केचुआ होता है, गेंगरवा, ये शुरू से इनको प्रकृति का हल बोला जाता है। क्योंकि ये जो रहते हैं, इनका पूरा शरीर जो रहता है ट्यूब जैसा रहता है, एक तरफ से खाते जाते हैं, दूसरी तरफ से निकालते जाते
1: अच्छा
0: हैं,
1: अच्छा हाँ
0: और ये मिट्टी में पूरा घूमते रहते हैं और पूरा अंदर ही अंदर सुरंग जैसा पूरा बना देते हैं ये, जिससे कि वहाँ पे हवा और पानी इनका भी पूरा अच्छे से वहाँ पे सर्कुलेशन होता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो केचुओं के द्वारा तैयार की जाती है, और ये अभी काफी कॉमन होगी, किसान भाई लोग को पता भी है इसके बारे में। इसमें भी वही टांका बनाया जाता है। इसमें दो तीन चीजें जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत जगह देखा है, इसमें जो लापरवाही थोड़ा सा की जाती है कि केचुए जो उनको नमी चाहिए रहता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ
0: तो वहां नमी मेंटेन करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पानी का वहां पे जमाव नहीं होना चाहिए। तो जो टांका रहता है उसको थोड़ा सा स्लोप बनाना चाहिए, ज्यादा नहीं, हल्का सा, जिससे कि पानी वहां रुके नहीं, निकल जाए, और दूसरी तरफ से एक छेद बना के वहां से पानी की निकासी की व्यवस्था रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो पानी निकलता है वो भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, उसको वर्मी वॉश बोलते हैं। 1 लीटर जो है उसका वो 50 से 100 रुपए में आजकल बिकता है,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: लीटर मात्र, है ना। और उसको खेत में डालने के पहले 1 लीटर को 10 लीटर में घोल में मिला के फिर उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा वो रखें कि जो उसका स्लोप है उसको मेंटेन करें, और उससे जो निकलेगा पानी उसका उपयोग भी किसान भाई अपने खेतों में करें।
1: अच्छा।
0: इसके बाद फिर अगला जो आता है वो होता है हरी खाद, ग्रीन मैन्योर जिसको बोलते हैं। हरी खाद जो होती है, जो कि समय से पहले उसको जहाँ पे हमको अगली फसल लगाना है उसके पहले इसको वहाँ पे लगाया जाता है, और जब इसकी बढ़वार हो जाती है अच्छी, तब फिर इसको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। जैसे एमबी प्लाव वगैरह जो मिट्टी पलटने वाले हल होते हैं, उनके द्वारा इनको मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि वो सड़ करके मिट्टी में उसको पोषण प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद फिर अगला आता है जीवामृत, ये प्राकृतिक खेती के उसमें आते हैं। तो जीवामृत जो है ये सूक्ष्म जीव का संवर्धक घोल होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको जो मिट्टी और हवा में रहते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करके मिट्टी के द्वारा पौधों तक पहुंचाते हैं।
1: जी।
0: इसमें गोबर लगता है,
1: अच्छा।
0: गोमूत्र लगता है, गुड़ लगता है, और दाल का आटा जो अपना बेसन होता है वो। इसके अलावा मिट्टी, मिट्टी जो है यदि पीपल के पेड़ के नीचे से यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपना खेत के किनारे की जो मिट्टी होती है वो उसका उपयोग करते हैं। इससे ये होता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि होती है, पोषक तत्व मिलते हैं, और मिट्टी की सक्रियता बढ़ती है।
1: अच्छा।
0: और इसी में एक अगला स्वरूप होता है घन जीवामृत। घन जीवामृत जो होता है ये जीवामृत का ठोस रूप होता है ना, सॉलिड उसमें रहता है सूखे में, और इसको हम खेत में सीधे उपयोग कर सकते हैं। जीवामृत जो होता है उसको हमको डाइल्यूट करना पड़ता है, जैसे कि वर्मी वॉश जो केचुआ खाद से निकलता है उसको भी 1 लीटर को 10 लीटर में
1: 10
0: घोलना
1: लीटर
0: पड़ता है,
1: हाँ हाँ
0: वैसे ही जीवामृत को भी करना पड़ता है। तो घन जीवामृत जो रहता है ये ठोस रूप में रहता है, और ये खेत में सीधा उपयोग किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान संगवारी मन के एक ठीक फोन आ गए, एक बात फिर गोठ बात करबू। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है।
2: योगेश जांगड़े बोला था, फिरवा बांधा बेमेतराले।
1: अच्छा तो योगेश भाई, आज के विषय अपन जानत हुआ, सवाल अपन रख सका था, है ना। हमारे बीच में पहुना बैठे हैं डॉक्टर राजेश कुमार साहू
2: हाँ
1: जी, अधिष्ठाता है अपन
2: हाँ
1: कृषि महाविद्यालय कटघोरा में।
2: हम तो यही जानना वो कहना चाहथन भैया, जिन गोबर खाद वगैरह होते खेत में तो डालथन अपन,
1: हाँ।
2: लेकिन अधिक पैदावार के कारण हमला रासायनिक दवाई डाले से पड़ जाते, तो हम कैसे ढंग ले मतलब मैनेज करन।
1: अच्छा अभी छे गुठियात रहन आप मन के फोन करे के पहली आनी बानी के जेन हवे ना वर्मी कंपोस्ट है।

0: हरियर खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य, जैव उर्वरक बाचे रही से, तो जैव उर्वरक के बारे में आप मतलब बता देती डॉक्टर साहब मन।
1: अभी हम बात कर रहे हैं जैव उर्वरक, जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। क्या होता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके ऊपर ही आधारित रहता है। जैसे अलग अलग जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, जैसे कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले राइजोबियम रहते हैं, वो हवा में भी नाइट्रोजन हमारा रहता है, जो हम यूरिया से देते हैं वो हवा में प्रचुर मात्रा में रहता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसको पौधा जो है वो डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो जो ये राइजोबियम होते हैं वो उसको हवा से फिक्स करते हैं और उसके द्वारा फिर वो अपना पौधों तक मिलता है ना। तो ये जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव के पैकेट में रहते हैं और बहुत सस्ते आते हैं, ये 10-20 रुपए के पैकेट आते हैं और इसको हम अपने उसमें खेत में उपयोग करेंगे तो ये हमको बहुत कम कीमत पे ये पोषक तत्व उपलब्ध करा देते हैं। इसमें जो प्रकार मुख्य होते हैं, जैसे राइजोबियम में भी चर्चा किए, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम होता है, माइक्रोराइजा होता है, और ये सब जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फॉस्फोरस उपलब्ध कराते हैं और मिट्टी की जो उत्पादकता होती है, उर्वरता होती है, उसको ये उसमें वृद्धि करते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, सार में बता दे हा, बेरा घलो कम है, तो जैसे कीट हो जाते, रोग हो जाते, तो जैविक रूप से कैसे नियंत्रण करी?
1: कीट नियंत्रण में बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। जैसे इसमें जो कीड़ों में भी कुछ वैसे रहते हैं जो दूसरे कीड़ों को खाते हैं, तो उनके प्राकृतिक शत्रु रहते हैं,
0: अच्छा,
1: उनका उपयोग किया जाता है। जैसे परभक्षी कीट होते हैं, है ना, परजीवी कीट होते हैं, इसके अलावा रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं कि ऐसे जो बैक्टीरिया फंगस वगैरह रहते हैं कि जो उन कीड़ों में बीमारी फैला देते हैं। जैसे लेडी बर्ड बीटल, उसका माहू के लिए उपयोग किया जाता है। ट्राइकोगर्मा जो है वो अंडे को, उनको जो रहता है उसका परजीवी होता है, वो अंडे के ऊपर अटैक करता है, उसको बाहर आने नहीं देता है। इसके अलावा जैसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो लाभकारी सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करते हैं, जैसे बेसिलस थोरेंसिस होता है, बीटी बोलते हैं, बेवेरिया बेसियाना होता है, ट्राइकोगर्मा होता है, ये कीड़ों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, जो हमको नुकसान करने वाले कीड़े रहते हैं उनको मार देते हैं।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा जो है कि वनस्पति आधारित कीटनाशक होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो नीम है। नीम का जो है रासायनिक मुक्त खेती में बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सबसे प्रमुख एक प्राकृतिक कीटनाशक होता है। इसका जो है नीम तेल में, नीम अर्क में, नीम खली के रूप में होता है। इसका लाभ ये होता है कि जो चूसक कीड़े होते हैं उनको कंट्रोल करता है और जो अंडा उत्पादन उसमें बाधा पो करता है और लंबे समय तक प्रोटेक्शन देता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और इससे जो है नीमास्त्र बनाया जाता है जो कि उसमें कीड़ों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है।
0: ब्रह्मास्त्र घलो बनाओ।
1: हाँ, ब्रह्मास्त्र भी है, नीमास्त्र भी है, ऐसे बहुत सारे इसमें लगातार काम होते जा रहे हैं और नई नई चीजें आती जा रही हैं। इसके अलावा और भी जो बायोलॉजिकल जो रहते हैं, जैसे धतूरा का अर्क है, करंज का तेल है, लहसुन अदरक का है, मिर्च लहसुन का स्प्रे है, ये सबका भी उपयोग किया जाता है कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसके अलावा यांत्रिक भी होते हैं, जैसे कि हाथ से कीड़े हटाना, ये छोटी जगह पे यदि है तो ये संभव है। इसके अलावा जैसे अभी हमने बात भी किया, जो प्रकाश प्रपंच, प्रकाश जाल या लाइट ट्रैप होता है उसका, इसके अलावा जो एक फेरामोन ट्रैप होता है। फेरामोन ट्रैप में क्या होता है कि कीड़े होते हैं वो अपने प्रजनन के लिए अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालते हैं, उसके गंध से जो नर है वो खींचा हुआ चले आते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: उसको ही लैब में बना करके उसका कार्ड मिलता है, उसको यदि हम लगा दें उस खास प्रजाति के कीड़े वाला कार्ड, तो जितने नर उस तरफ खींचे आएंगे उससे चिपक के वो मर जाएंगे।
0: अच्छा।
1: तो फिर आगे का उनका साइकिल ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करें यदि बीमारी की, तो बीमारी के लिए जो है उसके लिए भी फफूंद नाशक जो होते हैं, जैविक फफूंद नाशक, जैसे ट्राइकोडर्मा, सोडोमोनास फ्लोरेंसिस, ये जो मिट्टी से जो रोग जो फंगस वगैरह होते हैं, बीमारी होती है, उसके लिए वो कंट्रोल करते हैं।
0: हाँ हाँ। तो बढ़िया बात बताया है हमारे बीच में आके। आप हो कृषि महाविद्यालय कोरबा के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश कुमार साहू और संगी हो आज के विषय रही रसायन मुक्त खेती आज के जरूरत। अब बृहस्पत के आप मन फोन लगा हा और विषय रेडियो ले बतावे करबो। फोन नंबर है 2665 92, एक ठिकाऊ नंबर है 3100026। एकर पहली बिलासपुर के स्टडी कोड लगाए बर झन भूला हा 077752। एकरे संग सिरात है आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। डॉक्टर साहब आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आया, बढ़िया जानकारी दे है।
1: भैया जय जोहर।
0: आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी कार्यक्रम सिरावत है बैसाखू के राम राम जय जोहार कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली से सिल्वेरियस लकड़ा मन के।
2: संगवारी हो, अभी हमने सुनत रहे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी। आज के विषय रही

0: हवय रसायन युक्त खेती आज के आवश्यकता हवय। विशेषज्ञ पहुना आयरिन हवय डॉक्टर राजेश कुमार साहू अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कोरबा के और कार्यक्रम का संचालन कर हमर संगवारी हरीश माड़वा आवाज सुनतन संदेश हम
1: अरे सुन तो
2: मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को
1: किसको
2: अरे वही तुम्हारा

0: अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
1: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
0: हाँ।
1: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
2: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे हैं?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: संगवाई यही कार्यक्रम संग पंचू बहिला देव विदा। जय जोहार, राम राम।

किसान वाणी कार्यक्रम हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम चिट्ठी मिली।

0: उनका उद्देश्य सब लोग पानी की बचत करें और साथ ही जो बारिश का पानी है उसको संग्रहित करें।
1: बिल्कुल, और संग्रहित करने की बात होती है तो चिट्ठी मिली कार्यक्रम में ढेर सारी चिट्ठियों का संग्रह हो चुका है, इसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा जाए तो ये भी फिर इस पानी की तरह बह चली जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं।
0: जी, लेते हैं पहला पत्र जो आया है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू का। ये लिखते हैं 10 जुलाई का इनसे मिले कार्यक्रम, जिसमें पखावज और बांस से बने वाद्य के कलाकार श्री सुभाषीष के साथ दीपक हटवाजी की बातचीत थी, काफी पसंद आई है, बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही सटीक प्रसारण के लिए आकाशवाणी बिलासपुर को भी धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। हम भी इनको पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल, और बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। और ये हमें भेजा है हमारे जो श्रोता हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, बेबी स्वाति, महेश कुकरेजा, संध्या, दीपक, मोनू, उन्नति, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप साहू और पूरा कुटुंब माखीजा जी का। बहुत सारे पत्र भेजते हैं, कई कार्यक्रमों की समीक्षा बड़े विस्तार से लिखते हैं। लिखते हैं कि 11 तारीख शनिवार का अमराई कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर गीत थे, इसके लिए बधाई दे रहे हैं। 8:15 पर रजनीगंधा कार्यक्रम इन्होंने सुना, मीनाक्षी जी को बधाइयां दे रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि 12 तारीख को रविवार को इन्होंने छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर सुना, ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बधाइयां दे रहे हैं। और 8:15 पर रजनीगंधा के लिए आरती को बधाई दे रहे हैं, विमल राजी पर केंद्रित था ये कार्यक्रम। और आगे लिखते हैं कि 13 तारीख को 10 बजे छत्तीसगढ़ी गीतों का फोन इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत इन्होंने सुना, महावीर बरगाह जी को बधाइयां दे रहे हैं। और इस तरीके से सभी कार्यक्रम इन्होंने बड़े ध्यान से सुने, बड़े विस्तार से, एक एक कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन इन्होंने इस पत्र में किया है। तो पत्र के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: और लेते हैं अगला पत्र जो आया है मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू का।
1: क्या लिखते हैं?
0: ये लिखते हैं कि आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित ईमेल करे गीत सुने, चिट्ठी मिली कार्यक्रम, इसके अलावा ग्राम सभा, फोन इन कार्यक्रम, ये सारे नियमित रूप से सुनते हैं। इस कार्यक्रम को सुनकर इनका तन मन गदगद हो जाता है और इनसे इन्हें प्रेरणा और सीख भी मिलती है। बहरहाल सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं। पत्र लिखने के लिए हम भी आपको धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल, ऐसे ही जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हमें भी सिखाते रहिए, धन्यवाद आपका। और ये अगला पत्र ये आया है कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य का। मोनाली ये लिखते हैं कि चिट्ठी मिली कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे पत्र भी, ईमेल भी सब आपने शामिल किए, उस दिन पोस्ट कार्ड भी थे वो भी शामिल हुए, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। 12 तारीख को इन्होंने आओ बच्चों कार्यक्रम सुना, गीता जी को बधाइयां दे रहे हैं और अकलतरा के स्कूल के बच्चे आए थे। लिखते हैं कि बच्चे बड़े समझदार हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं, इन्हें अच्छा लगा कार्यक्रम। और ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम 14 तारीख का भी इन्हें बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा जैसे मेल या एक्सप्रेस भाग रही हो। मदन जी को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। 15 जुलाई को हेलो आपकी पसंद बहुत अच्छा लगा अंतरा को बधाई दे रहे हैं। और 15 तारीख को ही युवा जगत कार्यक्रम महक ने प्रस्तुत किया, सवालों के जवाब बताए, युवा पसंद के गीत सुनाए, बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम के लिए बधाइयां दे रहे हैं। शांतनु कपूर के लिए 15 जुलाई की प्रस्तुति के लिए बधाइयां हैं क्योंकि ईमेल करें गीत सुने में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए और बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और लिखते हैं कि अभी बरसात के समय जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें स्कूल पहुंचाने की जल्दी ना करें, सड़क पर बहुत गड्ढे हैं, इन्हें देख कर वाहन चलाएं, सुरक्षित रहें। वाकई में अभी बहुत जरूरी है, हर दिन दुर्घटनाओं के समाचार लगातार हम सुन रहे हैं, इसमें नाबालिग बच्चे जो बिल्कुल 16 साल से भी कम उम्र के हैं कार भी चला रहे हैं, गाड़ियां भी चला रहे हैं, बहुत गलत बात है। और अभिभावकों को ही ध्यान देना है कि अपने बच्चों के हाथों में इस तरह से गाड़ियां ना दें। और पूरे तरीके से अभिभावक, प्रशासन और हम सबको मिलकर ही हमारी यातायात व्यवस्था को सुधारना है। बहुत अच्छा निवेदन है मोनाली जी इनका जी। और इनको पत्र के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
0: जी, लेते हैं अगला पत्र देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या और कुमारी टानिया। ये लिखते हैं कि 10 जुलाई को प्रसारित ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम और 11 जुलाई को प्रसारित आज सुबह इन्हें काफी अच्छा लगा, खुशबू जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं और बेहतरीन गीतों को भी पसंद कर रहे हैं। साथ ही 12 जुलाई का छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ता राजू भैया को बधाई दे रहे हैं। 13 जुलाई को प्रसारित तुहर गोठ हमर गीत जिसमें श्रोताओं से बहुत ही सुंदर सुंदर बातचीत के साथ बेहतरीन गीत सुनाए गए, काफी अच्छा लगा, महावीर बरगा जी को बधाइयां दे रहे हैं और आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। पत्र लिखने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सही बात है मोनाली, जब श्रोता भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं तो वाकई कार्यक्रम में

0: चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और मोनालिका
0: नमस्कार। मोनाली, बारिश की रिमझिम फिर से शुरू हुई है। इस साल की बारिश के बारे में जैसा कि पूर्वानुमान था कि ये बीच बीच में बहुत आयत में भी हो सकती है और फिर एक लंबा समय भी ऐसा आ सकता है कि जब बारिश ना हो
1: जी।
0: तो जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि इस बारिश को हमें पकड़ लेना है, जब गिरे, जहां गिरे, जैसे भी गिरे, कोशिश यही करिए कि आपकी जरूरतों के लिए ये पानी आपके पास संग्रहित हो जाए। तो चाहे किसान हो, चाहे आम आदमी हो, हम सभी को ये सोचना है कि बारिश का पानी व्यर्थ नहीं बहने देना है।
1: जी मैम, तो यही है कैच द रेन कैंपेन।

0: चार चांद लग जाते हैं। ये जो टू वे कम्युनिकेशन है, जब हम एक तरफा बात करते हैं और जब श्रोता अपनी जगह से अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने जीवन के बारे में जब बताते हैं, तो दूर दराज में जो भी श्रोता इन कार्यक्रमों को सुनता है वो भी सब बातों से जुड़ जाता है। एक तरीके से इस अंचल की संस्कृति से, यहाँ के जीवन से, रहन सहन से, सब मिलाकर कार्यक्रम बड़ा अच्छा बन जाता है। पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। और छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा पेंड्रा रोड से ये पत्र आया है, चंदूलाल सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा वान्या का। लिखते हैं कि 16 तारीख को खेती की बात कार्यक्रम अच्छा लगा और रोपा पद्धति से खेती के बारे में जो जानकारी रूपेश जी ने दी थी इन्हें बड़ी अच्छी लगी। और लिखते हैं कि किसान भाइयों के लिए बड़ा ही मार्गदर्शक कार्यक्रम है किसान वाणी और ग्राम सभा, और चिंतन कार्यक्रम भी लगातार सुनते हैं, ईमेल करे गीत सुने भी सुनते हैं, ये सभी कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय प्रबंधन में थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी कभी सुनाई दे देती है, तो कृपया इसका ध्यान रखें। जो कार्यक्रम जितने बजे शुरू होना है वो उतने बजे ही शुरू होना चाहिए और खत्म भी अपने समय से होना चाहिए। खैर, हम ये भी कहना चाहेंगे कि आकाशवाणी इसीलिए ही जानी जाती है, समय प्रबंधन के लिए, और लोगों की घड़ी मिलाने का सबसे बड़ा माध्यम पहले आकाशवाणी ही हुआ करती थी। कभी ऐसा होता है, हमारी ओर से चूक होती है तो हमें उसका खेद है कि कभी ऐसा हो जाता है, कभी पावर सप्लाई चली जाती है, एक आध मिनट का डिले हो जाता है, कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कभी की ही बात रहेगी। हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कभी ना हो। पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं इनका।
1: लेते हैं अगला पत्र जो आया है सावतपुर से, ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन का। 11 जुलाई का अमराई कार्यक्रम खुशबू जी की प्रस्तुति में और 12 जुलाई का ईमेल करे गीत सुने आरती जी की प्रस्तुति में अच्छा लगा। साथ ही 13 जुलाई का तुहर गोठ हमर गीत महावीर बरघा जी की प्रस्तुति में, जिसमें तकनीकी सहयोग सौरभ जी का था, और आपकी पसंद कार्यक्रम सुनील चिपड़े जी की प्रस्तुति में अच्छा लगा। साथ ही 15 जुलाई का हेलो आपकी पसंद भी पसंद कर रहे हैं, जिसकी प्रस्तुति अंतरा जी ने की थी। ये सारे कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगे, ये धन्यवाद दे रहे हैं, और इनके प्यारे शब्दों के लिए हम इन्हें भी धन्यवाद देते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये अगला ईमेल मोनाली आया है, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन का। बड़ी दुख की बात है कि इनके यहाँ नेटवर्क अभी बिल्कुल सही नहीं है और ये बहुत दिन से कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे जो साथी श्रोता हैं वो इनको रिकॉर्ड कर करके कार्यक्रम सुनवा रहे थे।
1: बढ़िया।
0: तो चिट्ठी मिली भी सुन लिया और फरमाइशी कार्यक्रम भी सुन लिया, बड़े खुश हो गए। तो ये बात तो है भाई, दोस्ती और याराना यही होता है कि आपकी पसंद की कोई चीज आपको आपका दोस्त पहुंचा दे और आप सुनकर गदगद हो जाएं। तो आपसे ये बात सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब आप कार्यक्रम नहीं सुन पाते तो हमें भी बड़ा खराब लगता है, लेकिन हमारे जो साथी श्रोता हैं वो आपके मन की बातों का ध्यान रखते हैं, कितनी अच्छी बात है।
1: ये कितने लकी हैं, ऐसा बोल सकते हैं।
0: हाँ।
1: इनको ऐसे दोस्त मिले हैं जो इनकी पसंद का ध्यान रखे और उनके लिए थोड़ी मेहनत करके वो उन्हें कार्यक्रम भेज रहे हैं।
0: सही बात
1: ऐसे
0: है।
1: दोस्त मिलना इस जमाने में ये भी बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ी अमानत और धन है। चाहे कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन अच्छे दोस्त आपके साथ हैं, अच्छे मित्र हैं, तो सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास है। और आगे लिखते हैं कि रविवार को ग्राम सभा में आप मन के गीत सुने बहुत अच्छा लगा, राजू भैया को बधाई दे रहे हैं। और लिखते हैं कि कई बार आपके कार्यक्रमों में ऐसा होता है कि गीत तो बड़े अच्छे बजाते हैं लेकिन पत्र थोड़े कम शामिल करते हैं, तो जैसे आप लोग ईमेल करें गीत सुने में शामिल करते हैं, वैसे ही आप पत्रों को भी बहुत सारे शामिल किया करिए। तो ये प्रस्तुतकर्ता को भी थोड़ी सी स्वतंत्रता तो देनी चाहिए अपनी प्रस्तुति की। यदि वो चाहता है 5-6 बड़े अच्छे गीत मैं आपको सुनवा दूं, चलिए एक एक श्रोता का नाम कम हो गया, 5-5 पत्र भी कम नहीं होते हैं मोनाली एक कार्यक्रम में एक गीत के लिए। तो भाई, कार्यक्रम का भी आनंद लिया जा सकता है, गीतों का भी आनंद लिया जा सकता है, अगले कार्यक्रम में फिर आपके नाम शामिल हो जाएंगे। चलिए, आप कार्यक्रम सुनते हैं और इतनी सारी बातें हमसे साझा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पत्र के लिए आपका धन्यवाद।
1: अगला पत्र हमें भेजा है चापा से, शलभ शेंडे, आम्रपाली, विलास सोमावार, अंजलि, टीना और बबलू सोमावार ने। ये लिखते हैं कि 14 जुलाई का आज सुबह कार्यक्रम दिलचस्प अंदाज में महावीर बरघा जी ने प्रस्तुत किया।
0: क्या बात है।
1: भक्ति संगीत, आराधना भी छोटी छोटी कविताओं के साथ प्रस्तुत किया। ये प्रस्तुति इन्हें बहुत अच्छी लगी, महावीर जी को बधाइयां दे रहे हैं और साथ ही आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को भी धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं, और साथ ही रथ यात्रा की ये शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं।
0: बहुत सुंदर मोनाली, और सही बात है, जब प्रस्तुतकर्ता कुछ नए अंदाज में कुछ भी करता है तो हमारे श्रोताओं तक बात पहुंच जाती है। एक अंदाज आराधना प्रस्तुति का रहता है, उससे कुछ अलग यदि कहीं होता है तो हमारे श्रोता तुरंत उस बात को कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, रथ यात्रा की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, शोभाराम, सूरज बारेकर, नारायण और सियाराम ने पत्र भेजा है। चिट्ठी मिली कार्यक्रम इनको भी बहुत अच्छा लगा, सुप्रिया जी और मोनाली जी को बहुत बहुत बधाई, और 10 तारीख को

0: सीमा जी को बधाई दे रहे हैं, आपकी पसंद की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। 10 तारीख को ही रजनीगंधा के लिए खुशबू को बधाई दे रहे हैं, असद भोपाली जी पर केंद्रित प्रस्तुति इन्हें बहुत अच्छी लगी। 11 तारीख को सदाबहार नगमे के लिए खुशबू को बधाई दे रहे हैं और 11 तारीख को मीनाक्षी जी ने कुमार गौरव पर केंद्रित करके जो प्रस्तुति दी वो भी अच्छी लगी। 13 तारीख को रत्ना जी ने रजनीगंधा को खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत किया। 14 तारीख को मदन पांडे ने भी रजनीगंधा मदन मोहन जी की पुण्यतिथि पर केंद्रित करके बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत किया। 15 तारीख को फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद अच्छा लगा, अंतरा को ढेर सारी बधाइयां। और 15 तारीख को शांतनु कपूर की रजनीगंधा की प्रस्तुति बड़ी ही अच्छी लगी, उन्हें भी बधाई दे रहे हैं। और 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर पूरे आकाशवाणी परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। पत्र के लिए आप सबको भी हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वाकई में सामाजिक समरसता का प्रतीक है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। मोनाली जी, मैं तो ये कहूंगी कि मंदिरों में प्रवेश के लिए तो बहुत सारे बंधन मनुष्यों ने बना दिए, लेकिन भगवान यदि खुद मंदिर से बाहर निकल कर आ जाए तो कोई बंधन नहीं रह जाता है, हर कोई उन्हें देख सकता है। और यही तो है इस संपूर्ण चराचर का रहस्य कि कहीं कोई भेदभाव है नहीं। तो ये छोटी छोटी परंपराएं हमारे जीवन के कितने बड़े विशाल पक्ष को अभिव्यक्त करती हैं कि मनुष्यों के बीच के भेदभाव को खत्म कर हमें जीवन में आनंद सुख और शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं
1: और लेते हैं ये पत्र जो आया है उड़नताल दगोरी से श्यामदा प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा और समीर गायकवाड़ का। 11 जुलाई के फिल्म संगीत में अभिनेता कुमार गौरव के जन्मदिन पर विशेष प्रस्तुति काफी अच्छी लगी। साथ ही 12 जुलाई का किसान वाणी कार्यक्रम जिसमें आप मन के गीत प्रस्तुत किए गए राजू भैया की प्रस्तुति में बेहतरीन लगे। 13 जुलाई का तुहर गुट हमर गीत महावीर बरघा जी की प्रस्तुति में काफी पसंद कर रहे हैं। पत्र लिखने के लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं।
0: और ये जो अगला ईमेल है ये आया है रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति और डिकेश साहू का। ये लिखते हैं चिट्ठी मिली कार्यक्रम इन्हें भी बहुत अच्छा लगा। 10 तारीख के लिए खुशबू को, 14 तारीख के लिए मदन को, 15 के लिए शांतनु को, 12 तारीख के लिए ग्राम सभा में आप मन के गीत के लिए सभी प्रस्तुतकर्ताओं को बधाइयां दे रहे हैं। और गाजर घास से जो नुकसान हो रहा उसके बारे में जो जानकारी दी गई कार्यक्रम में ये इन्हें बहुत अच्छी लगी। राजू भैया को बधाई दे रहे हैं। तुहर गोट हमर गीत 13 तारीख का बहुत अच्छा लगा, महावीर को बधाइयां दे रहे हैं। 16 तारीख को माटी का स्वर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ता को बधाई दे रहे हैं। सभी कार्यक्रम ये लगातार सुनते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपका पत्र आता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: अगला पत्र नानघाट कातल बोर्ड से आया है। भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत लिखते हैं, आकाशवाणी बिलासपुर के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। माटी के स्वर, आपकी पसंद, युवा जगत, आज सुबह, आप मन के गीत, किसान वाणी, तुहर गोट हमर गीत, हेलो आपकी पसंद, ये सारे कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस सप्ताह आप मन के गीत राजू भैया की प्रस्तुति में और विवेक जोगलेकर जी से सुप्रिया भारतीयन जी की बातचीत काफी अच्छी लगी। इसमें वन और पर्यावरण पर चर्चा बहुत ही अच्छी लगी और साथ ही अंतरा चक्रवर्ती की प्रस्तुति में हेलो आपकी पसंद भी पसंद कर रहे हैं। सारे कार्यक्रम ये पसंद करते हैं और हमें लिख के भी भेजते हैं, ये देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पत्र के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
0: सच बात है, धन्यवाद आपका। और ये अगला ईमेल हमारे पास आया है इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल मानस, चेतन, गंगा देवी विश्वकर्मा का। मधुर स्मृति के साथ मधुरता बिखेरते हुए ये हमेशा की तरह लिखते हैं कि हम आपके स्नेह के अभिलाषी हैं। वाकई में हम सब एक दूसरे के स्नेह के अभिलाषी हैं। 9 जुलाई को इन्होंने चिट्ठी मिली कार्यक्रम को पसंद किया, 10 जुलाई को रजनीगंधा भी बहुत अच्छा लगा, 11 जुलाई को मीनाक्षी जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा भी अच्छा लगा, 12 जुलाई को आरती जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, 13 तारीख को रत्ना जी को रजनीगंधा के लिए बधाई दे रहे हैं, 14 जुलाई को मदन मोहन जी पर केंद्रित करके जो मदन जी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगा, और 15 तारीख का भी रजनीगंधा सुना, शांतनु को भी बधाई दे रहे हैं। मतलब एक सप्ताह का पूरा रजनीगंधा और अन्य कार्यक्रम ये लगातार सुनते रहे और हमें पत्र भेजा है। आपको अपने काम के बीच में इतने ध्यान से रेडियो सुनने के लिए हम ढेर सारी बधाई देते हैं। आप लगातार सुनते रहें और हमें पत्र भेजते रहें।
1: ये पत्र आया है मगरपारा बिलासपुर से रेणु शुक्ला, राजेश कुमार शुक्ला, वैभव और विनी मिश्रा का। 15 जुलाई का हेलो आपकी पसंद अंतरा जी की प्रस्तुति में बहुत पसंद कर रहे हैं, साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम जिसमें किसानों को बहुत लाभ मिलता है ये भी काफी अच्छा लगता है। सदाबहार नगमे और यादों के झरोके से कार्यक्रम सुबह सुबह ताजगी देता है, पसंद करते हैं और आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को भी धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल, तो पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद दे देते हैं
1: जी।
0: और ये अगला पत्र हमारे पास आया है बुड़गहन से, रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश, चंद्रकांता और शशिकांता का। बहुत सारे कार्यक्रमों की समीक्षा लिखी है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की, पूरे आकाशवाणी

0: अपने परिवार को बधाइयां दे रहे हैं। 10 तारीख को गांधी चर्चा इन्हें बहुत अच्छी लगी, उसके लिए बधाई दे रहे हैं। 9 तारीख को चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 13 तारीख को तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, इसके लिए भी बधाई दे रहे हैं महावीर बरगाह को। तो आपको भी पत्र के लिए ढेर सारा धन्यवाद और बधाइयां।
1: ये पत्र लोरमी ग्राम चचेड़ी से आया है। कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ लिखते हैं कि हम लोग आकाशवाणी बिलासपुर के नियमित श्रोता है, लेकिन हमारे नाम और ईमेल बहुत दिनों से आपके कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारे इस शंका का समाधान करें।
0: ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि सही ईमेल एड्रेस है तो आना चाहिए। हम तो आजकल स्पैम में भी देख लेते हैं कि हमारे कई श्रोताओं का स्पैम में तो नहीं चला जा रहा, ट्रैश में तो नहीं चला जा रहा, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर अपने ईमेल एड्रेस को चेक करिए। यदि पहले आ रहा है और अब नहीं आ रहा है तो कुछ कारण होना चाहिए, क्योंकि जितने ईमेल आते हैं वो सभी हम कोशिश करते हैं कि निकालें, उसमें से ज्यादा पत्रों को शामिल करें, ये भी कोशिश रहती है। लेकिन ये बात तो है कि सारे ईमेल जो 200 से 250 तक आते हैं उन सभी को हम एक कार्यक्रम में मोनाली शामिल नहीं कर सकते। तो किसी किसी के तो किसी दिन छूटते ही हैं। लगातार कई हफ्तों तक आपके शामिल नहीं हो रहे तब तो बात चिंता की, हमें दोनों पक्षों को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहे। तो हम भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप भी देखिए कि कहीं आपके एंड से कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं। ये एक ईमेल आया है हमारे पास जांजगीर बोड़सरा नैला से। लिखने वाले हैं हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, मीनाक्षी, उमाबाई, ठगिया देवी और विष्णु प्रसाद जी। इन्हें सभी कार्यक्रम पसंद है मोनाली, और ये लिखते हैं कि माटी के स्वर, हेलो आपकी पसंद, फरमाइशी सारे कार्यक्रम और खेती की बात, किसान वाणी, ये सभी हमें जानकारी परक कार्यक्रम लगते हैं। हम लगातार सुनते हैं, मनोरंजन भी खूब मिलता है, विविध भारती के कार्यक्रम भी हम सुनते हैं, लेकिन हमारा भी नाम कुछ समय से नहीं आ रहा है। तो भाई ये शिकायत है तो हम एक बार और चेक करेंगे। जिन जिन श्रोताओं ने अपने नाम दिए हैं कि इनका शामिल नहीं हो पा रहा, हम एक बार फिर उन्हें देखेंगे। सूचना देने के लिए और कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं।
1: लेते हैं अगला पत्र रतनपुर सिल्ली निर्धि से। नरेंद्र कश्यप, गणेशिया, आयुष, लीना और करण कश्यप लिखते हैं, 10 जुलाई का ईमेल करे गीत सुने खुशबू जी की प्रस्तुति में, साथ ही 15 जुलाई का छत्तीसगढ़ी लोकगीत हेलो आपकी पसंद अंतरा चक्रवर्ती जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं। सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपको भी पत्र भेजने के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये बड़ा सुंदर सा खूबसूरत सा पत्र है, मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम का ये आखिरी पत्र है, और इसमें रथ का बड़ा सुंदर चित्र बनाकर हमारे श्रोताओं ने भेजा है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की पावन बेला पर ये खूबसूरत पत्र हम अपने श्रोताओं को दिखा तो नहीं सक रहे, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर सा रथ बना है। और हम सब ये मान ले कि हम सब जीवन के इस उजले पक्ष में जब भगवान खुद बाहर हैं सभी से मिलने के लिए और मन के अंदर के संदेहों को दूर करने के लिए, तो अपने अंदर की जितनी कमियां हैं, बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर नफरत, हिंसा ये सब भरी है, इन सबको हम दूर कर सकें, ये सब त्योहार इसी बात के प्रतीक हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं सद्भावना के साथ, समन्वय के साथ, प्यार और सद्भाव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत से पत्र के लिए। और आगे मोनाली ये लिखते हैं कुछ कार्यक्रमों के संदर्भ में। 12 तारीख आप मन के गीत राजू भैया को बधाई, 13 तारीख को तुहर गोठ हमर गीत के लिए महावीर को बधाई, सदाबहार नगमे 14 तारीख के अच्छे लगे महावीर को बधाई, 15 तारीख को यादों के झरोके से कार्यक्रम अच्छा लगा अपेक्षा को बधाई, और हेलो आपकी पसंद की प्रस्तुति के लिए अंतरा को ढेर सारी बधाई। और इस तरीके से सप्ताह भर के कार्यक्रमों की समीक्षा भी है। और इसी के साथ ही हमारे पास और भी पत्र आए और भी नए नए श्रोता हमसे जुड़े, इसके लिए हम एक बार पता भी बता दें।
1: जी मैम, आप हमें मेल कर सकते हैं पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर। साथ ही पत्र के लिए हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, पिन कोड है 495006।
0: बिल्कुल, तो आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। अगले कार्यक्रम में ढेर सारे पत्र भेजिएगा। बारिश के लिए भी यही कहेंगे कि खूब बारिश हो, इतनी हो कि किसानों की फसल बहुत अच्छी हो और हम सब के जमीन के भीतर पानी पहुंचे और किसी को पानी की कमी ना हो। तो इसके लिए हमारा जो प्रयास है वो भी हमें करना है, और साथ ही स्वस्थ भी रहना है, सुरक्षित रहना है। तो आज के चिट्ठी मिली कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और मोनाली का
0: नमस्कार।

कार्यक्रम चिट्ठी मिली हम सुन रहे थे, प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारती और मोनाली ठाकरे मैडम की। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.3।

2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे।

आज हम विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे से सुनेंगे। राग बिहाग में विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है और तराना होगा चौताल में। तो आइए सुने शास्त्रीय संगीत में कलाकार विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे को।

0: शास्त्रीय संगीत में हम सुन रहे थे विदुषी विष्णा वीणा सहस्त्रबुद्धे को। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:45 हुए हैं। अब जुड़ते हैं समाचार।
1: मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में

0: मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनों से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार

0: हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
1: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पर अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
3: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें।

0: आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23

0: आज 1 डॉलर की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ।
1: अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। इंडिया अचीव्स मेजर माइलस्टोन ब्रिंगिंग ओवर 1 बिलियन सिटीजन्स अंडर सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between India and host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana.

आकाशवाणी दिल्ली से हम समाचारों का अनुप्रसारण कर रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9:15 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती से।

लीजिए सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में सुना। संगीत तैयार किया था आडू बर्मन ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: Come on. Mayavi tiri tiri utte murdani. Mayavi tiri tiri utte murdani.
1: कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग-अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाल दी।

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थीं। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके न चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

0: what is wrong? Let me do the difference.
1: साल 2012 में कैटरीना कैफ ने फिल्म अग्निपथ में काम किया और इस फिल्म में ये गाना उस साल खूब खूब

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो, दे चुकी है दर्शन अब पर...

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: ਬੈਠੇ ਆ
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: रंग तरंग।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। रास्ते अब सीधे नहीं रहे, जैसे किसी ने मोड़कर सपनों की दिशा बदल दी हो। कदम बढ़ते हैं, पर हर कदम पर एक अदृश्य बंधन सा महसूस होता है। आजादी और जकड़न के बीच दिल झूलता रहता है। नींद में भी ख्वाब डर कर सिमट जाते हैं। सीने में कोई टूटी हुई खामोशी चुभती रहती है, और फिर भी सांसों की डोर किसी उम्मीद से बंधी रहती है।

0: बिजली की चमक में जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता है, पर बरसात सब शब्द भिगा देती है। भीगी हवाओं में तेरा एहसास यूं उतर आता है जैसे तू पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा हो। हर बूंद दिल पर दस्तक देती है और मन बस तुझसे मिलने की जिद कर बैठता है। ये मौसम नहीं, कोई अधूरी चाहत सी लगती है जो बाहों में सिमट जाना चाहती है। कांपती ठंड में भी दिल की गर्मी तुझे पुकारती है, जैसे बस एक आलिंगन बाकी हो। और मैं इस बरसात में बस इतना चाहती हूँ कि तू पास आकर मुझे थाम ले।
1: नहीं।

पलकें जब भी झुकती हैं तो भीतर एक छवि जगमगा उठती है, जैसे कोई दीपक स्वयं जल उठा हो। लज्जा भी अब श्रृंगार बनकर चेहरे पर ठहर जाती है और हर धड़कन में उसका ही स्पंदन बस जाता है। हवाओं में भी अब उसकी आहट सी महसूस होती है, जैसे प्रकृति भी उसी की बात कर रही हो। हर खामोशी अब कुछ कहने लगी है और हर एहसास में उसका ही रंग घुला हुआ है। मेरे नयन रूपी दर्पण में अब बस साजन बसा हुआ है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हाथों में उसका हाथ आते ही जैसे सारी दुनिया थम गई, खुशी इतनी कि शब्द भी अब साथ नहीं दे पा रहे थे। दिल हल्का होकर आसमान में उड़ने लगा, मानो जमीन का सहारा ही छूट गया हो। हर कदम पर एक अजीब सी उलझन है, जैसे चलना भी अब मुस्कुराने लगा हो। आंखों में चमक है, होठों पर खामोशी, और मैं उसे थामे हुए इस खुशी में बहती जा रही हूँ।

फूलों की खुशबू भी आज कुछ और ही रंग लिए हुए है, जैसे प्यार ने उन्हें भी सजा दिया हो। हर कली में छुपा एक नाजुक सा एहसास है जो दिल के बहुत करीब उतरता चला जाता है। गुलाब की पंखुड़ियां भी जैसे किसी मुलाकात की कहानी सुनाती हो। हवाओं में बिखरी ये महक मन को धीरे धीरे उसके नाम से भर देती है। हर फूल अब एक संदेश बन गया है जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है, और मैं उन फूलों में भी सिर्फ तुम्हारे प्यार की ही छाया देखती हूँ।

जीवन की धूप जब तपती है तो तू ही वो ठंडी छांव बन जाता है। हर मुश्किल रास्ते पर तेरा साथ जैसे थके पांव को सहारा मिल जाता है। तेरी मौजूदगी में हर दर्द हल्का सा लगने लगता है, जैसे अंधेरा भी रोशनी से डरने लगे। मैं जब भी बिखरने लगती हूँ तो मुझे फिर से समेट लेता है। तेरी मुस्कान मेरी दुनिया का सुकून बन जाती है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो और मैं समझ जाती हूँ कि मेरी जिंदगी की धूप में सिर्फ तू ही मेरी छाया है।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब जुड़ेंगे समाचारों के लिए आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रूपये से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व

समाचारों का अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी दिल्ली से किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण यहीं संपन्न होता है। कल प्रातः 5:55 पर अपने कल के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।